यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि तदनुसार 30 अगस्त सन 2026। श्रोताओं हाजिर हैं हम अपने केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:59 पर।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम में 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 5:59 और 48 सेकंड हुए हैं। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ टी20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले दो दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, लीजिए पेश है आज का चिंतन।
3: जीवन की परवाह, क्योंकि उनके हृदय में असीम करुणा थी। हाँ, वो करुणा ही तो थी जो उमड़ पड़ी थी उनके अंतरतम से। यही करुणा

मानव को महामानव बना देती है। तभी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मानव जाति के लिए एक दृष्टांत बनकर इतिहास के पृष्ठ में अमर हो गए। मनुष्य के अंदर दया और करुणा होनी चाहिए। वो दया और करुणा अपने परिवार तक ही सीमित न होकर अड़ोस पड़ोस, परिचित अपरिचित किसी के लिए भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोक सेवा के लिए आपके पास प्रचुर धन राशि हो, आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके हृदय में मात्र करुणा के दो चार कण हैं तो वो भी बहुत बड़ा खजाना है। समस्याएं कहां नहीं बिछी हैं, संकटग्रस्त कौन नहीं है। सेवा और करुणा की जरूरत चारों ओर है। आपको जरूरत है उसकी चादर बिछाने की। रास्ते के हर मोड़ पर पीड़ित हैं, असहाय हैं, जरूरत है उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की, उनके दर्द को अपना दर्द समझने की। कुछ क्षण के लिए आप स्वयं पीड़ितों के जीवन की कल्पना कीजिए, उसकी देहरी पर खड़े होकर देखिए और सोचिए। आपके हृदय में स्वयं करुणा उमड़ पड़ेगी और उमड़ी हुई करुणा के दो चार छींटों से ही उन्हें नहलाइए। फिर देखिए उनके आशीर्वादों की फुहार, उसमें नहाकर आपको कैसी अलौकिक शांति मिलती है। छोटी छोटी सेवाओं को भी कभी छोटा मत समझिए। अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, रास्ता, नगर, कहीं भी आप ऐसी जरूरत देखिए, अपनी करुणा का दरवाजा तुरंत खोल दीजिए। हो सकता है आपकी करुणा भरी छोटी सी सेवा सहायता किसी को काल के गाल से निकाल दे, किसी माँ का लाल लौटा दे, किसी सुहागिन का लुटता हुआ सुहाग लौटा दे, किसी बच्चे को अनाथ होने से बचा दे, किसी वृद्ध या किसी परिवार को बेसहारा होने से बचा दे। हो सकता है इसके लिए बदले में आपको कोई कीमत ना मिले, पर आपका हृदय परमानंद से परिपूर्ण जरूर होगा। दया और करुणा रहित मानव मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, वो ईश्वर से बहुत दूर है। और ईश्वर के नजदीक वही है जिसने सोच लिया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सम्राट अकबर के दरबार में रहने वाले प्रधान सेनापति खानखाना रहीम, हाथ में एक पत्र है। पत्र में हैं सिर्फ दो पंक्तियां, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। पत्र लाने वाला है एक दीन दरिद्र ब्राह्मण। रहीम सोच में है, पत्र किसी ऐरे गैरे का नहीं, ये तो उनके परम श्रद्धेय मित्र संत तुलसी का है। उन्होंने तुलसी के अधूरे दोहे को पूरा किया, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। साथ ही ब्राह्मण की थैली उन्होंने पर्याप्त अशर्फियों से भर दी। उसे धन की जरूरत थी, बेटी की शादी करनी थी, वो निर्धन था। तुलसी के पहेली नुमा इशारे पर यहां रहीम ने ब्राह्मण को धन दिया। महत्व उसका नहीं है, महत्व है रहीम के भाव का, उनके उदात्त चरित्र का। क्योंकि तुलसी ब्राह्मण है, हिंदू है, और खानखाना रहीम मुसलमान, पर वे तो तुलसी के परम मित्र हैं, परम भक्त हैं। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी वे प्रभावित हैं। रहीम तो काशी उनकी कुटिया में भी आए हैं, तुलसी ने उनका आलिंगन किया है, भव्य सम्मान दिया है अपनी कुटिया में। रहीम ने मोहरों की थैली भेंट की है और तुलसी के इनकार करने पर कहा है इसे रखना ही होगा, क्योंकि चित्रकूट में जो तुम संत सम्मेलन और भंडारा कर रहे हो उसमें इसे लगा देना, मैं भी उस सत्संग में भाग लेने जरूर आऊंगा। चित्रकूट में रहीम संत तुलसी के साथ बहुत दिन तक रहे थे, इसके प्रमाण भी हैं। एक दिन तुलसी ने चित्रकूट में एक हाथी को स्नान के बाद सूंड से अपने ऊपर धूल डालते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मित्र रहीम से पूछा, धूरी

0: धरत निज शीश पर, कहो रहीम के ही काज। और रहीम ने चट जवाब में कहा, जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। बात तुलसी और रहीम की नहीं, बात इन कविताओं और कवित्व प्रतिभा की भी नहीं, बात है कट्टर जात पात के उस जमाने में भी हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भावना की। कहां है वहां सांप्रदायिकता का द्वेष या भेदभाव? कोई भी संत या सूफी जाति पाति के प्रपंच से बहुत ऊपर होता है, वह तो मानवता का उपासक होता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, त्याग, परोपकार, अहिंसा और दया। उसका कोई दुश्मन नहीं होता। कबीर, नानक, रैदास आदि संत फकीर हिंदू मुस्लिम धर्मकांडों से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने बहुत पहले ही इस बात का अनुभव कर लिया था, सांप्रदायिक भावना से एकता का खंडन होता है, वह राष्ट्र की जड़ को खोखला करता है, हिंसा और रक्तपात कराता है। उन्होंने एकता की डोर से उसे एक करने की कोशिश की। तभी तो कहा, हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दो दाल हैं, को ज्यादा को कम। उन्होंने बार बार समझाया, राम रहीम एक हैं, उन्हें दो मत जानो। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने पर, स्वयं को सुधारने पर ही उन्होंने हमेशा जोर दिया, संपूर्ण मानव जाति एक ही परमात्मा की संतान है। जात पात के भेदभाव से परे होकर जो मानवता को मानव धर्म मानता है, जो भिन्न और विरोधी मतों को एक एकता की सुदृढ़ डोर से बांधने का प्रयास करता है, वही संत है, वही मानव है और वही ईश्वर या अल्लाह के निकट है।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। लीजिए पेश है भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

कार्यक्रम वंदना सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। श्रोताओं आइए सुबह के इस पल माँ भवानी की हम वंदना करें।

नरेंद्र चंचल और साथियों के स्वर में साथियों आपने सुना माँ दुर्गा का ये भजन। लीजिए कार्यक्रम में आगे आपके लिए एक बहुत ही करुणमय आध्यात्मिक गीत।

कभी दुर्गा कभी काली, कभी पशुपति तो कभी महादेव। कितने ही रूप हैं ईश्वर के, न जाने किस रूप में ईश्वर सामने आ जाए। आइए उसे ईश्वर की वंदना करते हैं इस पल।

FM 102.1 MHz पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए सुने कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से आप सुन रहे थे श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 गीगाहर्ट्ज़ पर।

0: हम बोलिए आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से लीजिए पेश है श्री राम चरित मानस गान। आज आप सुनेंगे इसका भाग संख्या 77 एपिसोड नंबर 77।
1: सतहत्तर 77।

अरिष्ट तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। यह सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौर वर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज आपने सुना इसका भाग संख्या 77, एपिसोड नंबर 77। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर सुबह के 6:50 मिनट हुए हैं। चलिए श्रोता, अब हम आपको रूबरू कराते हैं अपने केंद्र से आज सुबह से लेकर रात तक प्रसारित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों से।

श्रोताओं बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग बस संस्कृत समाचार के बाद 7:20 पर होगा परिवार कल्याण पर आधारित कार्यक्रम घर संसार, जिसमें आज हम आपको जानकारी करवाएंगे दांतों की समस्या और हमारा स्वास्थ्य विषय पर। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर उदीपन कुमार, जिनसे बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी श्वेता रानी। फुलवारी बच्चों के लिए ये कार्यक्रम होगा प्रातः 7:30 पर और आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी रानी सहाय वर्दना अर्चना। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे राजीव कुमार और संयोजक होंगे विक्रम कुमार रंजन। दोस्तों 8 बजे होगा समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर आकाशवाणी रांची से। 8:45 पर होगा आपकी धड़कन कार्यक्रम मॉर्निंग वाला, ठीक। विविध भारती ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे विविध भारती से मुंबई प्रसारित करेगा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। और 10 बजे होगा आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हजारीबाग। दोस्तों बता दें कि आज 11 बजे से आप सुन सकेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात हिंदी और संस्कृत दोनों में, और 12 बजे से लगातार विविध भारती के कार्यक्रम आपकी खिदमत में आकाशवाणी मुंबई से जारी रहेगा। हमारे स्टूडियो से कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल आपके बीच आएगा संध्या 5:02 पर। 5:30 पर होगा युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा तरंग और 6:02 पर आप सुनेंगे मेहनत कश कार्यक्रम हमारे श्रमिक बंधुओं के लिए। फिल्म संगीत ये होगा संध्या 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से क्रमशः 7 बजे और 7:10 पर। झनकार ये कार्यक्रम संध्या 7:15 पर। अब बता दें श्रोताओं की संध्या 7:30 से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम थाईलैंड मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पूरे रात्रि तक, जब तक कि मैच खत्म नहीं होता। तो ये दिशा हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त झलक।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 गीगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:54 और 12 सेकंड हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य उज्बेकिस्तानदेशस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्ता

0: शारदा सिन्हा की आवाज में आपने सुना श्रोता ये भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम में ऐसे और भी गीत होंगे, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: लोक रंग श्रोता, आप सुन रही है कार्यक्रम आकाशवाणी की हजारीबाग केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे भोजपुरी लोकगीत, और वो भी शारदा सिन्हा की आवाज में। लीजिए पेश है कार्यक्रम की अगली पेशकश।

नजरिया हमरी ओर रखिया। आपने सुना ये बहुत ही प्यारा सा भोजपुरी लोकगीत हम शारदा सिन्हा की आवाज पे। एक और गीत है जो शारदा सिन्हा की आवाज पे भोजपुरी के जो फैंस हैं, हमारे श्रोता हैं, उन्हें बहुत पसंद आती है। तो आइए ऐसे लोकगीत का एक बार प्रसारण फिर से हम कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में आपके लिए। चीटिया बाटे ना कोई।

शारदा सिन्हा के गाय सी भोजपुरी लोकगीत के साथ श्रोताओं का कार्यक्रम लोक रंग अब यही समाप्त होता है। दीजिए हमें इजाजत। आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम लोक रंग।

0: हम बोल रहे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम में 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7:19 और 20 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम परिवार कल्याण पर आधारित घर संसार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंटवार्ता। विषय है दांतों की समस्या और हमारा स्वास्थ्य। भेंटवार्ता का नाम डॉक्टर उदीपन कुमार, जिनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी श्वेता रानी। तो सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: स्वस्थ रहें इसके लिए दांतों की सुरक्षा या दांतों का सेहत भी बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से हमें दांतों की देखभाल करनी चाहिए ताकि हमारे दांत जो है वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है दंत चिकित्सक डॉक्टर उद्दीपन कुमार जी को। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: धन्यवाद श्वेता जी।
1: दांतों की सुरक्षा कितनी जरूरी है हमारे सेहत के लिए?
2: कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मुंह का होना बहुत आवश्यक है। कई सारी बीमारियां जो है हमारे मुंह से शुरू होती है और वही आगे जाकर के बाकी शरीरों में फैल जाता है।
1: दांतों में आमतौर पर किस किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बुरा हो सकता है?
2: दांतों से संबंधित नॉर्मली 3 तरीके की बीमारियां देखी जाती है। एक वैसी बीमारियां जो सीधा हमारे दांतों के ऊपर में प्रभाव डालती है, जैसे कि कैविटी हो जाना दांतों में, जिसको कि जनरल टर्म में कीड़ा लगना कहते हैं। वो कैविटी बेसिकली हमारे मुंह में जो है सही तरीके से साफ सफाई नहीं रहने की वजह से होता है। दूसरा असर जो है हमारे मसूड़े पे पड़ सकता है, जो हमारे दांत के चारों तरफ जो है हड्डी होती है जो दांत के जड़ों को सही तरीके से पकड़ करके रखती है, और उसके ऊपर में एक कवर होता है जिसको हम लोग जनरल टर्म में मसूड़ा कहते हैं। तो अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उससे हमारे दांत के ऊपर में कीड़ा लग सकता है, मसूड़े के ऊपर में जो है सूजन आ सकता है, और अगर हम सही समय पे उसका उपचार ना करें तो वही मसूड़े का सूजन अंदर में हड्डी में लग जाता है, जिसको कि हम लोग पायरिया कहते हैं। तो इसलिए दांतों का सही रखरखाव करना बहुत आवश्यक।
1: आपने कहा कैविटी, बच्चों में तो चॉकलेट बिस्किट्स वगैरह ज्यादा खाने की वजह से हो जाती है, बड़ों में किस वजह से ये होती है?
2: जो हम लोगों का अपब्रिंगिंग है या बचपन से जो है हम लोगों का पालन पोषण है, उसमें दांतों के संबंध में, उसके रखरखाव के संबंध में सही तरीके से माता पिता को पता नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि शुरू में हमारा दूध का दांत निकला है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो डेंटिस्ट को तब तक कंसल्ट नहीं करते हैं जब तक कि वो बहुत बड़ा न हो जाए बीमारी और वो किसी तरीके से आपको तकलीफ न पहुंचाने लग जाए। तो सबसे पहला सलाह जो हम सारे श्रोताओं को देना चाहेंगे वो ये है कि दांतों के लिए सबसे पहला कंसल्टेशन डेंटिस्ट के पास तब आना चाहिए जब आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, लाइक माता के प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज उस दौरान जो है अगर माँ के मुंह का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उसका कई सारा कुप्रभाव आने वाले बच्चे के ऊपर में पड़ता है। जैसे कि बच्चे का वेट कम होगा, कुपोषण का शिकार हो सकता है, अगर मुंह का इन्फेक्शन है तो उससे जो है कई सारी और भी बीमारियां पैदा हो सकती है। तो जिसके बारे में सही जानकारी होना आवश्यक है, और इसीलिए जब आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो उसी वक्त एक बार अपने डेंटल चेकअप के लिए जरूर आना चाहिए।
1: तो किस किस तरह के कारण आमतौर पर दिखाई देते हैं जब गर्भावस्था में होती है महिलाएं?
2: देखिए, जब आप बच्चे का प्लानिंग करते हैं उसी समय आने की सलाह हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि मान लीजिए गर्भावस्था के दौरान आते हैं, आपको कोई दांतों की परेशानी होती है, दर्द होता है किसी दांत में, और उस समय आप आते हैं और अगर आप मान लीजिए आपके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए एक्सरे लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो हम उस समय नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका बुरा असर गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर में पड़ता है। तो इसीलिए आप बच्चे के प्लानिंग के समय में ही डेंटिस्ट को दिखाइए ताकि गर्भधारण करने से पहले ही आपके मुंह के सारे बीमारी का सही निवारण किया जा सके। गर्भ के दौरान जो है बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आते हैं महिलाओं में, जिसके वजह से आमतौर पे मसूड़े में सूजन आ जाता है। देखिएगा मसूड़े में खून आने की शिकायत हो जाती है, उसके लिए सफाई की आवश्यकता पड़ती है। बट कहा यह जाता है कि पहले 3 महीने में जब गर्भ जो है सही आकार ले रहा होता है तो उस दौरान किसी भी प्रकार का डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए, और उस दौरान अगर आपको दर्द भी है तो हम बहुत सारी दवा भी आपको नहीं दे सकते हैं।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अक्सर पायरिया से जो लोग ग्रसित होते हैं मुंह से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, तो वो किस तरह की बीमारी है और उसमें किस किस तरह के लक्षण आमतौर पर दिखाई देते हैं, और पायरिया जब हो जाए तो हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: देखिए, मैंने आपको बताया कि मुंह के सारे बीमारी का मेन कारण है मुंह का सही साफ सफाई नहीं रहना। अगर आपके मुंह में गंदगी रहती है, वो गंदगी आपके दांतों के आसपास में जमा होती है, उसके ऊपर में एक लेयर के जैसा जम जाता है जिसको कि हम लोग आमतौर के भाषा में प्लाक कहते हैं, उसी प्लाक में बहुत सारे विषाणु और रोगाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं रहते हैं वो उत्पन्न होते हैं और उससे जो केमिकल सिक्रीट होता है उसकी वजह से हमारे मसूड़े में सूजन आ जाता है। अब अगर वो मसूड़े में सिर्फ सूजन रहे और अंदर के हड्डी को नहीं मान लीजिए अफेक्ट करे तो उसको हम लोग जनरल बोलचाल की भाषा में जिंजिवाइटिस कहते हैं, मतलब आपका इन्फेक्शन मसूड़े तक ही सीमित है। और अगर आप उस दौरान आप अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो सही सफाई करने से, जिसको कि स्केलिंग कहते हैं, स्केलिंग कराने से जो है वो गंदगी हट जाता है और उसके बाद आप सही तरीके से घर पे अगर आप ब्रश करते हैं, सही तरीके से देखभाल करते हैं तो बीमारी वापस नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसी को नेग्लेक्ट करते हैं, लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट नहीं करते हैं तो वही जिंजिवाइटिस वाली बीमारी आगे जाकर के हड्डी में पकड़ लेती है और उसी को पायरिया या हम लोग डॉक्टरी भाषा में जिसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं उसमें तब्दील हो जाता है, जिसमें कि आपके मसूड़े से खून के अलावे मवाद आने लगता है, दांत हिलने लग जाता है, कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे वो कमजोर होकर के गिर जाता है।
1: दांतों से खून आने लगता है और कमजोर होकर के दांत गिरने भी लग जाते हैं। ये समस्या आमतौर पर मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनमें भी दिखाई पड़ती है, और भी किस तरह के लक्षण होते हैं और उससे किस तरह की देखभाल की जरूरत होती है?
2: मधुमेह के जो पेशेंट हैं उनको आमतौर पर अपने मुंह की देखभाल नॉर्मल लोगों से ज्यादा करनी चाहिए। उनका डेंटल कंसल्टेशन हर एक 6 महीने में होना चाहिए। जैसे वो शुगर की जांच नियमित रूप से कराते हैं उसी तरीके से दांतों की जांच करनी भी आवश्यक है, खास करके वैसे शुगर के पेशेंट में जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके शरीर के कई अंगों पर प्रभाव डालती है। मैंने आपको बताया कि दांत जो है हमारे जड़ के चारों तरफ हड्डी से वो मजबूती के साथ पकड़ा रहता है, तो अगर आपका शुगर का लेवल बहुत फ्लक्चुएट करेगा तो उसका बुरा प्रभाव उस हड्डी के ऊपर में पड़ता है, दांत के ऊपर में ज्यादा नहीं पड़ता है, और वो पकड़ जो है धीरे धीरे हड्डी गलने की वजह से कमजोर हो जाती है और ऐसे लोगों में पायरिया की

0: शिकायत ज्यादा देखी जाती है। तो इस रोग के रोकथाम के लिए ज्यादा जरूरी यह है कि आप डेंटिस्ट की सलाह ले ही लें, साथ में अपने शुगर को जो है कंट्रोल में रखें, नियमित जांच कराते रहें और अकॉर्डिंगली दवा खाते रहें।
1: टेढ़े मेढ़े जो दांत हो जाते हैं सर, वो किस कारण से होते हैं और उसे सीधा करने के लिए लोग दांतों में क्लिपिंग करवाते हैं, तो वो क्लिपिंग से कुछ दांतों में बुरा असर होता है?
0: हमारे पुराने जमाने में हमारे दादा दादी नाना नानी वो सजेस्ट करते थे, हमेशा देखिएगा कि खाने के लिए स्वस्थ खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल फूल खाइए, उससे हमारे दांत जो है मजबूत रहते हैं। जितना फल खाएंगे, जो थोड़ा कड़ा होता है वैसा फल खाएंगे, तो एक तरीके से हमारे दांतों का एक्सरसाइज होता है और वो हमारे दांतों की मजबूती को बरकरार रखता है। साथ में नियमित रूप से दूध का सेवन जरूर करें, जो कैल्शियम का मेन सोर्स है। अगर कैल्शियम की कमी आपके शरीर में होगी तो उसका बुरा असर दांत जब बन रहा होता है उस दौरान दांतों के ऊपर में भी दिखता है, साथ ही में जो चारों तरफ उसकी जो हड्डी होती है उसके ऊपर में भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा दांत जो है वो कमजोर बनता है। जो आप उबड़ खाबड़ वाले दांतों के बारे में बोल रहे थे, वो मेनली जो है जेनेटिक है, अनुवांशिक जिसको कहते हैं। अगर मदर फादर का दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वही सेम चीज आप देखिएगा बच्चों में भी होता है, उसका कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं। पुराने जमाने में लोग इतना ध्यान नहीं देते थे दांतों पे, वो उसको नेग्लेक्ट करके रखते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे ज्यादा कॉन्शियस हैं और वो इसको अपने पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं। तो इस वजह से आजकल दांत को सीधा कराने के लिए बहुत सारे पेशेंट उत्सुक रहते हैं, जिसको कि क्लिपिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर क्लिपिंग सही तरीके से उपचार हो तो उसका कोई दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर में नहीं होता है और वो दांतों को सही तरीके से अलाइन करने में हेल्प करता है।
1: कैविटी की आपने बात कही थी सर, तो कैविटी की वजह से कई बार दांत निकलवाना पड़ जाता है, तो निकलवाने के बाद बहुत सारी सावधानियों की जरूरत होती है, तो वो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और फिर जो नए दांत लगवाए जाते हैं उसमें किस तरह की सावधानियों की जरूरत होती है?
0: देखिए, मैं इस बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक चीज पे बहुत जोर देना चाहूंगा कि आप निकलवाने से पहले ये कोशिश करना है कि हमारे दांत के अंदर में जो है कीड़ा लगे ही नहीं। बचाव जो है बहुत जरूरी है, अगर आप बचाव करके रखेंगे तो दांत हमारा लंबे समय के लिए मजबूत रहेगा। असली दांत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसकी मजबूती जो है आप किसी भी आर्टिफिशियल चीज से सेम मजबूती आप रिगेन नहीं कर सकते हैं। तो जहां तक संभव हमें असली दांत को बचा करके रखना है। हम लोग क्यों नियमित जांच पे जो है स्ट्रेस देते हैं, हम कहते हैं कि आप नियमित जांच कराइए दांतों की, क्योंकि अगर आपके दांत में कीड़ा लगा तो वो शुरू में बहुत छोटा होगा, सही समय पे अगर आप डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो बिल्कुल शुरुआती समय में ही वो पकड़ में आ जाए, दांत का घिसना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर घिस जाए, जो कि खास करके ऐसे पेशेंट में देखा जाता है जो सुपारी खाते हैं, पान मसाला खाते हैं या पान खाते हैं, तो वैसी स्थिति में दांतों में कैपिंग कराने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि दांतों की हाइट को बरकरार रखा जा सके, उसकी मजबूती को बरकरार रखा जा सके, ताकि आप सही तरीके से खान पान कर सके।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और दांतों की सुरक्षा बहुत अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आप धन्यवाद।
0: धन्यवाद श्वेता जी।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार, जिसमें आज आपने सुना भेंटवार्ता दांतों की समस्या और हमारा स्वास्थ्य। जानकारी दे रहे थे इस विषय पर डॉक्टर दीपन कुमार, जिनसे बातचीत कर रही थी श्वेता रानी। और इसी के साथ कार्यक्रम घर संसार यहीं समाप्त होता है।

102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है बच्चों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी। संकलन एवं वाचन है रानी सहाय और वंदना अर्चना का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन। तो पेश है कार्यक्रम फुलवारी।

0: वंदना।
1: हाँ रानी।
0: आज हमारे बीच बहुत ही नन्हे प्यारे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं अपने मनपसंद कार्यक्रम फुलवारी में।
1: हाँ रानी, और सभी बच्चे काफी उत्साहित लग रहे हैं और बहुत सारे अपने अपने पसंद के प्रोग्राम को लेकर आए हैं। कोई कविता लेकर आए हैं, कोई गीत लेकर आए हैं। तो हम इन सभी बच्चों से पहले मिलते हैं
0: और करते हैं स्वागत। जय हिंद बच्चे।

0: बच्चों को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है वंदना, हमें हाँ। भी खुशी होती है क्योंकि
1: हाँ नानी।
0: जब भी हम बच्चों से मिलते हैं तो बच्चे जब खुश रहते हैं तो हमारी खुशी जो है दुगनी हो जाती
1: है। बच्चे भी काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो एक एक कर हम बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं इनका परिचय, ठीक है,
1: और जानते हैं कि सबसे पहले ये बच्चे हमें क्या सुनाएंगे।
0: एक एक कर नाम जानते हैं इनका। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम यशवी कमल है।
1: आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं?
2: मैं कार्मल स्कूल में पढ़ती हूँ।
1: किस क्लास पढ़ती हैं?
2: मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम आद्या रंजन है, मैं सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 6 में पढ़ती।
1: आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम है मान्या बस्त, मैं डीएवी जूनियर पब्लिक स्कूल से पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 5 में पढ़ती।
5: मेरा नाम अदिति किरण है और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 4 में हूँ।
0: आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, ठीक है। क्या सुनाएंगी आप सभी मिलकर? क्या सुनाने वाली हैं? आप भी हैं ना, आप अपना नाम बताइए।
6: मेरा नाम शुभता सिंह है, मैं माउंट कार्मल विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 5 में पढ़ती
0: है। बहुत अच्छी बात है,
1: तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी बच्चों के साथ मिलकर गीत सुनते हैं।
0: तैयार है ना बच्चे सभी आप लोग?
7: जी।
0: ठीक है, सुनाइए।

0: बच्चों आगे भी आपसे हम सुनेंगे कि क्या लेकर आए हैं आप, कविताएं हैं, चुटकुले हैं और भी बहुत सारी चीज है जो हम सुनेंगे आपसे। पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि देखिए अभी बरसात का समय है ना, तो हमें बरसात के समय में किन किन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या करना चाहिए हमें?
1: हमें पानी में नहीं भीगना चाहिए।
0: बिल्कुल सही,
1: हमें गुपचुप नहीं खाना चाहिए
0: ना। और बच्चे और भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
2: बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, आप कुछ कहेंगे? देखिए बरसात के समय बासी भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए और पानी जो है फिल्टर करके पीना चाहिए। आप बहुत नन्हे छोटे प्यारे बच्चे हैं, आगे आ जाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए।
3: बासी नहीं खाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वंदना देखो बच्चे भी हैं अब बहुत ही समझदार हैं और जवाब देने को भी तैयार हैं। हम भी कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे।
4: हाँ रानी जरूर। तो बच्चों जब भी बारिश होती है तो हम लोग सुनते हैं ना कि बिजली कड़कती है, कड़कती ना, डर लगता है ना उसकी आवाज से।
1: जी दीदी।
4: हाँ जब भी बिजली कड़कती है तो हम जब घर पे रहते हैं तो हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी जैसे टीवी है, मोबाइल है, ये सब का प्लग तुरंत निकाल देना चाहिए। टीवी चल रहा है तो बंद कर देना चाहिए, मोबाइल अगर हम देखते हैं तो मोबाइल को भी बंद कर देना चाहिए।
0: और बच्चों किसी लंबे पेड़, बिजली के खंभे या टावर के नीचे बिल्कुल खड़े ना हो, तालाब, नदी या किसी भी जल स्रोत से तुरंत दूर हट जाए और जमीन पर सीधे न लेटे बल्कि अपने पैरों की एड़ियों को आपस में मिलाकर पंजों के बल उकड़ू बैठ जाए और कानों को ढक ले। बहुत सारी बातें हैं सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल

0: सतर्क रहें और सजग रहें, क्योंकि बरसात का समय अभी चल रहा है ना।
1: और बच्चों, खास करके जब बारिश का मौसम होता है तो हमें नदी या तालाब से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं बारिश का मजा उठाने के लिए घर में बिना बताए कभी तालाब या नदी घूमने जाते हैं, तो ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ही खतरनाक भी होता है। जितना मजा आता है उतना हमें सावधानी भी रखने की जरूरत होती है।
0: समझ में आ गई ना बात बच्चों?
2: जी दीदी।
0: तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे ना, सावधानी बरतेंगे ना।
2: जी दीदी।
0: ठीक है, अब बच्चों की बारी वंदना। अब बच्चों से हम जानते हैं इनका नाम, आप क्या सुनाएंगी? आगे आ जाइए, नाम बताइए अपना।
3: मेरा नाम यशवी कमल है।
0: क्या सुनाने वाली है?
3: मैं एक प्यारा भारत में कविता सुनाने जा रही हूँ।
0: सुनाइए।
3: शीशा नहीं है हिंदुस्तान की, जो तुम इसे तोड़ दोगे, जो हम अपने हाथ पे आए, कसम तुम जीना छोड़ दोगे, कसम तुम जीना छोड़ दोगे। प्यारा भारत यही हिमालय सा पहाड़ है, यही रंग की धारा है, यमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है, फल फूलों से भरी भूमि है, खेतों में हरियाली है, आमों की डालों पर बैठी गाती कोयल काली है। बच्चों, माँ ने बाल पोस कर तुमको बड़ा मनाया है, लेकिन यह मत भूलो तुमने अन्न कहाँ का खाया है, तुमने पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी, चले हवा में किसकी। बोलो बच्चों प्यारे भारत की, गिरी जादा शुक्ल गिरिश, जय हिंद।
0: बहुत अच्छी कविता थी, बहुत और बहुत अच्छी कविता सुनाई, एक बार फिर से ताली हो जाए इनके लिए। अब आप क्या सुनाइएगा? आगे आ जाइए, अपना नाम बताइए।
1: तो रानी, हमारे बीच एक बहुत ही छोटे से बच्चे हैं।
0: हाँ?
1: तो उनका नाम जानते हैं, आपका नाम क्या हुआ?
4: आदन।
1: आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो?
4: जी डिवाइन का।
1: और किस क्लास में पढ़ते
4: है?
1: क्या सुनाओगे?
4: पोयम। दादा आए लाल लाल गाजर लाए, माता ने गाजर का हलवा बनाया, बादाम व शहद डाला, माता चाचा दादा व नाना गरम गरम हलवा खाकर पाठशाला गए।
0: वाह वाह, बहुत छोटे बच्चे, बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब बताइए, आप किसकी बारी है? आप नहीं, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए, क्या नाम है, क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम अदिति किरण है।
0: सुनाइए।
5: भारत देश हमारा है, हमें जान से प्यारा है, दुनिया का सरताज है वो सारे देशों से न्यारा है, गंगा यमुना नदियां हैं बहती, हिमालय सा पर्वत है, यहाँ भिन्न संस्कृति भिन्न है उत्सव, यहाँ भाषाओं का संगम है, हम सब ये वादा करते हैं कभी ना झुकने देंगे, इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे।
0: बहुत अच्छी कविता, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, है ना। और छोटी सी बच्ची और भी बैठी हुई है वंदना, मैं देख रही हूँ सबकी बारी आएगी, एक एक कर हम सबके पास आएंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, अपना नाम बताइए, एक साथ कुछ सुनाना चाहती हैं आप, क्या सुनाएंगी? आप दोनों सुनाने वाली हैं, नाम बता दीजिए।
6: मेरा नाम आद्य रंजन है।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
6: मैं कक्षा 6 में पढ़ती
0: हूँ। आप अपना नाम बताइए।
7: मेरा नाम है मान्यम बस्टा और मैं कक्षा 5 में पढ़ती
0: हूँ। ठीक, सुनाइए।

0: ताली बजाइए। बच्चों एक छोटी सी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ आपको, आप सभी सुनने को तैयार है ना?
1: जी दीदी।
0: तो सुनिए, एक जंगल में एक शेर सो रहा था। एक छोटा सा चूहा वहाँ आया और शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई, उसने गुस्से में चूहे को पकड़ लिया। चूहा डरा और बोला, मुझे छोड़ दो, कभी मैं भी आपके काम आऊंगा। शेर हंसा और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। चूहा वहाँ आया, उसने अपने तेज दांतों

0: जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया, दोनों पक्के दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है बताइए?
1: कोई छोटा नहीं होता।
0: बिल्कुल, सबकी अपनी ताकत होती है, है ना? सबकी अपनी ताकत होती है और भलाई का बदला भलाई से मिलता है ना? तो अब किसकी बारी है वंदना?
2: आपका, आप क्या सुनाइएगा?
3: मैं एक कहानी सुनाऊंगा।
2: तो उससे पहले आप अपना नाम बता दीजिए।
3: मेरा नाम शुभता सिंह है। एक बार की बात थी, एक राजा था, वो अपने राज्य में राज्य को बहुत अच्छे से संभालता था, मगर उसकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उसे यह चिंता खाती थी कि मेरे बाद मेरे राज दरबार को कौन संभालेगा। उसने ये चीज अपने मंत्री से पूछी। मंत्री ने कहा कि बच्चों के बीच में एक प्रतियोगिता करवा दो, उसमें जो जीतेगा वो बन जाएगा अगला जो राज दरबार संभालेगा। राजा ने यह प्रतियोगिता करवाई कि जिसका बीज सबसे ज्यादा अच्छा पौधा बनेगा वो इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। सारे बच्चे बड़े उत्सुकता से दूसरे दिन आए, बीज मिला, सबने उस सबके बीच में एक छोटा बच्चा, उसका नाम था मोहन, उसे वो बहुत गरीब था, फिर भी वो उस प्रतियोगिता में भाग लेता है, अपना बीज लेता है और वहाँ से चल जाता है। उसने बहुत मेहनत की, उस बीज को पानी दिया, खाद दी, सारी चीजें दी, मगर उसका, मगर दो महीने बाद जब उसे अपना पौधा दिखाना था, उसका पौधा पनपा भी नहीं। दुख से मगर वो वहाँ पे गया, सबसे आखिरी में खड़ा हुआ। राजा आए और सारे बच्चों के पौधे देखने लगे। उन सब के पौधों को देख कर राजा को अच्छा लगा, मगर वो जब आखिरी में गया, उसने मोहन से यह बात पूछी, तुम्हारा बीज तो पनपा भी नहीं, ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा, मैंने पूरी ईमानदारी से इस बीज को पानी दिया, खाद दी और अच्छी से धूप भी दिखाई, मगर ये पनपा भी नहीं। राजा हंस कर कहता है कि मोहन अगला राजा बनेगा। और फिर राजा बताता है कि सारे बीज भूंजे हुए थे और भूंजे हुए बीज उग ही नहीं सकते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए और कभी भी बेईमानी के रास्ते में नहीं जाना चाहिए। शुक्रिया।
2: कि हमें हमेशा सच्चाई की राह पे चलना चाहिए, जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट या गलत राह नहीं चुननी चाहिए, है ना? आप सभी समझे ना?
1: जी दीदी।
0: ध्यान से सुन रहे थे ना कहानी को?
1: जी दीदी।
0: चलिए अब किसकी बारी है? अब ऐसा करते हैं कि हम खूबसूरत सा एक बाल गीत वंदना बच्चों को सुनवाते हैं। सभी सुनने को तैयार है ना?
1: जी।

0: कैसा लगा बच्चों ये गीत आप लोगों को?
1: बहुत अच्छा।
0: ठीक है, अब आपकी बारी है, सुनाइए क्या सुनाएंगी आप?
2: मैं कविता सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है रक्षाबंधन।
0: वाह, बहुत अच्छी कविता है, सुनाइए।
2: भैया का मन है हर्षाया, पावन रक्षाबंधन आया, बहना फूली नहीं समाये, फूलों के जैसे मुस्काए, लिए थाल में बर्फे लड्डू, ऐसे घूमे जैसे लट्टू, अंबर ने भी प्यार लुटाया, पावन रक्षाबंधन आया, भैया को राखी बांधेगी अपने निश्चय।

0: उसे रुपया तिरके का तनता था। इंतजार का पल है पाया, पावन रक्षा बंधन आया। रक्षा बंधन का यह कहना, कभी ना दुख पाए बहना। संकट का जब धन गिराए, भैया को वह समुख पाए। धागे में संसार समाया, पावन रक्षा बंधन आया।
1: छोटी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है ना, और सुनाई भी बहुत अच्छी कविता। आ जाइए, आप आगे आ जाइए। नन्हे प्यारे बच्चे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम आद्विक रंजन है। रविवार का दिन था, दिन निकल आया था, आज चिड़िया घर जाना था। तथा विभा ने मामा का हाथ पकड़ा था, शियार डरावना था, हिरन घास खा रहा था, जिराफ का गला बड़ा था, चिड़िया घर इतना बड़ा था, हम सब थकर घर वापस आए।
1: वाह वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत नन्हे छोटे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, और भी तैयारी करके आप आइएगा, है ना। आप लोग कुछ सुनाएंगी?
3: आप क्या सुनाइएगा?
4: मैं एक पोयम सुनाऊंगी।
3: अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम है मान्यम बस्ता।
3: सुनाइए।
4: नदी यहाँ पर मूर्ति है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है उस सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी हो होती, कहीं कहीं लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छुपी बिल्कुल ही खो जाती।
3: एक बच्चा और है जो हमें पोयम सुनाएगा, पहले आप अपना नाम बताएं।
5: मेरा नाम शुभता सिंह है।
3: चलिए सुनाइए।
5: बरसात की आती हवा, वर्षा धूले आकाश से, यह चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से, मंद मुस्काती हवा, बरसात की आती हवा, यह खेलती है डाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से, झकझोर लहराती हवा, बरसात की आती हवा, यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, हर एक लता के जाल से, अट खेलती झट लाती हवा, बरसात की आती हवा, यह शून्य से होकर प्रकट, नव हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती हवा, बरसात की आती हवा।
1: अपने कार्यक्रम में ऐसे ही सुनते रहेंगे बच्चों से।
3: तो बच्चों, अब आप ही के बीच से एक बच्चे जो है आपसे जीके का सवाल पूछेगी, तो आप सभी जवाब देने के लिए तैयार हैं?
6: जी दीदी।
3: हाँ तो चलिए, आप सवाल पूछिए, मगर उससे पहले अपना नाम बताइए।
7: मेरा नाम है शीजा।
3: चलिए पूछिए।
7: भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
3: बताइए
1: बताइए।
8: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
3: सही जवाब।
7: भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा?
3: बताइए किसने लिखा राष्ट्रगान, किसने लिखा? दिमाग पे थोड़ा अपना जोर डालिए, सोच।
8: रविंद्रनाथ।
3: गुड, वेरी गुड।
7: ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है?
3: बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? सोचिए सोचिए सोचिए, सभी सोचिए। बिल्कुल सही। आपका नाम क्या हुआ?
9: आर्यन।
3: चलिए तो क्लैप हो जाए भाई, सही जवाब मिला है।
1: बच्चे बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए हैं वंदना, है ना। आप और कुछ पूछना चाहेंगी?
7: ऐसा कौन सा अंग है जो बच्चे से लेकर बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता है?
1: कौन सा अंग है बताइए?
3: नहीं, उंगली तो बढ़ता है। हाँ बिल्कुल सही।
1: इनका जवाब
3: आँख।
1: आप सही जवाब। आप अपना नाम बता दीजिए।
5: मेरा नाम शुभता सिंह है।
1: चलिए चलिए बिल्कुल सही जवाब। और भी कुछ सवाल है ना चाहेंगी?
7: मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं?
1: क्या कहते हैं हिंदी में?
3: सभी तो मोबाइल इस्तेमाल तो बहुत करते हैं बच्चे
1: आजकल, बच्चे की है बताइए।
3: बिल्कुल सही।
1: बिल्कुल सही। चलिए सोच में मत पड़िए, है ना, जवाब सही मिला है। और बताइए
7: सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है?
1: कौन सा पेड़ देता है सबसे अधिक?
3: पीपल।
1: पीपल।
3: वाह बिल्कुल सही जवाब है। आपका नाम क्या हुआ?
1: आप अपना नाम बताइए, आगे आ जाइए, अपना नाम बताइए।
9: मेरा नाम स्मृति है।
3: तो स्मृति के लिए भाई क्लैप हो जाए। भी सवाल है,
1: ठीक है।
7: किस फल में एक भी बीज नहीं होता?
1: कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होते हैं?
3: नहीं, जवाब सही नहीं है। कौन सा फल है बताइए?
6: केला। केला।

0: बढ़िया,
1: ताली बजाइए, जोर से बजाइए।
0: सभी बच्चे तैयारी के साथ आए हैं और फटाफट सभी जवाब भी दे रहे हैं।
2: हाँ वंदना,
3: कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते हैं?
1: जवाब सही है, चूहा। ठीक है,
0: तो अब हमारे बीच आई है एक बच्ची जो आप कविता सुनाएगी। आपका नाम क्या हुआ?
4: मेरा नाम स्मृति है।
0: तो आप कविता सुनाएंगी?
4: हाँ।
0: आप खुद से लिखती हैं कविता?
4: हाँ।
0: तो चलिए सुनाइए।
1: बहुत अच्छी बात है।
4: पिता के होने से अच्छे जीवन की आशा है, पिता के बिना जीवन महज एक तमाशा है। पिता के होने से अच्छे स्कूल में दाखिला है, पिता के होने से हर खिलौना मिला है। पिता वो है जो खराब जूते पहनकर भी तुम्हारे लिए नए लाता है, तुम्हें नए कपड़े दिलाता है, भले खुद के लिए फटा हुआ सिलवाता है। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए खुद भूखा सो जाता है, तुम्हें चैन से सुलाने के लिए वो रात भर जग जाता है। पिता के होने से औलाद के सपने हैं, पिता के होने से सब औलाद के अपने हैं। पिता से आती है ख्वाब देखने की हिम्मत, पिता से आती है चॉकलेट्स बिन पूछे कीमत। पिता के होने से बीमारी में भी हौसला है, पिता के होने से मुश्किलों का तूफान टल जाता है। पिता से सोने को छत है, पिता के होने से आसान जीवन का पथ। पिता के होने से त्योहार पर कई पकवान है, पिता के होने से समाज में औलाद का मान। जिम्मेदारियों को अपनी पिता कभी खुलकर नहीं बताता, प्रेम को शब्दों से नहीं कर्मों से है जताता। पिता के होने से जिंदगी का समंदर होता आसान है, पिता के होने से माँ के मंगल सूत्र का मान है। पिता से पूरी दुनिया अपनी सी लगती है, पिता के न होने पर ये दुनिया बहुत ठगती है। करोड़ों की संपत्ति वो नहीं है जो पिता ने कमाई है, बल्कि पिता खुद अनमोल संपत्ति है जिसने सबकी जिंदगी सजाई है। पिता को दुखी करके पाप मत बटोरो, पिता के हर कर्म में प्रेम है भले शब्द कठोर। पिता के होने से ये गगन अपना लगता है, पिता में अपने लिए एक स्थिर घर सा दिखता है, एक महफूज घर जो सदैव टिकता है। पिता वो नाम है जिससे चलता हर काम है, जिसके साथ होने पर मुश्किलों में भी आराम है। पिता परिवार की छाया है, रक्षा की एक काया है, जिसने खोया उसने जाना है कि बिन पिता के जीवन किसी को नहीं भाया है, किसी को नहीं भाया है।
1: है ना वंदना?
0: हाँ रानी। बच्ची और है जो सुनाना चाहती है, आप आगे आ जाइए, अपना नाम बताइए।
1: क्या नाम हुआ आपका?
5: मेरा नाम पंखुड़ी है। आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। उस कविता का नाम है पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई सांस है सांस नई। युग युग के मुरझाए सपूतों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल, फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगल मंगल्य ध्वनियों से गुंज जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो।
0: आप सभी क्या सुनाइएगा?
5: हम लोग एक गाना सुनाने वाले हैं
0: और इनके साथ है आज साथ दे रही है गिटार पर, उनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ?
6: आर्य आनंद।
0: और आप लोग अपना अपना नाम बताइए।
7: मेरा नाम यशु है।
8: मेरा नाम पंखुड़ी है।
9: मेरा नाम परी है।
10: मेरा नाम मिस्टी है।
0: चलिए शुरू कीजिए।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी। संकलन एवं वाचन था रानी सहाय और वंदना अर्चना का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:98 हुए हैं। श्रोताओं, थोड़ी देर में 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक। 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और श्रोता, आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रातः 8:30 पर। कृपया इन सभी के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया।

0: संबंध में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा।

0: उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
1: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भूटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछे 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2,400 लोग लापता। नेपाल ने भूटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: RSS centenary period. UAE's central bank has decided to conduct a special and urgent examination of the Banque Misra branches in the Emirates after the US Treasury flagged that the processed transactions potentially part of the Iranian shadow banking networks. Under Operation Economic Outcast, the US Department of the Treasury had proposed to revoke Banque Misra UAE's correspondent banking access to US financial institutions. This would effectively block US dollar transactions for UAE branches of Egypt's second largest bank. In women's cricket, India will begin the T20 Asia Cup campaign against Thailand today at Dubai International Cricket Stadium. The match will start at 8:30 p.m. Indian time. Harmanpreet Kaur will lead India, while Smriti Mandhana will be the vice-captain. Union Minister of Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 88th edition of Fit India Sundays on Cycle in New Delhi. The event was a special National Sports Day edition of the initiative organized in collaboration with BRICS at the Jawaharlal Nehru Stadium. Talking to media, Dr. Mandaviya said that cycling has become popular among citizens. The India Meteorological Department has issued red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. The IMD warning is for Baleshwar, Bhadrak, Kendrapara and Mayurbhanj, forecasting heavy to very heavy rainfall at a few places with extremely heavy rainfall at one or two places. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Abhishek. Prime Minister Narendra Modi's visit to Tashkent is noticed prominently by the dailies. Modi flags shared vision in Tashkent, trade and culture to energy defense, headlines the Sunday Express. Hindustan Times quotes RSS Chief Mohan Bhagwat in New York City as saying, must respect and protect diversity. Finance Minister Nirmala Sitharaman urges global companies to build for world from India, states the Economic Times. On the flash floods in Nepal, the Asian Age headlines, Indian experts join rescue relief operations, Nepal lauds Modi, timely aid. And finally, special feeling, Harry Kane reacts after winning Germany's Footballer of the Year award, says the Sunday Statesman. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Death toll from flash floods in Nepal rises to 675. Nearly 2,400 people still missing. Nepal issues fresh flood alert for Bhote Koshi River. External Affairs Ministry says 108 Indian nationals rescued so far. India sends forth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal. And in women's cricket, India to begin the T20 Asia Cup campaign against Thailand in Dubai this evening. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
4: बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जाँच और उपचार कराएं।
3: जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा करेंगे अपने विचार, मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया। राजधानी रांची में आज 4 सेंटरों पर होगी नीट पीजी 2026 परीक्षा। केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से राज्य भर में हो रही है बारिश। रांची, हजारीबाग, दुमका समेत 15 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर खेलेगा भारत जीतेगा भारत की थीम पर सिमडेगा, हजारीबाग, देवघर समेत कई जिलों में आयोजित की गई हॉकी प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
5: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना में मतदाता सूची के विशेष सत्यापन की मांग की है। पाकुड़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने संताल में घुसपैठ का आरोप लगाया।
7: औसत जो वृद्धि है वो 24 है और मुस्लिम मतदाता की वो 40.9 पर 24 से 40 हो गया, लगभग 15-16% की वृद्धि। लेकिन वहीं पर अगर नॉन मुस्लिम, हिंदू भी है, आदिवासी भी है, क्रिश्चियन भी, उन वृद्धि दर देखते हैं तो 11.4 पर 5 वर्ष दर्शाता है। इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से घुसपैठ हुआ है।
5: राजधानी रांची में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक रांची में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। केंद्र सरकार के जारी निर्देश के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने और संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों में कम से कम 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश दिया है। नीट पीजी 2026 की परीक्षा देश भर के साथ ही आज रांची के 4 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक पाली में होगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा सुबह 6 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों की तैनाती की है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
8: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा

0: की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में दो गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन के संरक्षण, सुरक्षा एवं वैज्ञानिक निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से साहिबगंज के चानन स्थित डॉल्फिन व्याख्या केंद्र में कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर नचिकेत केलकर ने डॉल्फिन संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी।
2: झारखंड सरकार के अंदर निगरानी का क्षेत्र आता है, वो कुछ 40 से 45 और अगर आप साइड चैनल भी गिनते हैं तो 60-65 किलोमीटर के दायरे में आता है। हमने ऐसा देखा है कि कभी कभार एक सर्वे अक्टूबर में होता है, उसमें मिलते हैं 60-70 डॉल्फिन।
1: बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण राज्य भर में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार में 61 और रांची में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, हजारीबाग, दुमका, देवघर, पूर्वी सिंहभूम समेत आसपास के 15 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दुमका जिले में अगस्त माह में कम बारिश होने से मयूराक्षी नदी पर बना दिगल पहाड़ी डैम अब पूरी तरह नहीं भर पाया है। जलस्तर कम होने से धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि आगे बारिश नहीं हुई तो सिंचाई के लिए डैम का पानी जरूरी होगा। प्रखंड के अन्य डैमों में भी पानी कम है। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर खेलेगा भारत जीतेगा भारत की थीम के साथ झारखंड के विभिन्न जिलों में हॉकी और खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। सिमडेगा, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा तथा देवघर में हॉकी प्रतियोगिताएं, मैत्रीपूर्ण मुकाबले और अन्य कार्यक्रम हुए। हॉकी झारखंड ने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और जमीनी स्तर पर हॉकी को मजबूत करना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नेपाल में बाढ़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने नेपाल बाढ़ पर लिखा है, अलर्ट में एक घंटे की देरी वरना सैकड़ों जाने बच जातीं। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अब जिंदगी बचाने की जंग, नेपाल ने मांगी मदद, बचाव अभियान प्रभावित। हिन्दुस्तान ने झारखंड में स्वाइन फ्लू को लेकर जारी अलर्ट की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी पर झारखंड हाईकोर्ट के सीआईडी जांच के आदेश की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा करेंगे अपने विचार, मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया। राजधानी रांची में आज 4 सेंटरों पर होगी नीट पीजी 2026 परीक्षा, केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से राज्य भर में हो रही है बारिश, रांची, हजारीबाग, दुमका समेत 15 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर खेलेगा भारत जीतेगा भारत की थीम पर सिमडेगा, हजारीबाग, देवघर समेत कई जिलों में आयोजित की गई हॉकी प्रतियोगिता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

एफएम 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग की दिशा सुबह के 8:44 और 52 सेकंड हुए हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है प्रोग्राम मॉर्निंग मेलोडी।

0: दिल है तुम्हारा। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। मॉर्निंग होगी और भी मेलोडी दोस्तों, बस बने रहिए एफएम 92.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल ये संदेश आपके लिए।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: मेलोडी दोस्तों, आप सुन रही है आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। हम हैं आपके साथ इस पल वंदना श्रीवास्तव।

0: खलनायक फिल्म का ये गाना श्रोता आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में। और लीजिए अब हमारी कार्यक्रम की ओर से ये संदेश आपकी एफएम सेट पर।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

शैलेंद्र सिंह के गाए इसी गाने के साथ श्रोताओं मॉर्निंग मेलोडी की ये छोटी सी महफिल यहीं से मिलती है। दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 9 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम पूरे एक घंटे हमारे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बैंड बाजा बारात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें बेनी दयाल हिमानी कपूर की थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, सलीम सुलेमान की तर्स थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: हमारे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

श्रेया घोषाल की आवाज में इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, से समीर ने लिखा था चित्रलोक कार्यक्रम में। अब आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत।

अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

डिसअपीयरेंसेस बलपूर्वक गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन ऐसे लोगों के लिए बड़ी गंभीरतापूर्वक सोचने और लापता हुए पीड़ितों को स्मरण करने और उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करने का दिवस है, जिन्हें जबरन उनके परिवारों से अलग कर दिया गया, जिनके बारे में परिवार आज भी सच्चाई और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये स्थिति मानवाधिकारों का सबसे क्रूर हनन है, जहां पीड़ित परिवारों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पल पल संघर्ष करना पड़ता है। आज का यह दिवस हमें इसी खामोश त्रासदी के खिलाफ आवाज उठाने और खड़े होने की प्रेरणा देता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य केवल इस दुख तकलीफ को याद करना ही नहीं, बल्कि इसके प्रति सामूहिक चेतना जागृत करना है। आइए आज हम इन लापता किए गए लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करें और ऐसी घटनाओं के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लें।

अरिजीत सिंह की आवाज में चिचोरे फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे प्रीतम का संगीत था। सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का ये गीत आपको अब सुनवा रहे हैं एक बार और। अरिजीत सिंह की आवाज है, कुमार के बोल है रोचक कोहली का संगीत।

0: सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे। कुमार ने इस गीत को लिखा था और रोचक कोहली ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

20 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकर दास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैले

0: होते।
1: शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब

सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोता, इस पल हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रोग्राम हेलो हजारीबाग।
1: नाइन एट सेवन सिक्स

0: हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: रात के अंधेरों में एक चेहरा याद आता है और दिल से एक पुरानी धड़कन टकराती है। रात भर हम ढूंढते रहे उस चेहरे को और महसूस करते रहे उस रिश्ते को, न मिला वो चेहरा कभी।

दोस्तों रात बीत चुकी है, सुबह की पलकें खुल चुकी है और हम आप एक नए दिन की शुरुआत कर चुके हैं। आपकी सुबह अब आपके बीच है बिल्कुल हसीन मुलाकात के साथ, और ये हसीन मुलाकात हो रही है FM 102.1 MHz पर हेलो हजारीबाग के साथ। दोस्तों इस पल मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना श्रीवास्तव, आप सभी को हमारा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग।

तो दोस्तों आज की संडे की ये सुनहरी सफर जो होगी बहुत ही खूबसूरत होगी, थोड़ी नरमी और थोड़ी गर्मी से भरी होगी, बिल्कुल आज के मौसम की तरह। बने रहिए पूरे एक घंटे अपने FM 102.1 MHz पर। कुछ बातें, कुछ जज्बातें, कुछ आसपास के हमारे उथल पुथल और बहुत सारे गाने जो आपके दिल को देते रहेंगे दस तक।

कहते दोस्तों, दिन की शुरुआत जैसी हो वैसा ही रात होता है। तो आइए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, जो आ रहा है बिल्कुल आपके एफएम सेट पर।

दोस्तों, इस गाने को सुनकर आपके दिन की शुरुआत खूबसूरत हो चुकी है और दिल का मौसम भी जरूर बदल गया होगा। तो ऐसे में चलते चलते क्यों ना हम आपको बताते चले आज के अपने शहर के मौसम का हाल।

दोस्तों, अगर मौसम विभाग की माने तो आज हमारे शहर हजारीबाग का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 29 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारी थंडरिंग होने वाली है कुछ ही देर बाद, और बारिश की रिमझिम बूंदों में आप भींगेंगे और हमारे संग गाएंगे कुछ ऐसे।

इतनी कशिश हो निगाहें शौक में साकी कि इधर दिल में ख्याल आए और उधर वो बेकरार हो जाएं।

सच दोस्तों, जब आप होते हैं हमारे करीब तो हमें भी कुछ कुछ होता है। और इस पल हेलो हजारीबाग बेकरार है आपसे कुछ कहने के लिए। कहते दोस्तों, जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही जिंदगी होगी, इसलिए अपनी सोच को हमेशा उमदा रखे। तभी तो हेलो हजारीबाग हर सुबह आपके लिए लेकर आता है अलग अलग उमदा विचार, ताकि आपके जीवन को मिले एक नई राह, एक नया आकार। आज हेलो हजारीबाग आपसे कहता है ये विचार। दोस्तों, हेलो हजारीबाग आप सब से कह रहा है इस पल, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ऐसे चोर होते हैं जो हमारी आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। इसलिए बीते हुए कल में हमने क्या खोया, क्या कुछ हमारे साथ बुरा हुआ, इसका अफसोस हमें नहीं करना चाहिए। और आने वाले दिन में क्या कुछ होगा, इस चिंता से अपने को भयभीत करके अपने आज को खराब नहीं करना चाहिए। हम सबको वर्तमान में जीना चाहिए। जो वर्तमान में जीता है असल में जिंदगी उसी को अपनाता है। दोस्तों, हमें वर्तमान में जीना चाहिए और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारे आने वाले कल में हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि उम्मीद का एक पत्ता भी काफी होता है पूरा जंगल फिर से हरा करने के लिए। हेलो हजारीबाग, हमारी इन बातों को आप जरूर अमल कीजिएगा अपनी जिंदगी में और देखिएगा फिर किस तरह से खुशियों का चमन बन जाता है आपका ये जीवन। तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो चुकी है और अब वक्त हो गया है आपको फिर से अपने साथ गुनगुनाने के लिए, एक नई दिशा में ले चलने के लिए। चलिए उस दिशा में चलते हैं संघात कर।

साथियों, आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त का दिन बहुत ही खास है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अब आप पूछेंगे कि ये राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस क्या है और इस दिवस की क्या खासियत है, तो चलिए बारी बारी से आपको बताते हैं आज के दिवस की खासियत और इसकी विशेषताएं। साथियों, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर साल 30 अगस्त को देश की अर्थव्यवस्था में छोटे पैमाने के उद्योगों और एमएसएमई के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 30 अगस्त 2000 को की थी और उस दिन उसने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योगों के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा करके ही इस दिवस को मनाने की अनाउंसमेंट की थी और तब से ये निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 30 अगस्त को हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाएंगे और तब से ये चलन चलता आ रहा है। बताते चले दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में इस दिवस का और हमारे लघु उद्योगों का क्या अपना रिस्पांस रहता है, क्या रोल रहता है, क्या भूमिका है। इसके संदर्भ में बताते हैं दोस्तों कि देश की जीडीपी में मतलब विकास में, आर्थिक विकास में लघु एवं मध्यम उद्योगों का योगदान 30% से अधिक है और निर्यात में लगभग 45% हिस्सा होता है। और ये रोजगार प्रदान करने वाला भी वृहद क्षेत्र है। लघु उद्योग के क्षेत्र में कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कहलाता है ये, जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कई लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब लघु उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं इसके बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बता दें, सिलाई कटाई बुनाई कढ़ाई, बैग बनाने के काम, जूट के बांस की चटाई बना

के कार्य लाह की चूड़ियां बनाने के कार्य हो, या आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनाने के कार्य हो, या फिर और भी कितने सारे कार्य हैं जो लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। आजकल बहुत सारे पर्व त्योहारों में रंगीन मोमबत्तियां जलाई जाती है और जश्न मनाया जाता है। ऐसे में रंगीन मोमबत्तियां बनाना भी आज लघु उद्योग में से एक प्रमुखता का स्थान रखने लगा है। बांस की टोकरी बनाना, बांस के सूप बनाना, बांस के खेरके से झाड़ू बनाना, ये भी हमारे कई लोगों के रोजगार का प्रमुख साधन बन गया है। हमारी बहनों की बातें करें तो हमारी बहनें भी लघु उद्योग में जुड़ी हुई हैं, खासकर जिन्हें अच्छी तरह से अचार बनाना आता है, क्योंकि हर खाने की जान होती है अचार। हर घर में अचार का इस्तेमाल किया जाता है और ये अचार जो बनता है बृहद पैमाने पे हमारी बहनें अपने घरों में अपनी सखियों के साथ मिलकर अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बनाती है और घर घर तक पहुँचाती है। जैम जेली भी आजकल बच्चों की शौक है, ऐसे में जैम जेली बनाकर इन्हें घर घर तक पहुंचाने का कार्य भी आज बहुत सारे लोग करते हैं और ये भी लघु उद्योग का एक प्रमुख आयाम बन गया है। तो दोस्तों, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को अपना कर अपने आसपास अपने घर के लोगों को अपने को भी आत्मनिर्भर बनाए, यही है उद्देश्य आज के राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो और नित्य आर्थिक विकास की दिशा में एक नई गाथा लिखे।

30 अगस्त इतने में ही नहीं सिमटा है दोस्तों, जिस तरह से हर दिन अपने पहलू में समेट कर लाता है बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी घटनाओं की यादें, तो आज 30 अगस्त लेकर आया बहुत सारी घटनाएं जो देश विदेश में घटी थी और आज के दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है, ना कि केवल हमारे राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी। कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं, चलिए उस दिशा में भी हम आपको बताते हैं।

20 अगस्त 1659 साथियों मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह को उनके भाई औरंगजेब के आदेश पर फांसी दी गई थी। अगस्त 1835 ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध शहर मेलबोर्न की स्थापना आज के दिन हुई थी, इसलिए आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही खास माना जाता है। 30 अगस्त 1928 राजबिहारी बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की थी और 30 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। 30 अगस्त 1963 अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान तनाव कम करने के लिए प्रसिद्ध टेलीफोन हॉट स्थापित की गई थी। 30 अगस्त 1984 अमेरिकी की अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी और आज के दिन 30 अगस्त 1991 में अजरबैजान ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा की थी। 200 आज का दिन 30 अगस्त इसलिए भी खास है क्योंकि बहुत सारे प्रमुख ऐसे हस्ती हैं, चर्चित व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म हुआ था। 30 अगस्त 1559 मुगल सम्राट जहांगीर का जन्म हुआ था। 30 अगस्त 1903 हिंदी साहित्य के जाने माने उपन्यासकार और रचनाकार भगवती चरण वर्मा का भी जन्म हुआ था और 30 अगस्त 1923 को प्रसिद्ध हिंदी

संगीतकार शैलेंद्र का जन्म हुआ था। तो आइए दोस्तों, इस मौके पर हम भी आपको सुनवाते चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, क्योंकि शैलेंद्र और उनके साथियों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। तो हेलो हजारीबाग सुनाएगा आपको और भी गाया था, फिलहाल ये गाना आपके लिए।

तेरी गुलाबों की महक किताबों में आज भी मौजूद है, तेरे जिस्म की खुशबू मेरी सांसों में आज भी मौजूद है। न जाने किस डोर से बांधा हूँ आज भी तुझसे कि तू नहीं, पर इन हवाओं में तेरी ही बातें हैं, तेरी ही खुशबू आज भी मौजूद है। हेलो हजारीबाग, पूरे आधे घंटे हमने बिता लिया है आपके साथ। इस पल हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10

0: बजकर 33 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। हम आपसे मिलते हैं इस छोटे से संदेश के बाद।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।

स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हेलो हजारीबाग में। आज आपके इस कारवा की हम सफर है आपकी दोस्त वंदना श्रीवास्तव एफएम 2.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, जिंदगी में बरसात तब आती है खुशियों की जब पॉकेट में पैसे होते हैं और घर के परिवार के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ससमय हो पाती है। इसलिए दोस्तों हमारी सरकार भी चाहती है कि हमारे हर व्यक्ति के हाथ में काम हो, सब कोई आत्मनिर्भर बने, युवक हो या युवतियां। और इसीलिए सरकार अपने नागरिकों को देखकर, अपने भारतवासियों को देखकर, खास करके जो आर्थिक जो रेखा होती है, निर्धनता की रेखा होती है, उससे नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों की मदद के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चला रखी है। अगर हम इन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाए तो खुद को आत्मनिर्भर बना के अपने आसपास, अपने सगे संबंधियों और समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें भी जीवन की खुशियों में सराबोर कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसी एक योजना है सरकार की, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये योजना क्या है और किस तरह से लाभ दिला रही है हमारे देशवासियों को, हम आपको एक एक कर बताते हैं।

दोस्तों, हमारे हलवा हजारीबाग के साथियों, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है आर्थिक समावेशन फिनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में देश की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी कल्याणकारी योजना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं ये है कि जीरो बैलेंस में खाता खुलता है। इस योजना के तहत बैंक खाता खोलने के लिए किसी न्यूनतम राशि को रखने की जरूरत नहीं है आप सबको। दूसरी विशेषता यह है कि ये रुपे डेबिट कार्ड भी प्रवाह जो है उपलब्ध कराती है। खाता धारक को मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। दुर्घटना बीमा की सुविधा भी है। इस योजना के तहत रुपए कार्ड के साथ 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। इसकी एक और खास विशेषता है ओवरड्राफ्ट सुविधा। संतोषजनक संचालन के लिए खातों में 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट बिना गारंटी की आपको कर्ज देने की भी सुविधा है इस योजना के तहत। इतना ही नहीं, हमारे शहरवासियों, आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT की सुविधा है। आज इसी के तहत कितने लोगों को उनकी जो हक की राशि है उनके खाते में डायरेक्ट जा रही है। खास करके जब हम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की बातें करते हैं तो वहाँ बच्चों को पोशाक के लिए पैसे अब डायरेक्ट उनके खाते में दी जाती है। इतना ही नहीं, छात्रवृत्ति के पैसे भी बच्चों को उनके DBT खाते में ही दी जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की कई लाभ है। पेंशन योजना भी इसी से जुड़ी होती है और पेंशन के पैसे भी हमारे अर्हताधारी को जो है उनके अकाउंट में भेजी जाती है डायरेक्ट हमारे DBT के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ आप कैसे उठाएं? तो साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना PM

झेंटे वाई का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले किसी नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र के पास जाकर अपना जनधन खाता खुलवाना होगा। और इसके लिए आयु जो है आवश्यक वो है आवेदक की उम्र कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए। दस्तावेज कौन कौन से आवश्यक है ये भी बता दें आपको। आपका आधार कार्ड होना बहुत ही आवश्यक है। आधार न होने पर मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी मान्य होते हैं और आपको इस जनधन योजना के जो प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जा सकता है। तो साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ उठाएं और खुद को सशक्त बनाएं।

हेलो हजारीबाग, अब वक्त हो गया है चलते चलते आपको आज के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस यानी कि हमारे अखबारों की सुर्खियों से रूबरू कराने का। चलिए बारी बारी आपको अब रूबरू करा दे अलग अलग अखबारों की सुर्खियों से।

दोस्तों बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 31 अगस्त 2026 तक 3 दिन तक यानी 29 से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक चलने वाले 3 दिवसीय प्रबंधीय खेल महोत्सव का शानदार आगाज हुआ है और ये हेडलाइन से आज के तमाम अखबारों की। हजारीबाग जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय, उसके स्थानीय कजन ग्राउंड बाबू कुंवर सिंह स्टेडियम में 29 अगस्त को प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने बहुत सारे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आगाज किया है 3 दिवसीय प्रमंडलीय खेल महोत्सव का, जिसमें भाग ले रहे हैं 1288 खिलाड़ी अलग अलग जिले से। ये खिलाड़ी है हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और बात के। 3 दिन तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, खो खो, तीरंदाजी और बैडमिंटन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। और कहा जाता है कि खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने वाला ये सबसे बड़ा आयोजन सिद्ध होगा आने वाले दिनों में हमारे हजारीबाग और हजारीबाग के खिलाड़ियों के लिए।

दोस्तों इधर हिंदुस्तान अखबार की एक हेडलाइन है कि नेपाल में आफत की बारिश, भारत ने बढ़ाई ग्लेशियरों की निगरानी। दोस्तों किस तरह से त्रासदी आई है नेपाल में, इस संदर्भ में आप सभी जानते हैं। नेपाल में जल प्रलय की मार के चार दिन भी प्रकृति के प्रकोप को खतरा जो है वो कमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले जहां तिब्बत नेपाल सीमा पर झील फट गई थी, यहीं शनिवार को भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर और भी बढ़ गया। लाखों लोग मारे गए हैं और कई घर ढह चुके हैं। कितनों ने अपनी जिंदगी की सब कुछ खो दिया है। तभी तो आज डिजास्टर मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन की पढ़ाई जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रमुखता से बच्चों को पढ़ा रहा है। दैनिक जागरण अखबार में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में हैकिंग मामले की जांच करेगी सीआईटी विषय को प्रमुखता दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2,819 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा लिए जाने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को मामले में आपराधिक मामला दर्ज कर सीआईटी की जाँच करने का निर्देश दिया है। दोस्तों इधर प्रभात खबर ने अपने हेडलाइंस में दिया है कि बरही में अफीम तस्करों से मुठभेड़, एक को पीठ में लगी गोली, दो हुए गिरफ्तार। साथियों जिले के बरही थाना क्षेत्र के दानुआ घाटी स्थित हथिया बाबा मंदिर के पास शनिवार की शाम अफीम तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। चौपारण ओपी की पुलिस की सूचना मिली थी कि मंदिर के पास दो युवक मोटरसाइकिल के साथ अफीम की तस्करी के सिलसिले में खड़े हैं। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए पुलिस करीब 4 बजे मौके पर पहुंची। इस दौरान एक अन्य तस्कर कार से वहां पहुंचा। पुलिस को देखते ही तस्करों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान अजय कुमार नामक युवक की गोली लग गई। अजय बिहार के गया जिले का है, लेकिन हमारे पुलिस की जो है सख्त कार्रवाई के और तुरंत कार्रवाई करने के कारण हमारे ये तस्कर पकड़े गए हैं। और अफीम की जो आज हमारे चारों तरफ बच्चों को खराब करने का चलन चल रहा है, उस पर अंकुश नकेल कसने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। दोस्तों इन दिनों बारिश के कारण कई सड़कें हुई बदहाल और स्वास्थ्य जो सुविधा है वो भी चरमराई है। ऐसे में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हमारे उपायुक्त हेमंत सती जी के द्वारा सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों और डॉक्टर्स को यह आदेश दिया गया है कि हर समय हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स उपलब्ध रहे, नर्स रहे, ताकि कोई भी हमारा शहरवासी अगर पहुंचता है तबियत खराब होने पर वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र पर, तो उनकी तत्काल चिकित्सा की जा सके, उन्हें स्वस्थ किया जा सके इस बरसात में भी। तो ये थी दोस्तों हमारे आसपास की प्रमुख घटनाएं जो अखबार की सुर्खियां बनी थी। अब चलते चलते एक प्यारा सा गीत आप सभी दोस्तों के लिए।

दोस्तों कहते हैं प्यार जो है बेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन सच कहिए तो प्यार जिंदगी है, क्योंकि प्यार ही वो डोर है जो एक दूसरे को जोड़ती है और ये खूबसूरत संसार बनाती है। इसलिए हमेशा प्यारे रिश्तों को, मधुर रिश्तों को बचा कर रखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, उलझ जाए कभी तो मुझसे कोई रिश्ता आप ही सुलझा लीजिएगा। रिश्ते का एक हिस्सा आपके हाथ भी तो है।

हेलो हजारीबाग दोस्तों, आज कह रहा है आपसे श्री कृष्ण। कहते हैं जो मौन में सहना सीख गया वो शोर में जीतना भी जान लेगा। धैर्य रखो अर्जुन, रण अभी बाकी है, समाप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखिए जिंदगी में और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते जाइए। जिंदगी आपको खुशियों की सौगात जरूर देगी। अगर आज दुख है तो सुख जरूर मिलेगा। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो फिर क्या बात है। ना दुख है, ना किसी तरह की कोई कष्ट है, बस यूं ही चलता रहे FM 102.1 MHz हमारा और आपके साथ का ये सिलसिला। फिलहाल हेलो हजारीबाग की आज के इस महफिल से दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, गुनगुनाते रहिए और गाते रहिए दिन भर ऐसे गीत।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस पल हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 10:54 और 16 सेकंड हुए हैं। थोड़ी देर में 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात हिंदी तत्पश्चात संस्कृत में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने

0: मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: चुप चुप बोलो क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है।
8: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार।
10: मन की आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
11: नमस्ते सर। नमस्ते
10: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
11: धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था फिर मैंने एमबीए किया फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
10: कृष्णा जी भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आप

0: मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास के एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया, इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है।

0: मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है।
1: साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर
0: रोज

लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी। स्वच्छता के इस अभियान

में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने
और

इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति साइट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्म में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन
मानुषे हृदय राज कोरबेन।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्यस्य नूतन प्रकरणे भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दिकं स्वागतं करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् इदमेकं एतादृशं मञ्चं यत्र वयं नूतनान् प्रयत्नान् समक्षम् आनयामः, देशवासिनां नवोन्मेषपूर्ण विचाराणां च चर्चां कुर्मः। एतेषु कियन्तोऽपि विचाराः एवं विधाः भवन्ति येषां नेपथ्ये जनैः जीवनस्य श्रमपूर्णशक्तिः विनियोजिता भवति। सखायः, किञ्चित् कालपूर्वं जनसञ्चारमाध्यमे कश्चित् लिखितवान् आसीत्, आषाढमासस्य एकादश्याः पावनेऽवसरे अहमिदं निवेदयितुं महतीं प्रसन्नतामनुभवामि यत् इतिहासं रुचिकरं कर्तुं स्वप्रयत्नस्य शुभारम्भं करोमि। सः अग्रे लिखितवान् यत् अयं विचारः अत्यन्तं सरलः अस्ति। भवान् अस्यां जालपुटिकायां गत्वा स्वेच्छया कञ्चन एकं वर्षं चिनोतु, तत्र भवान् सारल्येन ज्ञातुं पारयिष्यति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासनमासीत्। मया अपि एतत् अत्यन्तं रुचिकरं प्रतीतम्। अहं

मैंने प्यार किया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। असद भोपाली के बोल थे, राम लक्ष्मण का संगीत था। आइए अब सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवबर्मन का संगीत है।

कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया।

0: एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनो
1: ओ?
0: जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए हैं कि हम हर रोज एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो चलिए हम आपको आज की इबारत पढ़कर सुना देते हैं क्या लिखा है हमने। परदेसी सजनवा की याद में सारी रैन बीत गई, आंखों में नींद आई, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। दोस्त न रहा तो दिल के गिरह खोलने की कोई बात, कहने को कोई राह भी न बची। सजनवा बैरी हो गए हमार, फिर भी उससे मोहब्बत कम न हुई। ये दीवानापन था या मोहब्बत का सुरूर, समझ न सकी मैं कभी। दोस्त ने जाते जाते प्रेम की राह पर चलना तो सिखा दिया था, लेकिन न सिखाई होशियारी। यहाँ पर कौन सा गाना आपको याद आया है, जरा बताइएगा। कहा था तेरा मेरा प्यार अमर है, इसे वक्त कहाँ मिटा पाएगा। एहसान तेरा होगा जो लौट कर कभी मेरी चौखट पर आओगे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, और मैंने दिल की गिरह खोली तो एक अजीब दास्तान सामने आई। सूरज जरा पास था, फिर भी तेरी याद ने शाम बना दी। और ठंडी ठंडी सावन की फुहार में तेरा प्यार ही मेरा सबसे अनमोल धन बन गया। बरसात में हमसे मिले तभी तो बरखा बाहर आई। जमाना कहता रहा पते की बात, हमने सुनी दिल की बात। दोस्तों, आज भी हम यही सोच रहे हैं कि आज आप जो गाने सुझाएंगे वही गाने हम सुनवाएंगे। वैसे विविध भारती के फेसबुक पेज पर जब हम टहल रहे थे तो देखा कि बहुत सारे गाने वही हैं जो हमने सोचा था, लेकिन बाकी गाने भी आप जरा लिखिए तो हम वही गाने सुनवाएं। जैसे अभी अभी एक इबारत में लाइन है, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा गाना याद आया है जरा बताइए, ताकि हम वही गाने सुनवा सके, ताकि आपकी भी मुराद पूरी हो जाए और हमें भी आसानी हो और खुशी भी मिले कि हमने आपके दिल की बात टटोल ली और वही गाना सुनवाया जो विविध भारती से हम सुनवाना चाहते थे। जरा सोचिए कि यही गाना सोचा था आपने, और इसमें हमें बताइए कि कौन है कलाकार, पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना फिल्म।

सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। बहुत मुश्किल है होशियारी सीखना भाई, लेकिन बहुत सारे लोग पारंगत होते हैं इस गुण में। जो आज के जमाने में सीख ले होशियारी, वो समझ लीजिए कामयाब भी है। वैसे बहुत सारे श्रोता, क्या सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है कि आज मामला क्या है? हमने इबारत में एक लाइन लिखी भी थी कि आज तो कुछ खास बात है। क्या खास है, चलिए हम भी आपको बता ही देते हैं, याद ही दिला देते हैं। गीतकार शैलेंद्र की जयंती है आज, 103 बरस पूरे हुए। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं की याद को समर्पित है। आज की जो इबारत है, उस इबारत से आपको चुनने हैं शब्द और कुछ गाने जो शैलेंद्र के लिखे हुए गाने हैं। तो आप वो गाने चुनिए और साथ में ये भी बताइए कि शैलेंद्र के गीतों की कौन सी वानगी आपको प्रभावित करती है। दर्शन वाले गीत, आंचलिक गीत, मतलब जिसमें ग्रामीण परिवेश है, रोमांटिक गीत, या फिर स्त्री मन की पीड़ा जिसमें निहित है वो गीत। आप अपनी पसंद बताते रहिए और गाने लिखते रहिए, साथ में हमारी पहेलियां भी पूछते रहिए। आपके चुने हुए गाने हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और कुछ गाने हम जब अपनी ओर से सुनाएंगे तो देखिएगा कि वो गाने आपके दिल के करीब हैं या नहीं। एक श्रोता ने अभी अभी लिखा है, शैलेंद्र ने बेहद सरल शब्दों में जीवन के कड़वे सच को बयां किया है। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी पंक्ति इंसान की मासूमियत और उसकी लाचारी को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। संगीत और गायकी शंकर जयकिशन का है, मुकेश की दर्द भरी आवाज मन को छूती है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है और ये भी हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार, तो आप ये भी हमें बता सकते हैं। एक हमारी श्रोता है, नियमित श्रोता, जिन्होंने लिखा है कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, ये केवल गीत की पंक्तियां ही नहीं है, ये तो उनकी सरलता, अपनी बात को सहज रूप में लोगों के सामने रखने का अपूर्व कौशल है। उनके गीतों में एक सीख है, कर्तव्य बोध और नैतिक मापदंड की घुट्टी, सभी कुछ क्या बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कबीर सदियों पहले कह गए थे, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, जैसी पंक्तियां कबीर की ही वाणी की अनुगूंज है। मगर बावजूद इसके शैलेंद्र कबीर नहीं थे, बल्कि कबीर उनमें समाहित थे। क्या बात लिखी है भाई, शैलेंद्र बड़े जीवट वाले इंसान थे, सपने देखना और उन्हें सच करना उनको आता था। ये उनके रंग बिरंगे सपने ही थे जो सैकड़ों की तादाद में गीतों की शक्ल में हवाओं में आज भी गूंज रहे हैं और इस समय विविध भारती से गूंज रहे हैं आपके रेडियो सेट तक। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं, असली नकली फिल्म से आपको बूझना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में संगीतकार का नाम भी बूझना है। अब गाने हमें सुझाते चलिए ताकि हम वही

0: एक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया गया है। राज्य सरकार की अनुशंसा और हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत को पूरे राज्य के लिए विशेष अदालत नामित किया है। इस अदालत का अधिकार क्षेत्र पूरे झारखंड में होगा। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए यह व्यवस्था की गई है। झारखंड की भर्ती व्यवस्था में सुधार को लेकर शुरू की गई भर्ती सुधार यात्रा पाकुड़ पहुंची। इस दौरान छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
2: नौकरी बेचना यानी झारखंड के आत्मा को बेचना। झारखंड में पहचान से नहीं बल्कि मेहनत से नौकरी होगा। जब तक इस बात का गारंटी नहीं मिलेगा कि पैरवी से नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगा। 2400 जिला घूम रहे हैं, आगे पूरा झारखंड बंद करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे।
1: झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका पर कल सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। देवघर श्रावणी मेला 2026 के दौरान रेल से यात्रा करने वाले कांवरियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 7.54% की वृद्धि दर्ज की गई है। पूर्वी रेलवे के अनुसार जसीडीह, देवघर, बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ स्टेशनों से इस वर्ष 30,99,846 यात्रियों ने सफर किया। इससे रेलवे को 14 करोड़ 24 लाख रुपए की आय हुई, जबकि 2025 में 12 करोड़ 81 लाख रुपए की आय हुई थी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी सिविल सर्जनों को सतर्क रहने और संक्रमण से निपटने के लिए जिला अस्पतालों में कम से कम 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया है।
3: स्वाइन फ्लू को देखते हुए मैंने एडवाइजरी जारी कर दिया है। सभी सदर हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज के CS हुआ, वहाँ की प्रिंसिपल को मैंने निर्देश दिया है कि अलर्ट रहिए, कहीं भी अगर आप कोई लक्षण देखिए स्वाइन फ्लू का तो उनको एडमिट कराइए और प्रॉपर इलाज कराइए। सभी मेडिकल कॉलेज में, रिम्स में, सदर हॉस्पिटल में 10-10 बेड अतिरिक्त हमें रखा है। लोग बाहर से आ रहे हैं, रांची प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल टीम वहाँ पर तैनात रहेंगी।
1: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वर्ष 2026-27 के चुनाव के लिए कल से नामांकन शुरू होगा। वहीं 13 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। कार्यकारिणी समिति और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी 1 सितंबर शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 3 सितंबर दोपहर 3 बजे है। चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर के अनुसार प्रत्याशी के लिए चैंबर की एक वर्ष की सदस्यता जरूरी है। राजधानी रांची में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया जा रहा है। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक रांची में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रुपये प्रति किलो है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना व्यायाम का एक उत्कृष्ट रूप है, यह प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है और यातायात जाम की समस्या का एक प्रभावी समाधान है।
4: देश में 25,000 से अधिक स्थानों पर 88 संडे ऑन साइकिल एडिशन का प्रारंभ हुआ। देश में साइकिलिंग की क्रेज बढ़ रहा है। साइकिलिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है, पोल्यूशन का सोल्यूशन है, फिट रहने का मंत्र है, ट्रैफिक का भी समाधान है। साइकिलिंग करें और अपने स्वयं को फिट रखें।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर सिमडेगा में आयोजित 21वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर सिमडेगा जिला महिला पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज महिला टीमों के बीच 9 मैच खेले जा रहे हैं। अभी तक 2 मैच के परिणाम आ चुके हैं। पहले मैच में एसटीसी सिमडेगा ने एसटीसी लचरागढ़ को 3-0 से और दूसरे मैच में संजेवियर बरवाडी ने संतना सामतोली को 1-0 से पराजित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि 35 लाख महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना से जुड़कर हुई स्वावलंबी। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित, जल्द होगा मुकदमों का निपटारा। स्वाइन फ्लू को लेकर झारखंड में भी अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी जिला अस्पतालों में 10-10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का दिया निर्देश। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वर्ष 2026-27 के चुनाव के लिए कल से शुरू होगा नामांकन, 13 सितंबर को मतदान। और सिमडेगा में चल रही मेजर ध्यानचंद सीनियर सिमडेगा जिला महिला पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज एसटीसी

0: डेगा और सेंट जेवियर बरवाडी ने दर्ज की जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक श्रोता लिख रहे हैं कि पिंजरा में बंद भइल हाय राम गीत बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी कि शैलेंद्र एक मन भावनिक और भाविक चरित्र गीतकार जिनके सरल शब्दों में दुनियादारी, इंसानियत, सच्चाई की गहरी सोच दिखाई देती है। एक गाना है करमुआ बैरी हो गए हमार या मेरे साजन है उस पार जैसे गीत भावना की गहराई दिखाई देती है। और भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं और बजाने के लिए अनुरोध किया है। भाई हम तो आप सभी से कह रहे हैं कि आप गाने याद करते रहिए, अपनी यादों के गलियारों में जाइए, खंगालिए अपनी यादें, और गानों से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे श्रोता अभी भी लिखे जा रहे हैं, बलराज साहनी, लीला नायडू और अनुराधा, लीला नायडू, हीरो बलराज साहनी। और एक श्रोता लिख रहे हैं बरसात में हमसे मिले तुम सजन, ये वाला गाना भी सुनवाइएगा। और शैलेंद्र के गीतों से सजा जो प्रोग्राम चल रहा है ये तो बहुत ही सुरीला हो गया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम यहाँ प्रसारण आपके मुंबई से हो रहा है और मैं यहाँ नोएडा में सीधे दिल्ली से इस कार्यक्रम को सुन रहा हूँ, आपकी पूरी बात भी सुन पा रहा हूँ लेकिन इसमें बीच में विज्ञापन आ जाता है तो नहीं सुन पाते। इसके लिए एक सलाह है कि आप मोबाइल के ऐप पर जाकर ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। चलिए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म आम्रपाली से। आपको पूछना है फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम।

आम्रपाली फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है गाना. सुनील दत्त और वैजयंती माला होती हैं. यहाँ फिर एक बार स्त्री मन की पीड़ा समाहित है इस गाने में भी. इंतजार है और एक दर्द है. एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र उस फकीर का नाम है जिसने वेल्डिंग की चिंगारियों से अपनी कलम बनाई और आम आदमी के बहते आंसुओं को गीतों में पिरो दिया. भूख, गरीबी, रेलवे वर्कशॉप की धूल में तपकर निकला ये हीरा. जब राज कपूर के साथ मिला तो हिंदुस्तानी सिनेमा की रूह ही बदल गई. आवारा हूं से लेकर सजन रे झूठ मत बोलो तक उन्होंने कागज पर सिर्फ शब्द नहीं उकेरे बल्कि इंसानियत का सबसे सच्चा दर्द उड़ेल दिया. वे दिल से लिखते थे इसलिए उनकी लिखी हर एक पंक्ति में आम इंसान का दिल धड़कता है. सरल, बेहद खूबसूरत और हमेशा हमेशा के लिए. एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र फिल्म असली नकली में अपार प्रेम की जो स्त्री मन की पीड़ा उकेरते हैं वहीं पर तेरा मेरा प्यार अमर फिर मुझको क्यों लगता है डर ये बात लिखते हैं. वहीं पर फिल्म रात और दिन के एक गीत में शैलेंद्र जीवन की एक अजीब उलझन में फंसी एक स्त्री के भटकाव को गीत में पिरो दिया है. आवारा है मेरे दिल जाने कहाँ है तेरी मंजिल. हिंदी सिनेमा में स्त्री मन के कुछ सबसे नाजुक गीत शैलेंद्र की कलम से निकले हैं. महिला किरदारों की तड़प, उनकी तमन्नाओं, उनके ख्वाबों के नगमे ये बात शैलेंद्र को एक विशिष्ट गीतकार बना देती है. गाइड में विवाह से परे अपने प्रेम को स्वीकार करती एक बेबाक स्त्री की पुकार है मैं हूं गुबार या तूफान हूं फिल्म गाइड की बात. और बहुत सारे श्रोताओं ने गाइड फिल्म के गानों की बात लिखी है वो हम आगे कहीं सुनवाएंगे. लेकिन खास बात यह है कि इबारत में जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों से आपको खोजने हैं शैलेंद्र के लिखे गाने. अब जरा ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बूझिए और हीरोइन का नाम भी पूछिए.

मधुमति फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी की धुन थी। और हमने आपसे पूछा था हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। हीरोइन का नाम तो बताए, हीरो का नाम भी, वैजयंती माला और दिलीप कुमार। हमने एक सवाल आपसे पूछा था जब हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था कि एक और कौन सा गाना है जिसमें महिला की तड़प है उस स्त्री की, लीला नायडू की। सभी श्रोताओं ने लिखा है, कैसे दिन बीते कैसे बीती रहती है पिया जाने ना। सच में ये गाना गाने के बोल को ध्यान से अगर सुने और पर्दे पर अगर हीरोइन को देखें तो एक अजब सा दर्द है, जो अनकहा दर्द लीला नायडू आंखों से अभिनय करती हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी लिखा, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां। यहाँ पर एक और स्त्री मन की पीड़ा एक और गाने में है, क्या आपको याद आ रहा है? वो गाना आशा भोसले की आवाज में है और सलील चौधरी का संगीत है। फिल्म का नाम बता दें या आप खोज लेंगे वो गाना। आज की इबारत में वो लाइन भी है, सावन की फुहार। चलिए हम इतना आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम भी नहीं बता रहे हैं। आशा भोसले की आवाज में स्त्री मन की पीड़ा है और पर्दे पर भी वो दर्दीला सा दृश्य है, एक स्त्री है जो तड़प कर अपने पति से मनुहार कर रही है। याद कीजिए वो गाना और लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश आजाद होने से पहले बल्कि देश की आजादी के बाद भी अपनी सुंदर रचनाओं से आवाम के जहन को सदैव परिष्कृत किया। शैलेंद्र जी ने अपने गीतों के जरिए आम इंसान के जज्बात, उनके एहसासात को सच्चाई के फलक पर चमकते हुए सितारे की तरह सजाया। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी के लिखे गीतों में चाहे जितना भी दुख या संघर्ष हो लेकिन उसका अंत हमेशा उम्मीद और हौसले पर होता था। वे जिंदगी से हार मानने की सीख कभी नहीं देते थे। जब उन्होंने रोमांटिक गाने लिखे तो उनमें भी मर्यादा और समर्पण की भावना थी। अब बताइए आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? हमें लगता है कि तीसरी कसम फिल्म ऐसी फिल्म है जो हम सबके जहन में बसी हुई है और आप सबके जहन में। आप बताइए आपने ये फिल्म देखी, कहाँ देखी, कब देखी, कोई खास याद हो तो वो भी साझा कीजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म का जिक्र किया है लेकिन हाँ अलग अलग गाने सुझाए हैं श्रोताओं ने। बहरहाल देखिए हम जो गाना सुनवा रहे हैं, क्या ये गाना आप सबने सोचा था? और साथ में हमें हीरोइन और हीरो का नाम भी बताइए। एक पहेली ये हो गई, एक पहेली हमने आपसे पहले पूछी थी कि स्त्री मन की तड़प है एक गाने में, आशा भोसले की आवाज है, जिसमें फुहार शब्द आता है, सावन शब्द आता है। आज की इबारत से ही हम पूछ रहे हैं वो कौन सा गाना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल टाइप कीजिए। फिलहाल बताइए हीरो हीरोइन के नाम, फिल्म तीसरी कसम।

तीसरी कसम फिल्म का ये गाना था, मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और जैसे दिल चीर के रख देता है ये गाना, ऐसे लगता है कि भीतर कहीं धस के स्थित हो गया है, ठहर गया है ये गाने से बाहर हम निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसे जज्बात साझा कर रहे हैं हमारे श्रोता भी। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में सुनती थी इस गीत को, तब भले इस गीत में छुपे भाव को इतने समझ ना हो पर अच्छा लगता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं, सजनवा बैरी हो गए हमार। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज कोई गाने की फरमाइश नहीं, बस आप बजाते जाइए, आज जो भी बजेगा सब मेरी पसंद का होगा। ये बात तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, और सच कहें तो आज हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि आप जो भी गाने लिखते जाएंगे सब मेरी पसंद के होंगे, और हमें खोजने में ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है कि कौन सा वाला गाना हम बजाएं, कौन सा वाला छोड़ दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, सली चौधरी ने इस गाने में लोक संगीत और शास्त्रीय धुन का जो मिश्रण किया है रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लता जी की सुरीली गूंज और बीच बीच में गूंजते कोरस और वाद्यों का प्रयोग सुनने वाले को एक अलग ही सम्मोहक लोक में ले जाता है। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास का मील का पत्थर है जिसे आज भी लोग सुकून से सुनते हैं। फिर एक श्रोता लिख रहे, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठियां हो तो हर कोई बांचे। दरअसल ये ऐसी पंक्तियां हैं जो लगता है कि बस कभी दर्द भरे क्षण रहे हो तो ये गाना हम सबके लिए ही लिखा गया हो, और ऐसा दर्द भरा लम्हा कहीं न कहीं हम सबके जीवन में आता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कुछ गीत इनमें से हो सकते हैं, बरसात में हमसे मिले तुम, सनम बरखा बहार आई, अंखियों में प्यार लाई, और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गाने लिखे, हम कितना बताएं और कितना पढ़ें। आप खुद विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर सुन लीजिए, देख लीजिए। और हाँ, हमने आपसे सवाल पूछा था कि जो एक गाना है स्त्री मन की पीड़ा का गाना है, दिल चीर देने वाला

लगाना है, वो फिल्म है जागते रहो। सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है ठंडी ठंडी सावन की फुहार, पिया आज खिड़की खुली मत छोड़ो, सभी श्रोताओं ने, मतलब एक नहीं कई श्रोताओं ने। और तीसरी कसम फिल्म के गाने के लिए एक श्रोता ने लिखा है कि जी देखी है एक बार थिएटर में एक बार टीवी पर, राज कपूर और वहीदा रहमान होते हैं पर्दे पर, और ये हमने पहली भी आपसे पूछी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, पर्दे पर अभिनेत्री वैजयंती माला ने इस गीत को जीवंत किया है। महल के सन्नाटे, जलते हुए दियों की मध्यम रोशनी और उनके चेहरे के संयमित भाव, बिना चीखे चिल्लाए आंखों की खामोशी से बात कहना। दरअसल ये वो अभिनेत्रियां हैं जो आंखों से अभिनय करती थीं। वैसे वैजयंती माला तो एक बहुत सुंदर नृत्य के लिए भी जानी जाती हैं, तो जो वाचिक अभिनय होता था उनका अलग ही होता था, मिसाल कायम करती थी। बहरहाल अब बात चली है इस गाने की, मतलब जो हमने आपसे पूछा था ठंडी ठंडी सावन की फुहार, जागते रहो फिल्म का, तो यही गाना सुन लिया जाए। लेकिन एक कमेंट और तब तक हम पढ़ देते हैं। बिना शंकर जयकिशन के शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जा सकता है। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त हो सकेंगे। क्या बात है भाई, खुरच कर देखें। सच में जब वो गाने लिखते हैं तो लगता है कि दिल को सचमुच खुरच दिया है। चाहे वो जब बेटी के विदा होने की बात हो, चाहे स्त्री मन की पीड़ा हो, या फिर आम जिंदगी के जीवन का दर्द हो, या आम इंसान की बात हो। चलिए अब बात तो चल रही थी जागते रहो फिल्म के इस गाने की, सुनिए और बताइए किसकी है आवाज, संगीतकार का नाम भी बताइए। आपको इस गाने में क्या खास बात लगती है, फटाफट बता सकते हैं तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल ऐप पर हमें पहली जो होती प्रश्न देर से मिलता है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगली बार तुरंत जवाब न देकर दो गाने के बाद देंगे।

जागते रहो फिल्म का गाना था और आशा भोसले की आवाज, सलील चौधरी का संगीत। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आशा भोसले की रेशमी और जादुई आवाज ने इस गाने में जान फूंक दी है। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव, मासूमियत और दर्द झलकता है जो रात के सन्नाटे और बारिश के मौसम पर पूरी तरह फिट बैठता है। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र का अर्थ पर्वत का राजा होता है। ये शब्द संस्कृत के दो शब्द शैल और इंद्र से मिलकर बना है। इसे शक्ति, स्थिरता और विशालता का प्रतीक माना जाता है। शैलेंद्र के व्यक्तित्व में ये गुण पाए जाते हैं जिसे उनके द्वारा लिखे गए गीतों में हम महसूस कर सकते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं, महान गीतकार जिनके गीत समाज को जीना सिखाते हैं, वैल्यू देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। महान गीतकार कविराज शैलेंद्र जी के 103वें जयंती पर शत शत नमन। और बहुत सारे गानों के बोल इन्होंने लिखे हैं। अब बारी है इस गाने की जिसके लिए सभी श्रोताओं ने लिखा है, फिल्म श्री 420। बताइए कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जल्द से लिखिए।

अगला गाना कौन सा सुनवाया जाए जरा ये भी आप लिख सकते हैं तो लिखिए। अभी शैलेंद्र के लिखे बहुत सारे गाने हमारे प्लेलिस्ट में शामिल हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आप बताइए।

0: राज कपूर और नरगिस, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी श्री 420 और बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र के गीत सिर्फ शब्द नहीं थे, वे आम आदमी के दिल के धड़कन थे। उनकी कलम में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, शहर की तन्हाई का दर्द, इसलिए उनके गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं और सुनने और गहराई से समझ सकने वाले को अपनी ही कहानी सी लगते हैं। तो अब आगे बढ़ा जाए और अगला गाना सुना जाए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है। देखिए कि आपको सुनना था या नहीं, आपके पसंद का था, जरा सुनिए और बूझिए फिल्म का नाम।
1: दिल से गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
0: फिल्म का नाम आपको बूझना है।

बंदिनी फिल्म का ये गाना था और बहुत ही मार्मिक गाना था। नूतन होती है पर्दे पर और सभी श्रोताओं ने इसे लिखा है कि रुला देने वाला गाना है, खास तौर से लड़कियां और औरतें तो ये गाना सुनकर रोती है। एक हमारी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हर राखी पर ये गाना हमें रुला देता है और ये गाना सुनकर स्त्रियां क्या पुरुष भी रोते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। और हमने एक पहली पूछी थी फिल्म की कौन सी वो फिल्म है जिसमें शैलेंद्र बैंजो बजाते हुए पर्दे पर नजर आते हैं, बूट पॉलिश फिल्म चली कौन सी देश गुजरिया तू सज धज के, लेकिन ये बोल गाने के हमारे इबारत में नहीं, इसलिए ये गाना हम आपको सुनवा नहीं रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म का ये गाना। जरा हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और साथ में याद कीजिए क्या किसी दोस्त ने आपके साथ किसी तरह की दगाबाजी की या किसी दोस्त ने आपका साथ निभाया। चाहे तो आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, टिप्पणियां आपकी सुरक्षित रहती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर।

संगम फिल्म का गाना मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, वैजंती मारा राजेंद्र कुमार और राज कपूर होते हैं इसमें हीरो हीरोइन, और सभी श्रोताओं ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया, बहुत फास्ट दिया क्योंकि वक्त कम है और ये गाना हम आपको पूरा नहीं सुनवा सके हैं। और भी बहुत सारे गाने हैं जो छूट गए हैं जिसे आप सुनना चाहते थे, हम सुनवाना चाहते थे, लेकिन वक्त की पाबंदी। बस आज का सुरीला सफर बस इतना है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

दोस्तों नमस्कार। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन ये बात भी हम सभी जानते हैं कि हमेशा खुश रहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। लेकिन हम अपने मन को अधिक शांत और खुश रखने की आदत जरूर विकसित कर सकते हैं। खुश रहने के लिए हम हर दिन उन बातों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे जीवन में अच्छी हो रही हैं।

दोस्तों, जब हम खुद को खुश रखने के छोटे छोटे से तरीके अपनाते हैं तो ये हमारे मूड को भी बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। हम नियमित व्यायाम, योग, ध्यान, भरपूर निद्रा और संतुलित भोजन की आदत बनाकर भी खुश रह सकते हैं। दूसरों की मदद करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने विकास पर ध्यान दें। छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों का आनंद लेना सीखें। यही है खुश रहने के बहाने।

ईश्वर में आस्था और प्रार्थना से भी मन को शांति मिलती है और जीवन में खुशियां भी इससे मिल सकती हैं। यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो प्रतिदिन वो कुछ समय अपने पूजा, जप तप या ध्यान के लिए जरूर ही निकालते हैं। लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे प्यार करो, खुश रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। ये बात बड़ी छोटी सी है, पर अपने आप में ही खुश रहने का बहुत सुंदर आधार भी है। जब हम इस तरह की सोच के साथ जीते हैं और साथ ही अपनी भी देखभाल करते हैं तो मन अधिक संतुलित और प्रसन्न रहता है। याद रखिए, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि हमें कभी दुखी ना हो। इसका मतलब है कठिन समय में भी उम्मीद, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करते रहना।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला।

0: मंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
2: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
2: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
2: उनके आसपास

0: का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
0: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
0: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
0: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के 5वें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर 4था विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर 4था विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीही बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम की अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना 1 सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं जाने माने गीतकार शैलेंद्र को, आज उनकी जयंती है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: बूट पॉलिश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में। रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के इस पहलू पर उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।
1: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के गोंदा मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार सदैव राष्ट्र निर्माण, जनभागीदारी और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाखों राशन कार्ड धारकों को हर माह सरकारी अनाज वितरित करने वाले करीब 25,000 पीडीएस डीलर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 सितंबर को राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। इनमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भी शामिल हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आयोजित आदिवासी एकता महाजुटान में आदिवासी समाज के अधिकार, पहचान, सम्मान और जल जंगल जमीन के मुद्दे उठाए गए। कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर वक्ताओं ने चिंता जताई। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संदेश पढ़कर सुनाया। सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने कहा कि आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन में आदिवासी समाज के हित और प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश भर में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। एक समान समय बैंकिंग और डिजिटल भुगतान लेन देन में सटीक समय चिन्हित करने, रेलवे, हवाई अड्डों और अन्य परिवहन प्रणालियों के समन्वय में, साथ ही आपातकालीन और अन्य समय संवेदनशील सेवाओं के समन्वय में सहायक होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले बाल गोपाल और नमो दही हांडी प्रतियोगिता का अल्बर्ट एक्का चौक पर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने दही की मटकी भी टांगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को बाल गोपाल प्रतियोगिता और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा।
2: नमो दही हांडी प्रतियोगिता 4 और 5 2 दिन का उत्सव होता है और ये उत्सव में 4 तारीख प्रथम दिन बाल गोपाल प्रतियोगिता, राधा कृष्ण प्रतियोगिता, 4 तारीख को जो झांकी है उसका थीम है वंदे मातरम।
0: राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकले छात्र नेता देवेंद्र महतो ने आज साहिबगंज जिले में छात्रों से मुलाकात की और आंदोलन के आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने वहां उपस्थित छात्रों से कहा कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: इस वक्त हाजिरों फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ, तो चलिए शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म के इस गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें साहिल लुधियानवी के बोल हैं। संगीतकार रोशन।

ताजमहल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। डॉक्टर प्रकाश पाठक, कुमारी डेल्सी पाठक, प्रिंस पाठक ने किला वार्ड बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड इंदौर से, वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक और इनका पूरा परिवार। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी राम गाडेकर और इनके पूरे परिवार की ओर से, उमर खेड़ जिला यवतमाल से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन की धुन थी, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म थी पतिता। इसे सुनने के लिए पत्र लिखा था आप सभी ने गेवराई मराठवाड़ा से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से पत्र मिला। बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे, उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत और चेतन नाहटा की ओर से फरमाइश आई थी। और जिला वाशिम से एकनाथ काले, आशाताई काले, ज्ञानेश्वर, शिवांशु, रविंद्र पवार की ओर से फरमाइश हमें मिली। चलिए अब सुने अगला गीत, ये फिल्म आंखें, लता मंगेशकर की आवाज।

0: कभी।
1: आंखें फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में शब्दकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। पसंद करने वाले हमारे श्रोता तालुका उमरखेड़ ढाड़की से राम गाडेकर, सुनीता गाडेकर, अभिजीत कोमल और अभिषेक। इसी गाने को पसंद किया था अकोला से प्रकाश खेडकर, मीरा ताई खेडकर, आरती, संतोष, पूजा और इनका पूरा परिवार। फरमाइश आई थी इन सभी की भी बड़वाह मध्य प्रदेश से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और मुमताज मोहल्ला नौगछिया से, दूसराइल अंसारी, रहमान अंसारी, आलिया अंसारी, सीरत और इनका पूरा परिवार। आइए अब सुने अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गाना। संगीतकार थे राहुल देवर्मन, फिल्म थी पड़ोसन। पसंद करने वाले श्रोता, हमारी ये यवतमाल विदर्भ से चंदा किशन कुमरे, निकिता गणेश कुमरे और इनके परिजन सतीश अनेजा, विमला अनेजा, शेफाली शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस चंडीगढ़ से और खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मल वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना, शेख, मूसा, राजकुमार और इनका पूरा परिवार।

दादा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। कुलवंत जानी के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथिल और प्रगति नाचानी की। परेल लाइन से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू, अभय, मन्नत, पुष्पा, सुदेशना और निम्मो की फरमाइश थी।

आकाश दीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी और पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू और इनके अन्य साथी, ग्राम लुहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव की फरमाइश थी।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था, फरमाइश थी आप सभी की अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद एकमल, नफीसा परवान और जाहिदा की फरमाइश थी। इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया और इनके परिजन, जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, ईशिता साहनी, प्रियंका मोदी, सोनल वली और अफजल मलिक, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना और इनके मित्रगण, गजानन लिखार, मनोज लिखार, संजना लिखार ने फरमाइश भेजी थी महाराष्ट्र सामंगी से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो सुनते हैं नाटक आई लव यू दूसरा और अंतिम भाग।
2: यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
3: All right, as you wish.
4: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
3: क्या है?
4: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
3: ए भाई, आप क्या चाहते?

0: हैं।
1: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
2: ये आपने कैसे समझ लिया?
1: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
0: मगर आप हैं कौन?
1: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
0: भूखे हो, पैसा चाहिए, लो।
1: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ। लेकिन बात करने की जगह नहीं।
2: आप क्या चाहते हैं?
1: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
0: स्याही खत्म हो गई?
1: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
2: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
1: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
0: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
1: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
2: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
0: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
1: मैं आगे बढ़ूं?
2: ओह श्योर।
1: यू सी, अमर के पास सब कुछ है लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
0: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
1: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
2: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
1: देखने में नहीं लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
2: फिर?
1: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
2: पर क्यों?
1: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
2: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
1: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
0: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
1: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
2: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा?
1: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा यही तो मेरी पहेली है।
0: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
1: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
0: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
1: ऐसा नहीं किया जा सकता।
0: क्यों?
1: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
0: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
1: नाटक होता तो जरूर कर देता।
2: मतलब ये नाटक नहीं है?
1: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
2: आत्महत्या?
1: हाँ, आज ही।
0: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
1: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
2: यानी कि?
1: यानी कि मैं ही अमर हूं।
0: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहां जा रहे हैं आप?
2: अरे कहा गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
0: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
2: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
0: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
2: रियली?
0: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
2: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
0: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
2: अरे इसमें क्या बोलना,
0: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
2: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड।
0: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
2: प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
0: अरे भले ही ना पसंद हो लेकिन क्या मेरे खाते तुम नहीं बोलोगी?
2: अरे लेकिन शादी के पहले ऐसा बोलने में क्या रखा है?
0: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ,
2: बेकार की जिद मत करो।
0: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
2: ना।

0: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
0: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो
1: वीरेन लगता है तुम पागल हो गए हो।
0: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
0: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
1: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
0: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
1: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपने गुलाम समझते हो? I hate you।
0: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
1: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
0: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
1: जब देखो तब लव, मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
2: लीना, ये झूठी जिद है।
1: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
0: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
1: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
0: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
1: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
0: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
1: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
0: अरे लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
3: दोनों पागल हैं।
2: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। कहाँ जा रही हो भाई?
3: देखूं तो सही ये लोग क्या कर रहे हैं।
2: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
3: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
2: ये साड़ी कब खरीदी?
3: कैसी लगती है?
2: समझ में नहीं आता है कि तुम साड़ी से जच रही हो या साड़ी तुमसे जच रही है।
3: अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो?
2: रेखा, इन दोनों जवान लोगों को तुमने देखा? छोटी छोटी बात में नाना करते हैं। हम दोनों भले ही चाहे जितना लड़े झगड़े लेकिन एक दूसरे की बात तो रखते ही हैं। जबकि आज की ये पीढ़ी एक छोटी सी बात के लिए अपना सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें किसका दोष है? समाज का, समय का या विदेशी संस्कृति का? आज भारत में
3: बस, एक मिनट, ये टेबल लो।
2: टेबल किस लिए?
3: इस पर चढ़कर फिर भाषण दो, चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा।
2: गुड जोक। तुम जब इस तरह से अकलमंदी की बात बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
3: अरे मैं तो हमेशा अकलमंदी की ही बात बोलती हूँ, मगर तुम अकलमंदी से सुनते नहीं हो।
2: आओ ना, मेरा स्वभाव जरा अजीब है लेकिन तुम मुझे यकीन है कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहती हो।
3: अब छोड़ो भी ये सब, चाचा जी आती हूँ।
2: नहीं, एक बार कह दो कि तुम मुझे चाहती हो।
3: क्या?
2: मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, I love you।
3: हे भगवान, इनकी सर पे भूत कैसे सवार हो गया? छोड़ो, मैं इस तरह का उल्टा सीधा नहीं बोलने वाली।
2: पति से मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में उल्टा सीधा क्या है?
3: उल्टा सीधा यही है कि पति जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर कर रहा है।
2: मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? हैं? अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूँ।
3: इतने जोर से ना कहो।
2: ऑल राइट, हाथ जोड़कर कहता हूँ।
3: हाथ अपने चाचा जी के सामने जोड़ना। तुम तो उन्हें फोन करने वाले थे ना?
2: बात मत बदलो, तुम कहती हो कि नहीं?
3: छोड़ो, मुझे बहुत से काम है।
2: चुप रहो, मैं कहता हूँ। मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। मेरी खातिर बोलो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: कल तुम्हें मुझे कहोगे कुएं में कूद जा तो क्या मैं कूद जाऊंगी?
2: मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ।
3: तो कितने हो?
2: इसमें कुएं में पड़ने की बात कहाँ से आ गई?
3: बात नहीं लेकिन मैं तो हूँ ही कुएं में पड़ी हुई। तुम्हारे जैसे सिद्धी मतलब ही पति के साथ शादी करने का, गृहस्थी चलाने का मतलब यही है कि कुएं पड़े रहना हो।
2: जो मुंह में आए वो बकती जाती हो, एक ऐसा थप्पड़ देता हूँ मैं।
3: मारो, मार डालो मुझे। मुझे मालूम है तुम यही चाहते हो कि मैं

0: लेकिन जिंदगी में मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है।
1: मैं चाहती हूँ कई दिनों से तुम मुझे मारने की बात बहाना ढूंढ रहे हो। लो, लो, लो, मारो, मारो मुझे।
0: रेखा
1: हे भगवान, इससे अच्छा तो यही है कि तुम मुझे उठा लो।
0: मर गया डोर पे मर गया। अब तो जरूर चाचा जी होंगे।
2: शांत हो जाओ
0: प्लीज, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप। चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, है ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा मैं ही पोछ लेता। आइए चाचा जी। कैसी है चाची जी?
3: अच्छी हूँ, तुम दोनों कैसे हो?
4: अरे मनोहर, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी?
1: अरे मैं...
4: कौन रो रहा है? अरे रेखा बेटी, क्या हुआ?
0: कुछ नहीं चाचा जी, वो जरा दिल भराया इसका बस।
3: हमें देखकर?
0: हाँ,
3: हमें देखकर दिल क्यों भराया?
4: मनोहर सच बताओ, क्या बात है?
0: अब कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे
3: बिना वजह किसी को रोना नहीं आता, समझे?
4: सीमाएं तुम्हारी चाची के।
3: क्या बिना वजह रोती हूँ मैं?
4: रोने के बाद तुम कुछ न कुछ वजह ढूंढ लेती हो, इसलिए बिना वजह रोने जैसा नहीं लगता। मनोहर बताओ बात क्या है?
0: अबे कुछ नहीं। ओ भाई रेखा, पानी वानी भी लाओगी? नहीं, जाओ।
1: अच्छा हो गया आप लोग आ गए, वरना ये तो मुझे मार ही डालते।
3: मनोहर बहू को क्या शिकायत है?
0: कुछ नहीं, वो जरा जिद्दी है। बस मैंने उसे चार शब्द कहने के लिए कहा तो उसने बस ये जंग छेड़ दी।
4: ऐसा तुमने क्या कहने के लिए कहा?
0: मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: गधा कहीं का, इस उम्र में शर्म नहीं आती?
4: इससे पहले तुमने उसे डांटा था?
0: नहीं, गलत मत समझिए। थोड़ी देर पहले मैंने रेखा से कहा था कि एक बार कहो आई लव यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ।
4: तुम पागल वागल तो नहीं हुए ये कहने की कोई वजह?
1: लीजिए पानी।
0: इसकी बहन की बेटी लीना।
4: कौन? प्राण जीवन की बेटी?
0: लीना के नाम के आगे प्राण जीवन नाम ही लगता है, यानी कि हाँ वही होगा।
4: क्या कहा तुमने?
0: मैंने आपके सवाल का जवाब दिया चाचा जी।
3: ये लीना वाली बात क्या है?
0: लीना और उसके होने वाले पति में इसी बात पर झगड़ा हुआ है। वो लोग साथ वाले कमरे में बैठे हैं।
4: अब भी लड़ रहे हैं क्या?
0: कमरा खुलने से मालूम होगा। मैं खोल कर देखा?
3: नहीं, रहने दो, इतना बड़ा हो गया अभी तक मालूम नहीं। जवान लड़के लड़की बैठे हों तो उनको बैठे रहना देना चाहिए।
4: संक्षेप में तुम दोनों इन दोनों से मैं तुम्हें चाहती हूँ कहने की मांग कर रहे हो?
0: हाँ, हमें संबोधित करके कहे ये जरूरी नहीं, बस सिर्फ कहे तो काफी है।
3: अरे पागलो, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने?
0: हाँ? कमाल है चाची जी, ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक। कमाल है,
4: हंसी मजाक करते करते दुखी हो गए ना तुम्हारे इस नए जमाने से। तौबा भाई, चलो रेखा बेटी
1: जी,
4: सब कुछ भूल जाओ और फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय बनाकर लाओ।
0: हाँ, मेरे लिए भी ना भूलना है।
3: कितनी सुशील सयानी बहू है मेरी, इसे इस तरह क्यों परेशान करते हो?
0: दो दिन साथ रहकर देखो तो मालूम पड़ेगा।
4: ये बात तो सच कही।
3: क्यों, तुम क्यों दखल देते हो बीच में?
4: अरे मनोहर, खूब याद आया भाई, हर बार की तरह इस बार भी थोड़े गुलाब जामुन और रसमलाई तो ले आना। ये लो पैसे लो।
0: नहीं चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं?
3: पैसे नहीं लेते हो तो हमें नहीं चाहिए।
0: लेकिन
3: अभी कुछ मत कहो।
0: आप भी चाची। अरे चाची की चप्पल तू ही आ जा मेरे।
3: ये मनोहर को आज क्या हो गया? हाँ। तुमने देखा दरवाजे के पास रहकर कैसी कैसी हरकतें कर रहा था?
4: अरे भाई छुट्टी के मूड में होगा।
3: पागल है, मैं कहती हूँ कि आखिर ऐसा बुलवाने की क्या जरूरत थी?
4: ना समझी है और क्या। नहीं तो मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में दोनों औरतों का क्या जाता था?
3: लेकिन इससे ये बुलवा कर दोनों आदमी को क्या मिलने वाला था?
4: अरे जवान है,

0: एक कभी कभी मजाक भी सूझता है, छोटी सी बातों का बतंगड़ बन जाता है। अगर बात बढ़ानी ना हो तो इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम क्या कहती हो?
1: तुम मेरी राय कब से मांगने लगे?
0: नहीं नहीं, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कहो मैं तुम्हें चाहती हूं, तो तुम एक बार नहीं 100 बार बोलोगी।
1: लेकिन तुम ऐसा कहोगे ही नहीं।
0: लेकिन मान लो कि मैं तुमसे कहूं तो मुझे यकीन है कि तुम जरूर कहोगी।
1: क्यों, तुम इतने मूर्ख हो क्या?
0: और ना कहो, इतनी बेवकूफी भी तुम नहीं कर सकती। आओ आओ आओ आओ।
2: नमस्ते चाचा जी।
0: आओ बेटा, आओ लीना, बैठो बैठो।
2: हाँ मैं चाय लेकर आती हूँ।
0: रुको, मनोहर को मैंने बाहर भेजा है, उसे आने दो, तुम भी बैठो। ये तुम्हारी भांजी लीना है ना?
2: हाँ जी, और ये वीरेंद्र, लीना का होने वाला
3: कोई नहीं।
4: अरे
0: तुम लोग सचमुच नादान हो, मनोहर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हारी चाची से कहूं कि रेल की पटरी पर जाकर सो जाओ तो एक मिनट में सो जाएगी।
2: अगर गाड़ी आने वाली हो तो भी?
0: हाँ तो भी, इसमें कोई शक नहीं।
2: आई डोंट बिलीव।
0: रमा चलो इन सबको सबक सिखा दो, एक बार सबके सामने मुझसे कह दो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: हाय हाय, कुछ लाज शर्म है, सबके सामने ये कैसे कहूँ?
0: क्योंकि क्योंकि ये मेरा हुक्म है।
1: अरे तुम्हें तो पागलों की तरह हुक्म देने की आदत पड़ गई है, लेकिन तुम्हारा हुक्म मानता कौन है?
0: तुम सबके सामने मेरे हुक्म का अनादर करती हो।
1: सबके सामने तुम खुद ही अपनी आबरू की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो मैं क्या करूं?
0: तुम पागल हो, हमें तो बस सबको दिखाना है।
1: मैं कोई लोगों के सामने दिखाने के लिए भैंस नहीं हूँ।
0: तुम नहीं, तुम्हारी अकल भैंस जैसी है, इसमें तुम्हें दिखाने की क्या बात है?
1: चिल्लाओ मत, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए हैं।
0: वो तो तुमसे शादी होते ही पड़ गए थे।
1: 100 की सीधी बात एक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, समझे?
0: अरे तू तो क्या तेरा बाप भी बोलेगा।
1: खबरदार जो मेरे बाप को बीच में लाए।
0: बीच में नहीं, पीछे पीछे घुमा करता था अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए, कहीं चला नहीं तो मेरे गले में बांध दिया।
1: तुम क्या अंधे थे?
0: अंधा नहीं, उदार था। उदार?
1: उदार नहीं, उधार थे, उधार। मेरे आने के बाद ही घर में 2 वक्त का खाना पकने लगा, भूल गए क्या?
4: चाची जी प्लीज।
1: नहीं नहीं, पुरुषों से हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमसे जो चाहे कहलवा लो।
0: पागल है, कुछ समझती ही नहीं।
1: जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती कर दूंगी।
2: चाची जी आप जरा शांत हो जाइए,
1: अंदर चलो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखी जाती।
0: सुनो सुनो सुनो रामा, देखो देखो, एक बात याद रखना रामा, एक बात याद रखना।
4: लीना
2: क्या है?
4: तुम्हारे कारण ही घर में आग लगी है ये?
2: मैंने तो केवल लकड़ी जलाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई।
5: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
2: अंदर है।
5: क्यों?
4: हम जैसा ही हाल है।
5: हैं? क्या बात करते हो, क्या हम जैसे ही ठंड गई है?
4: हाँ।
5: वाह मजा आ गया।
2: आपको इसमें क्या मजा आया?
5: अरे भाई कौन कितने पानी में है ये पता चल गया ना?
2: मौसा जी सचमुच जोकर है।
4: तुम्हारे मौसा जी हैं?
2: मुझे मौसा जी कतई पसंद नहीं।
4: पसंद? ओ ओ गॉड, मुझे आज एक फोन करना था।

0: हेलो शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग।
1: अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ?
0: हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था,
1: देखिए।
0: हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना
1: कल,
0: यानी कि कल डिलीवरी मिलेगी। लीना
2: हा?
0: अपनी कार की डिलीवरी मिलने वाली है कल।
2: रियली? ऑफ वाइट कलर की है ना?
0: एक मिनट, हेलो, ऑफ व्हाइट कलर ही मिलेगा ना?
1: हाँ।

0: नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझा।
1: चाचा जी, चाचा जी
0: मर गया चाचा।
1: अरे ये क्या कह रहे हैं?
0: सारी दुनिया मेरी इज्जत मेरा सम्मान करती है और ये दो कौड़ी की औरत इन बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाहती है।
1: तुम कुछ भी कह लो, मैं टस से मस होने वाली नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया इनको? क्या हो गया? क्या हो गया? देखो तो मनोहर, देखो तो क्या हो गया?
0: मनोहर
1: जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो, जल्दी करो, जल्दी करो,
0: डॉक्टर रहने दो।
1: क्या हो गया?
0: एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार मेरे लिए कह दो।
1: क्या कह रहे?
0: रमा, रमा सिर्फ एक बार मेरे लिए कह दो।
1: देखो मेरी तरफ, देखो, आंखें खोलो। मुझसे भूल हो गई।
0: एक बार कह दो,
1: मुझसे भूल हो गई। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ।
2: खाओ मेरी कसम
1: तुम्हारी। अच्छा, इसका मतलब तुमने
2: नाटक किया था।
1: चाचा जी आप भी।
2: बच्चों, इस नाटक से तुम ये सबक ले लो कि औरतों का मन जीतने के लिए नाटक करना आना चाहिए।
3: ये बूंदी के लड्डू कहाँ रखूं?
4: अरे भाई, ये मिठाई वाला है, जरा शौकीन मिजाज वाला है, वे खोल दो ये पैकेट और सबको जलेबी लड्डू बांट कर पार्टी बना लो। हाँ, बांटो। हाँ।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का दूसरा और अंतिम भाग। इस नाटक के मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है।
1: चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो, मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, है ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा मैं ही पोछ लेता। आइए आइए चाचा जी।
0: मनोहर अजय कश्मीरी।
2: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
0: रेखा कामिनी कौशल।
3: मैंने तो केवल लकड़ी जलाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई।
1: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
3: अंदर है।
1: क्यों?
0: लीना भारती कानड़े।
4: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था। देखिए, हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना?
0: वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
0: जगमोहन राजदीप।
6: जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे
0: रमा लक्ष्मी शर्मा।
5: आना चाहिए।
0: और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानडे। यह नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
7: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
8: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
7: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
8: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
7: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
8: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
7: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
8: उजाले उनकी

0: यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कुछ दिल ने कहा,
0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों
2: जी मेलोडीज। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के इस पहलू पर उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन वायरल हो रहे उस ऋण स्वीकृति पत्र का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आयोजित आदिवासी एकता महाजुटान में आदिवासी समाज के अधिकार, पहचान, सम्मान और जल जंगल जमीन के मुद्दे उठाए गए। कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और परिसीमन को लेकर सरकार की नीतियों पर वक्ताओं ने चिंता जताई। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के का संदेश पढ़कर सुनाया। सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने कहा कि आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नेपाल में आई भीषण त्रासदी में लापता रांची निवासी राम प्रसाद घोष के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों से बात कर लापता की खोजबीन और सकुशल बरामदगी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। राज्य में 2 सितंबर तक कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल रांची गुमला खूंटी लोहरदगा और लातेहार में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा राज्य के कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: श्रोताओं, हर शो ऑडियंस के साथ कैसे बदलता है उसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट एक्टर के हैसियत से काम किया 200-250, जिसमें लक्ष्मीकांत बेरडे से लेके वर्षा उसगांवकर से लेके सारे एक्टर थे।
5: ये एनएसजी से लौटने के बाद
4: मैंने 3 साल के बाद नाटक किया। अच्छा। मुंबई में आने के बाद तो पहला जो झुलवा मैंने किया वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड था। वो बर्निंग इश्यू है
5: जी, बिल्कुल।
4: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है, क्या कहते हैं, जोगते जोगतीनी कम्युनिटी है, वहां पर जो लोग मन्नत मांगते हैं इल्लम्मा गॉडेस से कि मेरा ये होने दो, पहली जो बेटी होगी मैं तुझे दान कर दूंगी। और उससे जो कम्युनिटी तैयार हो गई है वो है देवदासी। देवदासी का ही एक अलग रूप है, टेम्पल की देवदासी अलग है, ये ग्राम की सर्विस सेंटर है वो। मतलब देवदासी जो जोगतीन है उसके पास कोई भी पुरुष अगर उसके दरवाजे पे दस्तक दे तो वो किसी भी पुरुष की सेवा करना उसका काम है। वो मना नहीं कर सकती। उसकी उम्र क्या है, उसका गुलिया क्या है, उसका पलाना, वो कुछ नहीं। सी हैज टू बी देयर फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। तो ये इशू को लेके मैंने नाटक करने की ठान ली। ये उपन्यास था उत्तम बंडू तुपे, एक सिपाही के हैसियत से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में पुणे के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ये लिखा था उपन्यास, और इस उपन्यास पे मैंने काम करने की बात ठान ली। और पहला ही नाटक जो संगीत नाटक अकादमी के किसी एक स्कीम के लिए, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स के लिए मैंने किया, और उसका ओपनिंग शो भारत भवन भोपाल में हुआ।
5: वाह वाह।
4: 10 अक्टूबर 1987।
5: गजब।
4: इसलिए भारत भवन का मेरा रिश्ता अलग है।
5: जी जी।
4: तो वहां पर ये पहला शो हो गया, और वहां पर कारण जी से लेके अशोक वाजपेयी से लेके ऑल हुज हु ऑफ इंडियन थिएटर वो नाटक देखने के लिए थे, और वो पहला ही शो हमारी पहली रन थ्रू थी।
5: ओहो।
4: पर वो जो गजब का शो हुआ है, उसके बाद हमने 400 450 जितने भी शो किए होंगे उससे बेहतर शो नहीं कर पाए।
5: सयाजी शिंदे थे।
4: सयाजी शिंदे, सुकन्या कुलकर्णी, आदिति देशपांडे, गौरी केंद्रे, आशा शेल, अरे सारे लोग थे।
5: वाह,
4: भारत तांडेल, तो ये सारा 42 एक्टर स्टेज पे थे, फिर बैक स्टेज में 7-8-10 और थे। तो ये मुझे लगा कि वो पहली बार ऐसा सिद्ध हुआ कि नहीं यार, ये कहीं से कुछ नहीं लिया है उनका कोई, ना आपका म्यूजिक है ना डांस है, जो जैसा उसका अंग चलन होगा वैसा वो नाचता है। तो फिर सयाजी को जैसा अंग चलन था सयाजी नाचता था, सुकन्या का जैसा था वो वैसा नाचती, तो कुल मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक बर्निंग ज्वलंत समस्या है आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने। हर साल कितना भी कानून किया जाए तभी 2-2.5 हजार बेटियां भगवान को चढ़ाई जाती, समर्पित की जाती है, और फिर उनका भविष्य किसी को नहीं मालूम। तो वो नाटक का पहले शो से लेकर निरंतर हर शो में पूरा हंगामा जहां हुआ हुआ। नामदेव ढसाड़ जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, वो पहली बार जब देखने आए, उन्होंने देखा नारायण सुर्वे, देखा पुल देशपांडे, जितने भी महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने वो नाटक नहीं देखा, या इवन देश में भी हर जगह वो चला गया। तो नामदेव ढसाड़ ने मुझे फोन किया कि मुझे तेरा नाटक देखना है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, आइए।

0: पु ल देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजली बैक स्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। मैं गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पु ल देशपांडे, क्या कहते हैं हमारे सबके आदर्श
1: जी,
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं ना उनकी पत्नी मिसेस देशपांडे, वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: सोने ही नहीं दे रहा है तुम्हारा नाटक। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज नहीं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है, 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि तुमने एक भारतीय रंगमंच पे एक नई रंग भाषा का नया आइकॉनिक एग्जाम्पल पेश किया है। तो ये सारा का सारा कहने का तात्पर्य इतना था कि जो मेरा चिंतन था या मेरी सोच थी कि मुझे कोई भी फॉर्म से कुछ भी उधार नहीं लेना है,
1: अपनी धारा बनानी,
0: मेरी धारा बनानी है, और वो देखने के बाद, समझने के बाद, उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को ये लगना चाहिए ये भारतीय है
1: जी,
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये चाहे वो गजब तेरी आधा या गजब तीचे आधा देखने के बाद की विमेन अगेंस्ट वॉर वो नाटक था
1: जी जी।
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ किया हुआ

0: विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑडियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम पुरुष, तबला पुरुष, ढोलकी पुरुष, ढोल पुरुष, जितना भी है।
1: फिर
0: घुंघरू एक है, पर घुंघरू औरत ने खुद नहीं पहने हैं, वो भी पुरुष ने अपने जाने के लिए उसके पैर में बांधे हुए है। तो मैंने कहा ये भी तो नहीं हो रहा है
1: जी,
0: फिर क्या होगा। तो मेरी पत्नी गौरी केंद्रे घर में किचन में ये कोई उनका छोटा सा एक भगवान के 2-3 ये रखे उन्होंने अपना आरती कर रही थी, तो छोटी जो घंटी है हाथ में लेके टिंग टिंग टिंग कुछ सुनाई दिया और वो क्लिक हो गया, यार जिसकी मैं खोज कर रहा था शायद यही है।
1: वाह।
0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं।
1: हाँ।
0: तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया, और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटियां देके हमने दिन भर बजवाया। और हमें लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है,
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है, और वो कहानी बता रही है वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह।
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है, और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज है। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से हुआ, झुलवा में अलग था, जाने मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था, जो NSD रेपेटी ने उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है। मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा मुझे एक बात बताइए, झुलवा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी जो आपको रोक रही थी?
0: ज्यादा था। मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूं, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने, मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया, पर इसको जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस ऐसे थे, सब इसने दांव पे लगा दिए, अब आगे क्या करेगा ये, आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना, बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो। तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर 1 साल के बाद एक झुंझवारे से नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुल देशपांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया, और वो देखने के बाद लोगों को लगा ये और कुछ है यार। फिर 2-4-5-10 नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले नहीं यार, उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
1: वाह वाह वाह वाह, सुंदर बात है। इतनी जादुई बातें, यहां एक गाना सुनते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: वामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही हैं। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
1: जी,
0: तो भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
1: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
0: जी,
1: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था
0: जी,
1: वो देहाती लोग थे वहां के
0: जी। जी बिल्कुल,
1: खासकर तैयम, मुड़िए टू और पड़ेनी, मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठेठ जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम स्टैंडर्ड, जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे। उनकी अपनी एक बोली डायलेक्ट होती थी मलयालम की, तो इनसे कैसे निपटाया जाए? पहले 4 महीना तो हर दिन तकलीफ होती थी। मैं और मेरा एक मित्र था, मेरा क्लासमेट हरेन भट्टाचार्य, क्योंकि वो इतनी दिन भर मलयालम या साउथ इंडियन भाषा सुनने की आदत नहीं थी
0: जी।
1: मुझे भाषा तो भाषा होती है, उसका अनादर करने की कोई बात नहीं है, पर आपके कानों को वो भाषा सुनने की आदत ना हो और दिन भर केवल मलयालम मलयालम मलयालम, और वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, तो जी, ऐसा जी। लगता हर दिन शाम को सर में दर्द होने लगता था, वो फोनेटिकल एक्सपीरियंस कानों को ना होने की वजह से। तो वाकई हम उसकी तकलीफ झेल रहे थे कि क्या किया जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी चाय वाले के पास, कभी हमारे जो साथ में काम करती थी जो हमारी दुभाषी जो थी, वो महिला से हम एक एक एक एक एक एक शब्द, या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी 2-3 वहां के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के, तुम्हारा नाम क्या है, फलाना क्या है, जो डे टू डे की लगने वाली भी 10-20 लाइनें रट लिए, याद कर लिए। और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की, और खासकर जिनका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया, वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी, वो हमारे साथ रहती थी, वो 2 रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सबकी अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था। तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो हर बार 4-4, 5-5, 10-10 सेंटेंस, तो हमने ये तय किया था कि एवरीडे 10 वर्ड्स नया सीखना है फोनेटिकली, मतलब उच्चारण के तौर पर। और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से। पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है, या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी। तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हम कहीं कैननोर में, गांव में, कैननोर जिला है उसके, गांव में तैयम देखने गए थे, और शाम को हम खाना वाना खा के, जो हमारी दुभाषी लड़की थी उन्हीं के घर में,

0: उन्होंने हमको बहुत अच्छा मलयालम व्यंजनों का खाना खिलाया और हम चल पड़े बस पकड़ने के लिए। हमको जाना था कैननोर, हम कैननोर में होटल में रुके थे। तो चलते चलते आप आके वो छोड़ के चले गए सब उनके घर वाले, और एक होटल वहां एक छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था, तो उसको हमने मलयालम में टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैननोर में आने वाली बस है जाने वाली यहां से, वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो उसने हाँ ऐसे कह दिया और वो अपना काम में लग गया। एक बस आ गई, दूसरी चली गई, कोई इधर से आई कोई उधर से आई, और एक बस आई और वो चली गई। तो ये सब पतीले बर्तन समेटने लगा, तो हमने कहा कि तुम क्यों समेट रहे हो, हमारी बस कहाँ है, कैननोर जाने वाली बस कहाँ है। तो उसने कहा वो पोई
1: मतलब गई
0: वो चली गई अभी, अब वो लगभग एक फरलांग दूर चली गई थी, तो हम भाग के भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। तो बड़े हम निराश हो गए, डिप्रेस होने की स्थिति आ गई कि ये क्या है यार। मैं इसको समझाया तो शायद वो समझ नहीं पाया होगा ढंग से। तो अब क्या किया जाए, कहाँ रुके, रात को 9:30 बज गया और गांव में देहात में 9:30 बजे तो मध्य रात से ज्यादा हो जाता है। अब जाएं तो कहाँ गए। तो मैं और हॉरेन, हमारे पास कैमरे होते थे, दो दो टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था। केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे। अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहाँ, यहाँ तो रुक नहीं पाएंगे रात भर, तो चलो जहां जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते। वो 3.5 किलोमीटर दूर था वहां से, और वो भी भात की खेती से, पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते ज्योग्राफी ढूंढते वहां तक जैसे तैसे पहुंच गए। तब 11:30 बज रहे थे
1: और चावल के खेत तो गीले,
0: होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे।
1: वाह।
0: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी, क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते हैं ना फ्लावर्स।
1: जी जी।
0: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा यार ये लोग क्या समझेंगे,
1: क्योंकि उनकी आधी रात हो,
0: वो तो हम निकलते ही सो गए होंगे।
1: जी।
0: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका। तो गीता को बोला सॉरी गीता यार ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव, तो ये लास्ट बस वाली हमने उसको बोला और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई।
1: हाँ।
0: तो बोली अब क्या करोगे, तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये वरांडा है इसमें हम रुकेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाऊं कॉफी बनाऊं। मैंने कहा कुछ मत बनाऊं। तो मैंने कहा एक ही अगर आपको मदद करनी है हमको तो ये काम करो, एक घंटा आपकी जिंदगी का दे दो और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई और मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया तो मैंने 1.25 घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था एनएसडी वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा। मुझे गुस्सा आया वो बस चली गई क्यों, कि हमें लिपि नहीं आती। क्योंकि केरल में जितने भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर में लिखता रहा, ओ क्या है, ब क्या है, क क्या है, ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिखता रहा और पूरी किताब खत्म हो गई, वो नोटबुक खत्म हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: तब 4:30 बजने वाले थे, तो अब आइडिया आया कि सब तो सारा सब बालू ही है यहाँ, सैंड है। तो एक डंडा ले लिया और उसमें से लिखना शुरू कर दिया
1: रेत के ऊपर।
0: पहला नाम लिखा वामन, मुझे याद है अभी भी।
1: वाह वाह।
0: और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना। इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची और हम ऐसा कैसा एक दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा, फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना। ट्रेन में जाए, बस में जाए, जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाते।

0: लगता था। और फिर जब कैनोनर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
1: अच्छा,
0: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया, ताकि वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
1: वाह वाह।
0: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ रही।
1: सुंदर बात।
0: और ये ऐसा, अब मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
1: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
0: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गांव से मैं निकला हूं और जो आपके सामने बैठा हूं, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती।
1: जी बिल्कुल।
0: यहां तक आना और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है, अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है।
1: जी,
0: उसकी तलाश में है तो ढूंढ रहे हैं।
1: जी,
0: यही बात है। वो
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: गया।
1: आपके नाटकों की बातें चल रही थी, वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ और मैं उस चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ जीवन के, जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहाँ आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहां आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात।

0: होती है।
1: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ। तो मैं यहाँ जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, मेरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
0: जी।
1: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो वो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
0: जी।
1: तो वो एग्जीबिशन रतन थियम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
0: जी।
1: तो उन्होंने डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लो अप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
0: वाह वाह,
1: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलका जी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलका जी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है तो। खैर कुछ दिनों बाद अलका जी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलका जी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलका जी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलका जी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कहीं जगह जहां उनकी सिटीजनशिप है वहां गए थे। तो गया मैं जब उन्होंने बुलाया, तो उस समय वो सारे एल्बम तो वो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, एक एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलका जी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से, उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलका जी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने, और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स है, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
0: जी।
1: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं, जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहाँ आ गए, तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी, यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमें क्या काम मिल रहा है, तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे, जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा। और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहां के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, तो वहां कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई वामन केंद्र है और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
0: दुबले पतले वामन
1: पतले वामन के बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
0: जी,
1: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
0: दाढ़ी वाड़ी थी
1: थोड़ी बहुत
0: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
0: जी।
1: तो कुछ लोगों ने यह तय किया, जिसमें से पहली महिला थी

0: या विद्यार्थिनी थी वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
1: जी,
0: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है।
1: ओके,
0: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, हो गए, सब चले गए और क्लास शुरू हो गई। और एक डेढ़ घंटे के बाद वो क्लास रुक गई। तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहां केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा चिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था। तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का, और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था।
1: बिल्कुल।
0: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो। तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं।
1: ये बात
0: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो, और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी, कुमारी थी, वो कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्रे हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की। मतलब जीनियस लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं।
0: क्या हो गया कि हम वो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था और वहां से मुझे फिर शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी। तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूं, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, डेढ़ दो घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा या जैसे भी, हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी तो मैं तो चला गया, कहां, रविंद्र नाट्य मंदिर, और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो एक दो घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया, उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए।
1: ओके,
0: तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्रे थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब। तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या किया। मैंने कहा क्या किया, नहीं आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे, और मैंने कहा मैं भूल गया।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूँ।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है। मतलब क्या है, ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान। हाँ, अपना नहीं कि दूसरों का?
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से। कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया। तो मेरा जो साइन है वो जो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो जो सबसे अच्छा है,
0: जो सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप?
0: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
1: हूँ भगवान।
0: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती वरती उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है। उनकी मार्केटिंग के लिए है ये, रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
1: जी।
0: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहाँ बर्थडे होता है उसको कहाँ मालूम है। था, मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, रिक्के रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया, वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वर आला होता।
1: लो,
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों को पकड़ने का, जखड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना, सप्तर्षि, चलो उसको गांव की भाषा में तिकाटना बोलते हैं, वो तिकाटना कासरा भर वर आलेले होते। अब वो उसको भी काम आता, ज्योग्राफी कब कितना कहाँ ऊपर आया, उसको जो लगेगा वो इंपल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
1: जी।
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी। इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इंपल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी?
0: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
1: गजब।
0: तो मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है
1: जी जी।
0: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जिनको एस्ट्रोलॉजी में, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की, घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषा काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
1: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी?
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है, उनको मैं बोलता हूँ एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो।
1: अरे भगवान,
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
1: जी,
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माताजी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगली जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
1: जी,
0: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ।
0: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे पहला टैब बोला तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है
1: जी जी जी,
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा

0: का पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगनी होंगी?
1: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ और उसमें आधे से ज्यादा रो रहे थे, पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए।
0: ओके,
1: तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, इतने दिन का, महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे, आप रुकेंगे तो। तो फिर मैं उतरा, वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे।
0: अरे कैसे?
1: और फिर मैं रुका और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
0: वाह।
1: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ते जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूँ।
0: ओहो,
1: और मैं करियर करना चाहती हूँ नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को, पर वाकई वो जब एक दिन आके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूँ सर।
0: अरे बाप रे।
1: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में, रबालेर वहां रहती थी और वो हर दिन जाती आती थी। तो मैंने देखा साल हो गया, 2 साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं, रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी। ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया, मेरे घर में, कि माताजी पिताजी चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी पिताजी और उसकी बहनें, तो यहाँ लगभग 2-3 बहनें तो यही थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए। तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त साबले हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में।
0: अरे गजब।
1: स्टूडियो नंबर 1 में।
0: ऐसा क्यों?
1: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहाँ होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले, तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कई शादी है, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से पिकअप करने आऊं। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर 1 में,
0: और दूल्हा,
1: हाँ दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है। मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
0: जी,
1: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
0: जी,
1: वो और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
0: अरे
1: हम वहां 1 घंटा इंतजार कर रहे, 2 घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे।
0: लो
1: अब उनको कहां ढूंढे, 2-3 घंटा हो गए हम यही ढूंढ रहे, इस गली में उस गली में, यहाँ इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आए ही नहीं वो रजिस्ट्रार। तो अब करे तो क्या करे। अच्छा, तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया चलो यार रिक्शा में बैठो और जो यहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें क्या ये तुम्हारी अपनी मन की कुछ धारणाएं थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है, वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा को फोन किया यार रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है, वहां देखो कहीं आया हो। तो वहां पहुंचे हम, तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहाँ है। अब शादी करे तो कैसे करे कोई 2 मालाएं लाई थी
0: जी,
1: जो उन्होंने मोपलवार जी ने, तो माला एक दूसरे को पहनाएंगे, तो क्या करिए? तो किसी ने बोला नहीं, वो रजिस्ट्रार आया हुआ है कोई एक आदमी अधिकारी तहसील।

0: से या जो कोर्ट से आता है वो, तब तेजाब की शूटिंग चल रही, वो वहां पर बैठा हुआ है, वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बुनसुड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी।
1: वाह वाह।
0: माता पिता जी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन, उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
1: हो गई शादी।
0: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई।
1: वाह वाह।
0: 42 रुपीज।
1: जी जी,
0: वो रिकॉर्ड है दुनिया का।
1: दुनिया की सबसे सस्ती शादी।
0: और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे, और ये मुपलवाद की फैमिली थी, और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मुपलवार जी ने, वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठल, झुनका छेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माताजी पिताजी चाचा जी बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का। तो बोले आप कहां जाओगे? मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो।
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारे एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब। ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब का गाना बनता है।
1: ये गाना सुनते

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। राज्य की ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी को प्रभावी विकास की आधारशिला बताया है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से योजनाएं और अधिक प्रभावी बनती हैं और विकास का लाभ जन जन तक पहुंचता है। रांची में स्वाइन फ्लू के मरीजों के मिलने के बाद पलामू जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत पलामू स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 10 बेड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आयोजित आदिवासी एकता महाजुटान में आदिवासी समाज के अधिकार, पहचान, सम्मान और जल जंगल जमीन के मुद्दे उठाए गए। कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और परिसीमन को लेकर सरकार की नीतियों पर वक्ताओं ने चिंता जताई। जामताड़ा जिले के कर्माटाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक वसीम रजा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन और 10 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल।

नया संकल्प नई पहल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को माधवी का नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप सब, अच्छे हैं ना? आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, लेकिन पहले सुनते हैं एक गाना।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स,

0: पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, हर इंसान का एक सपना होता है अपने परिवार के लिए एक ऐसा घर जिसकी छत मजबूत हो, जहां बारिश में पानी न टपके, गर्मी में परिवार सुरक्षित रहे और बच्चों का भविष्य बेहतर माहौल में आगे बढ़े। हमारे समाज में आज भी ऐसे अनेक गरीब ग्रामीण परिवार हैं जिनके लिए पक्का घर कभी एक सपना हुआ करता था। इसी सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्थात सुरक्षा, सम्मान, स्थिरता और बेहतर भविष्य की उम्मीद। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन तथा पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराने में सहायता देना है। यह योजना केवल घर बनाने की पहल नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र सरकार की ग्रामीण आवास योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई भी पात्र गरीब परिवार सम्मानजनक और सुरक्षित आवास से वंचित न रहे। योजना के अंतर्गत घर के साथ साथ शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी सहायता को भी संबंधित सरकारी योजना के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। यानी लक्ष्य केवल एक मकान बनाना नहीं, बल्कि परिवार को बेहतर आवासीय जीवन देना है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे पात्र परिवार जो आवासहीन हैं या निर्धारित मानकों के अनुसार कच्चे या जर्जर मकान में रहते हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत लाभ के लिए चिन्हित किया जा सकता है। और फिलहाल दोस्तों, आइए सुनते हैं संतोष कुमार से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी देंगे प्रधानमंत्री शहरी आजीविका मिशन के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रकाश कुमार राणा।
2: आज हम आए हुए हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत चल रहे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के केंद्र में, और आज हमारे साथ हैं उन्हीं के सचिव संतोष कुमार जी। तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: तो संतोष जी, सीधे तौर पे हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन क्या है?
3: एक्चुअली ये जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है
2: जी,
3: ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें जो बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने का एक कार्यक्रम है। जो 18 से 40 साल के जो लोग भी हैं इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं
2: जी। तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें,
3: इस कार्यक्रम का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है
2: जी।
3: जो ऐसे युवा जिन्होंने कॉलेज स्कूल छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई, जो घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास अभी कोई काम नहीं है
2: जी,
3: उनको उनके जो च्वाइस है
2: हाँ,
3: या उनका जो माने विचार है
2: हाँ,
3: उसके अनुसार उनको उस प्रोग्राम में ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना।
2: उनके रुचि के अनुसार आप यहाँ पर उनको ट्रेंड करते हैं
3: जी।
2: तो मुख्यतः कहा जाए कि ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षण कौशल देने की बात आती है यहाँ पे
3: जी। जी,
2: तो ये बताइए संतोष जी कि यदि कोई युवा ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, यदि आपसे जुड़ना चाहे तो इसके लिए आपकी क्या पहल होती है?
3: देखिए, कोई भी ऐसे हुआ जिनको रोजगार या रोजगार करना है या स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें उनको जो ट्रेनिंग के लिए करने के लिए सबसे पहले एक हमारे ऑफिस में आना होगा और उनको एक फॉर्म भरना होगा
2: जी।
3: ऐसे किसी भी युवा जिन्होंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया हो, तो वैसे युवा भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं जिनके पास अपना आधार कार्ड हो।
2: हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि इसमें प्रशिक्षण का ही बात आता है, तो इसका संचालनकर्ता कौन होते हैं?
3: ये देखिए, जो केंद्र सरकार है ये इसके द्वारा, ये जो शहरी विकास मंत्रालय है इसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है
2: जी।
3: जो अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें कि झारखंड का भी इस बार जो प्रशिक्षण का जो हमारे यहाँ कोटा मिला हुआ है, ये करीबन 60,000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम से जोड़ना है
2: जी।
3: तो वो कार्यक्रम जो है उसको देख रेख करने की जो संस्था होती है वो नगर निगम या नगर परिषद होता है
2: जी।
3: किसी भी शहर में
2: जी। तो हम सीधे यही जानना चाहेंगे कि इसमें प्रशिक्षण के तौर पर क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है इस केंद्र में।
3: देखिए, जो हमारा केंद्र है इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड ब्यूटिशियन, मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का कोर्स चलाते हैं, साथ ही हम सिलाई कढ़ाई और कटिंग का कोर्स चलाते हैं, और साथ में बच्चों के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर का भी कोर्सेज के लिए रखा है, और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जिसका मांग आजकल बहुत ज्यादा है, साथ ही सॉफ्ट स्किल यानी इंग्लिश स्पोकन, तो इस तरह के कोर्सेज बच्चों को हम लोग प्रशिक्षण में देते हैं।
2: तो प्रशिक्षण के दौरान उन युवक युवतियों को आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं?
3: देखिए, जो भी प्रशिक्षण लेने वाले छात्र या छात्राएं हैं सभी को हम लोग एक किट देते हैं जो उनको जरूरत पड़ता है, और साथ में उसमें आपको बुक्स रहते हैं जो, और कॉपी रहते हैं, कलम रहते हैं, साथ में कुछ ऐसे चीज जो उसकी जरूरत हो वो हम सभी छात्र छात्राओं को अलग अलग से दे देते हैं।
2: निःशुल्क है सब?
3: ये सभी कुछ निःशुल्क है, कोई भी ट्रेनिंग में कोई पैसा आपको एक रुपये भी नहीं लगता है, और पूरा पूरा ट्रेनिंग फॉर्म भरने से लेके सारा ट्रेनिंग तक, सर्टिफिकेशन तक, सभी कुछ निःशुल्क है।
2: आप विकास कौशल की बात कर रहे हैं, तो आप ये एक मापदंड तो मापते ही होंगे कि हमारा जो विद्यार्थी है पूरा कौशल विकास में निपुण हो गया, इसके लिए आपके क्या मापदंड अपनाते हैं?
3: देखिए, सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं कि किसी मतलब विद्यार्थी ने उस तरह का ट्रेनिंग लिया है कि नहीं लिया है, इसके लिए एक तो समय समय पे उनका टेस्ट भी लेते हैं, कुछ एक्सपर्ट लोगों को भी हम लोग अपनी संस्था में बुलाते हैं, और साथ में प्रशिक्षण खत्म होने के बाद जो भारत सरकार की एक संस्था है RDAT, रीजनल डायरेक्टर फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये एक असेसमेंट बड़ी है, ठीक है ना, जो असेसमेंट इसका करती है, तो उसके द्वारा जो छात्र अगर पास कर जाते हैं उस असेसमेंट में तो उनको एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि उन्होंने ये इस तरह का प्रशिक्षण लिया है, और चूंकि सारा काम भारत सरकार की NSQF नॉर्म्स उसके अनुसार उस मैंने तरीके का रहता है प्रशिक्षण, तो वो प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं उस स्तर का प्रशिक्षण लिया इसका पता आपको RDAT का सर्टिफिकेशन के द्वारा ही पता चल जाएगा।
2: यानी कि आप सर्टिफाइड करते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं ताकि वे कहीं और जाके भी अपने कुशल कारीगर के रूप में वो मान्यता प्राप्त हो।
3: जी, ये जो संस्था है RDAT वो सर्टिफिकेशन देती है सभी को। हाँ। जो भी पास जो छात्र कर जाते हैं उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है।
2: कहाँ कहाँ मान्यता मिलता है?
3: कहीं पर भी, ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
2: तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रशिक्षण की आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा तरीका भी जानना चाहेंगे इसमें क्या क्या आप क्या क्या गौर करने वाली बात होती है, तो वो भी हमारे श्रोता युवा श्रोता सुन लें।
3: सबसे पहले जो प्रशिक्षण का जो समय होता है ये 650 घंटे से लेके 750 घंटे का ट्रेनिंग चलता है, अलग अलग विषयों का अलग अलग समय तक ट्रेनिंग चलता है। इसमें जो ट्रेनिंग का तरीका है साधारण से लेके एक एडवांस कोर्स तक चलता है, ताकि किसी भी युवा को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जा सके, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा फोकस किए जाते हैं हम लोग के द्वारा, ताकि वो सीधा ही सीधा कोई यहाँ से छात्र पास करके निकले तो सीधे वो कुछ काम करने के काबिल बन जाए।
2: यानी कि आप सिद्धांत के साथ साथ उनको आप जमीनी स्तर पर सिखाते भी हैं और अपने कुशलता के अनुसार वो काम भी करें।
3: जी, आपने सही बताया।
2: तो आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि इनके साथ ही साथ वे प्रशिक्षण के दौरान वे यहाँ से कहीं बाहर चले जाते हैं, यदि वे अपना स्वरोजगार को अपनाना चाहें तो इसके लिए आपकी संस्था या सरकार क्या कर सकती है?
3: देखिए, जो ऐसे छात्र या जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है अगर उनको लगता है कि मुझे स्वरोजगार से जुड़ना है और उसको मैंने स्थापित करने के लिए अगर उनको कुछ लोन चाहिए तो सरकार हर प्रशिक्षणार्थी को 2 लाख रुपए का लोन देती है 7% ब्याज पर। अगर ये ग्रुप बन के काम करते हैं, संख्या में 4, 5 या 7 लोग जैसे जुड़ जाते हैं, तो 10 हाँ समूह में 10 लाख लोग तक का लोन उनको मिल जाता है। किसी बैंक से आप ले सकते हैं। एक आपको फॉर्म मिलता है जिसको ACP फॉर्म बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर्म।
2: कहाँ मिलेगा
3: वो? आपको नगर निगम में, कहीं भी नगर निगम में मिल जाएगा। उसको भर के आपको देना पड़ता है, नगर निगम आपको बैंक से लिंक करा देगा।
2: तो आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई युवा आपसे जुड़ना चाहे, इस प्रशिक्षण केंद्र में आना चाहे, तो उसके लिए उन्हें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, अर्हता क्या होंगी, क्या क्या पात्रता उन्हें देनी पड़ेगी आपके पास आने के लिए?
3: देखिए, पहले सबसे पहले जो छात्र या छात्राएं पढ़ना चाहते हैं उन 18 से 40 जो के वर्ग के उम्र के बीच रहने चाहिए वो जी। साथ में अगर उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं किया हो तब भी उससे इसमें कोई एडमिशन में असर नहीं पड़ता।
2: साक्षर होना चाहिए,
3: बस साक्षर होना चाहिए जी। साथ में आधार कार्ड एक होनी चाहिए जी। और कोई भी चीज उसमें जरूरत नहीं है, और बाकी
2: चीज यहाँ आवे फॉर्म आप उसको भरवा के और आप एडमिशन ले सकते हैं।
3: जी, जी, जी।
2: तो एडमिशन लेने से मैं आप कुछ बातों का ध्यान भी देते हैं कि किन विद्यार्थियों को लेना है या किन विद्यार्थियों को नहीं लेना है।
3: क्योंकि सबसे पहला जो प्रशिक्षण में सबसे मुख्य वही काम है कि किस छात्र को प्रशिक्षण देना है। जैसे ऐसे छात्र जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है
2: जी।
3: वो छात्र कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग वही चीज को ध्यान देते कि जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया हो, जो घर में बेरोजगार है, तो ऐसे छात्र को जो उनको जरूरत लगता है, रुचि है, उस रुचि में उनको एडमिशन देके उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं।

0: संतोष जी, आपसे तो बहुत सारी जानकारी ले ली है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत चल रहे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत, तो आगे अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी केंद्र के जो आपके जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ बातचीत कर लें आपसे। तो अभी आपके पास कितने विद्यार्थी अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं?
1: अभी हम लोग जो 8 बैच में करीबन 320 विद्यार्थी यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं।
0: यदि कोई नया विद्यार्थी आना चाहे तो उसका टाइमिंग क्या है आपके पास, समय क्या है वो बताएं?
1: हम लोग का जो क्लासेस है जो हम लोग चलता है प्रशिक्षण, ये 9 से लेके 5 तक चलता है। हाँ। दो बैच में चलता है, जैसे 9 बजे से 1 बजे तक एक कार्यक्रम चलता है और 1 बजे से लेके 5 बजे तक का दो मैंने शेड्यूल में वर्क काम चलता है।
0: तो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं और उसके बाद यदि आपसे जुड़ना चाहें तो हम आपसे पता भी जानना चाहेंगे।
1: ये जैसे भी हम लोग का जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र का पता है, प्रशिक्षण केंद्र है ये बंसीलाल चौक के 10 कदम की दूरी पर है अवस्थित है। जो भी छात्र अगर एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हैं।
0: संतोष जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ के बहुत सारी जानकारियों पर आपने रोशनी डाली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सचिव संतोष कुमार की बातचीत। तो अब आपको सुनवाते हैं, एक छात्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो जी आपका परिचय क्या है?
2: मेरा नाम फरत साहिन है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एम्ब्रॉयडरी सीखने आते हैं हम, सरदार चौक से आते हैं और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छा सिखाया जाता है।
0: तो फरहत साहिन जी, हम आपसे ये जानना चाहें कि यहाँ पे आप किस ट्रेड का प्रशिक्षण ले रही हैं?
2: हम सिलाई और एम्ब्रॉयडरी दोनों का ले रहे हैं। मेरा ट्रेड है एम्ब्रॉयडरी और सिलाई दोनों, जो 8 महीना का कोर्स है उसको। तो हम 9 बजे से आते हैं, 9 बजे से हम 1 बजे तक यहाँ रहते हैं, क्लास करके जाते हैं। बहुत ही अच्छा सिखाया जाता है। अभी मेरा 2-3 महीना लगभग हो गया है, लेकिन हम 2-3 महीना के हिसाब से बहुत ज्यादा सीख गए हैं।
0: और अब क्या सिखाया जाता है यहाँ इस ट्रेड के अंदर?
2: ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है मोती स्टिच, चेन स्टिच और सैटन स्टिच, एप्लीक, बहुत सारा है। इसमें लगभग 40-50 स्टिच आते हैं। इसमें हम लोग लगभग 18-20 पार ही कर गए हैं अभी तक, बहुत कुछ बना भी लिए हैं। और हम आशा करते हैं हम इतना अच्छा सीख रहे हैं कि हम यहाँ से सीखने के बाद किसी को सिखा सकते हैं, अपना खुद का सेंटर खोल सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरे माँ बाप को भी यही उम्मीद है, जहाँ मेरे बच्चे जा रहे हैं बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए मेरे माँ बाप भी एकदम हमको भेजते हैं सीखने। घर का काम छोड़ के पहले जाओ सीखो, ट्रेनिंग लो, उसके बाद कुछ करना, हम आगे जाके कुछ कर सके, अपने लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर सके कुछ बन सके, इसलिए हम आते हैं यहाँ पे और ट्रेनिंग करते हैं।
0: आपके जीवन में प्रशिक्षण का क्या महत्व रहा?
2: हम पहले ग्रेजुएशन करके घर में ऐसे ही बैठे हुए थे, हमको पता चला कि यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, हमको लगा कि वहाँ जाके पता करना चाहिए। हम यहाँ आए तो हमको बहुत अच्छा लगा, हम लगा कि घर में बोर हो रहे थे, कुछ सीखेंगे, दूसरे को सिखाएंगे, इसका बहुत महत्व है अपने जिंदगी में और ये चीज हम दूसरे को भी सिखा सकते हैं। जब भी बहन हमारी घर में बैठी हुई है उनको चाहिए कि हम कहीं जाए सीखे देखे और खुद करे और दूसरे को भी इसके बारे में जानकारी दे।
3: अभी आप सुन रहे थे संतोष कुमार से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री शहरी आजीविका मिशन के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे थे प्रकाश कुमार राणा। और आइए चलते चलते सुनते चले एक गाना।

इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल से अपनी दोस्त माधवी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम युवा तरंग।

युवा तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को माधवी का नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप सब, अच्छे हैं ना? फिलहाल अभी आप लोग अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग सुन रहे हैं। कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा गीत। रेडियो सेट की आवाज को थोड़ा सा बढ़ाइए और आनंद उठाइए इस गीत का।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, आज की दुनिया तकनीक की दुनिया है। मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यही उपकरण पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या हमारे काम के नहीं रहते, तब उनका क्या होता है? क्या आपका पुराना मोबाइल किसी अलमारी के कोने में पड़ा है? क्या घर में कोई खराब चार्जर, ईयरफोन, रिमोट, कीबोर्ड या पुराना कंप्यूटर रखा है? अगर हाँ, तो जरा रुकिए, क्योंकि यही चीजें ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा का हिस्सा बन सकती है। आज तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। हर कुछ समय के बाद बाजार में नया मॉडल आ जाता है। पुराना उपकरण काम तो कर रहा है, लेकिन नया और बेहतर मॉडल देखकर हम उसे बदल देते हैं। यही वजह है कि ई कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। लेकिन समस्या केवल इतनी नहीं है कि ई कचरा ज्यादा पैदा हो रहा है, असली चिंता यह है कि इसका निपटान किस तरह किया जा सकता है। अगर पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को सामान्य कूड़े के साथ फेंक दिया जाए, खुले में जला दिया जाए या बिना उचित प्रक्रिया के तोड़ा जाए, तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कई तरह की धातुएं, प्लास्टिक

0: और दूसरे पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। कुछ ई कचरे में ऐसे खतरनाक तत्व भी हो सकते हैं जो गलत तरीके से संभाले जाने पर पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जब ई कचरा खुले में फेंका जाता है तो उसके कुछ घटक मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक सामान को खुले में जलाया जाता है तो जहरीला धुआं निकल सकता है। सबसे अधिक चिंता तब होती है जब ई कचरे को बिना सुरक्षा उपाय के तोड़ा या जलाया जाता है। इससे काम करने वाले लोगों के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों पर भी जोखिम बढ़ सकता है। ई कचरे का सही तरीके से रिसाइकल करना पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ संसाधनों को दोबारा उपयोग में लाने का अवसर भी है। इवा दोस्तों, इस संबंध में आप स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। और फिलहाल आइए सुनते हैं श्रीमती बिमी प्रियदर्शनी से ली गई भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी देंगी सफलता के लिए समय तालिका का क्या महत्व है। इस बारे में इनसे बातचीत कर रही हैं रानी सहाय।
1: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वरीय शिक्षिका श्रीमती बिमी प्रियदर्शनी जी से, जो अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल हजारीबाग में कार्यरत है। बिमी जी हमें आज जानकारी देंगी एक आदर्श विद्यार्थी के जीवन में समय का क्या महत्व है इस विषय पे। तो सबसे पहले बिमी जी, आपका इस कार्यक्रम में हम करते हैं बहुत बहुत स्वागत और कहते हैं नमस्कार।
2: नमस्कार
1: बिमी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सफलता के लिए कर्म के साथ ही समय प्रबंधन भी बेहद जरूरी है, इस बारे में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: जी हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी के जीवन में समय प्रबंधन बहुत महत्व रखता है। अगर विद्यार्थी अपने जीवन में समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तो वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं जी। और समय का प्रबंधन के लिए उन्हें सुबह सोकर उठने से लेकर के रात के सोने समय तक के लिए एक समय तालिका बना लेनी चाहिए। कितने बजे तक में वह कितना काम कर सकते हैं, इस तरह से अगर वह अपना तालिका बनाए और उसमें वह अपने लिए पढ़ाई के लिए कितने समय होने चाहिए, सफाई स्वच्छता के लिए कितने समय देने चाहिए तथा अपने रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए और समाज की सेवा के लिए कितने समय देने चाहिए, इस तरह से वह सारे समय का प्रबंधन करें, सारे समय को बांट दें और समय का प्रबंधन करें तो वो एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं
1: जी। बिमी जी, उचित समय पर यदि कोई विद्यार्थी अपना कार्य करते हैं तो हमेशा फलदायी होता है, इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे छात्राओं?
2: जी हाँ, ये भी कहना बिल्कुल सही है कि उचित समय पर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या होगा
1: जी जी।
2: तो इसलिए समय रहते ही हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। हर एक समय, हर एक पल बीतता जा रहा है जिसका हमें बोध नहीं होता है, हमें इसका ज्ञान नहीं होता है कि हम हर एक क्षण, एक पल, एक समय खो रहे हैं। और हमें चाहिए कि हर एक समय को हम सदुपयोग करें। सदुपयोग समझना बहुत जरूरी है कि सदुपयोग, समय का सदुपयोग क्या होता है।
1: बहुत जरूरी है।
2: समय का सदुपयोग में सिर्फ किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किताब की ज्ञान तो जरूरी है, वह तो किताब की ज्ञान से तो सिर्फ उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं
1: जी।
2: किताब के ज्ञान के साथ साथ हम उन्हें अपने व्यवहारिकता में कैसे ला सकते हैं
1: जी।
2: हम उन चीजों को, जो चीज हम किताबों से सीखते हैं, उनको हम व्यवहारिकता में कैसे अपने जीवन में उपयोग करें, अगर हम इस तरीके से सीखेंगे तब हम एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं
1: जी। जो व्यक्ति उचित समय पर अपना कार्य नहीं करते हैं बिमी जी, उनकी सफलता संदिग्ध ही रहती है, इस बारे में आप क्या कहेंगी?
2: हाँ, ये सही है कहना कि उचित समय पर तैयारी नहीं करने पर सफलता संदिग्ध रहती है। उचित समय कौन सा समय है जिसे हम उचित समय कहेंगे
1: जी, ये जानना बहुत जरूरी है।
2: ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा समय है जो उचित समय है। कोई कहता है शाम का समय हमारे लिए उचित समय है, कोई कहता है हमारे लिए रात का समय उचित समय है। नहीं, हमारे लिए उचित समय जो अभी वर्तमान का समय है वही हमारे लिए उचित समय है, और इस वर्तमान समय को ही

0: हमें अपने काम में लगाना चाहिए, हमें अपनी अध्ययन के लिए और अध्ययन से प्राप्त किए हुए ज्ञान को व्यावहारिकता में लाने के लिए हमें लगाना चाहिए, तभी हम एक सफल सफल विद्यार्थी बन सकते हैं, अन्यथा हमारी सफलता भी संदिग्ध ही रहेगी।
1: जी, सफलता के लिए लक्ष्य तय करना भी जरूरी है ताकि हम अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंच जाएं। इस संबंध में भी आप थोड़ी जानकारी दे दें विद्यार्थियों को।
0: सफलता के लिए सही समय पर हमें अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, चारों ओर हजारों तरह के अवसर दिखाई देते हैं, लेकिन हमें अपने लिए अवसर वही ढूंढना है जो अवसर हमारे लिए उचित है, और हमें उचित अवसर का उपयोग करना चाहिए, तभी हम सफल विद्यार्थी बन सकते हैं। लक्ष्य का तय नहीं करने से हम मार्ग से भटक सकते हैं, हमें कभी ये मार्ग कभी वो मार्ग अलग अलग रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन हमें एक ही मार्ग पर चलना चाहिए जो हमारा लक्ष्य हो, उसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पीमी जी, आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, तो एक विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस बारे में आप कुछ सलाह दें।
0: विद्यार्थी हमारे आज के दौर में सही बात है कि आज के दौर में वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कई तरह की चीजें परोसी जा रही है, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कई तरह की चीजें परोसी जा रही हैं, और वो जो चीजें उन्हें परोसी जा रही हैं जो उन्हें बहुत लालायित कर देती हैं, और वह अबोध बालक होते हैं जिन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह गलत रास्ते की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और शिक्षा की तरफ उनका ध्यान कम हो जाता है। उन्हें लगता है शिक्षा तो सभी ले रहे हैं, लेकिन मनोरंजन करने का यही एक समय है, और वह अपने माता पिता से छिप करके, अपने शिक्षक गणों से छिप करके, वह अपने मनोरंजन के लिए ज्यादा समय देते हैं, या फिर अपने किसी हॉबी के लिए ज्यादा समय दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्हें चाहिए शिक्षा पहले है, सबसे जरूरी है कि हम आधार किसे बनाएं। आधार अगर हमारा ना होगा तो हम उसके ऊपर महल नहीं खड़ा कर सकते हैं, तो इसलिए आधार हमें सबसे पहले बनाना है। आधार बनाने का मतलब है सबसे पहले हमें शिक्षा लेनी होगी, शिक्षा अगर हमने ले लिया तो फिर हम आगे उसके ऊपर कई तरह की इमारत खड़े कर सकते हैं।
1: जी,
0: इसलिए ये जरूरी है कि पहले शिक्षा लें, उसके बाद ही किसी दूसरे लक्ष्य की ओर अपना ध्यान भटकाएं।
1: जी, बीमी जी, कुछ और सवाल है जिससे मैं पूछना चाहूंगी। शिक्षा के संदर्भ में समय का क्या महत्व है, इस बारे में आप कुछ जानकारी दें।
0: शिक्षा के संबंध में समय का बहुत महत्व है, अगर यूं कहें तो हर एक मामले में समय का महत्व होता है, लेकिन शिक्षा के मामले में समय का बहुत महत्व होता है, इसलिए क्योंकि शिक्षा का जो समय है वह सीमित समय है।
1: जी, बिल्कुल।
0: एक सीमित समय तक ही हम शिक्षा लेते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन निर्वाह के कार्य में लग जाते हैं और अलग अलग कार्यों में हमारा ध्यान चला जाता है, हम दूसरे कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं, और आज के दौर में शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर शिक्षा के हम किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। आज लोग अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे अंक के साथ अपने प्रगति को दिखा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इसके साथ समय को सही प्रबंधन करे।

0: समय का सही प्रबंधन करें और समय के साथ वो अपना तैयारी करें,
1: बिठा कर चले, है ना,
0: तालमेल बिठा करके चले, उसमें तभी वह सफल विद्यार्थी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षा के संदर्भ में समय का बहुत महत्व है, इस बात को विद्यार्थियों को समझना होगा, है ना, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को इस संदर्भ में क्या आत्म मंथन की आवश्यकता है?
0: हाँ, यह बिल्कुल जरूरी है। आज के दौर में हर एक विद्यार्थी को आत्म मंथन की आवश्यकता है। इसलिए आत्म मंथन की आवश्यकता है क्योंकि हर एक विद्यार्थी की योग्यता अलग अलग होती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि कोई विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में किसी विषय पर आगे चल रहा है तो मैं भी उसी विषय पर आगे चलूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्म मंथन करके देखें कि हमारे लिए हमारी योग्यता किसमें सबसे अधिक है, और हमारी योग्यता जिसमें सबसे अधिक है हमें उसमें ही ज़्यादा काम करना चाहिए और अपनी योग्यता को दिनों दिन बढ़ाना चाहिए। आत्म मंथन की ज़रूरत इसलिए भी है
1: जी।
0: कि विद्यार्थी शिक्षा का महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें कई बार शिक्षा बोझ के समान लगती है या आदेश के समान लगती है। उन्हें लगता है कि शिक्षा सिर्फ माता पिता का आदेश है जिस कारण से शिक्षा लेनी पड़ती है, या शिक्षकों का बहुत दबाव बना रहता है इसलिए शिक्षा लेनी पड़ती है। नहीं, ये आत्म मंथन करनी चाहिए उन्हें कि शिक्षा की आवश्यकता कहाँ है, कौन से जगह पे हम बिना शिक्षा के हम कौन से जगह पे खड़े हो सकते हैं, क्या हम सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी एक पहचान भी बनाना चाहते हैं। अगर हम अपनी एक पहचान भी बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा का महत्व समझना चाहिए
1: जी। अच्छा, अंत में एक सवाल और भी हम पूछना चाहेंगे कि कोरोना काल में बहुत सारे विद्यार्थियों के शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, तो इसके लिए आप किसे उत्तरदायी मानती हैं?
0: कोरोना काल में तो सच पूछा जाए तो विद्यार्थियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ जाता है। जहाँ पर विद्यार्थी आमने सामने शिक्षक के सामने बैठ करके पढ़ते हैं
1: जी।
0: और अपनी हर जिज्ञासा को पूरी करते हैं, ऑनलाइन में शायद वह उतने स्तर तक नहीं पहुँच सकते हैं
1: जी।
0: इसके लिए उत्तरदायी तो ये कोरोना को ही हम कहेंगे और हम किसी और को कह नहीं सकते हैं। इसमें किसी शिक्षक का कोई दोष नहीं है, विद्यार्थियों का दोष नहीं है, दोष तो हम इस कोरोना को ही कहेंगे। यह एक क्या कह सकते हैं हम इसे, यह एक महामारी आई है और महामारी के चपेट में सभी लोग आए, जैसे व्यवसायी लोगों का व्यवसाय पे फर्क पड़ा है उसी तरह से विद्यार्थियों के जीवन में भी बहुत फर्क पड़ा है, बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थियों को जितनी अध्ययन होनी चाहिए थी एक साल में उसका 50% ही वो अध्ययन कर पाए हैं
1: जी। उन्हें भी परेशानियों का सामना करना,
0: बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
1: तो बीमी जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और अपना बहुत बहुमूल्य समय आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बिम्मी प्रियदर्शनी से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रही थी सफलता के लिए समय तालिका का क्या महत्व है, इस बारे में इनसे बातचीत कर रही थी रानी सहाय। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ई कचरा, बढ़ती समस्या और सुरक्षित निपटान के उपाय के बारे में। तो हम आपको बता दें कि ई कचरा कभी भी खुले में नहीं फेंकना चाहिए। इसे सड़क किनारे, नाले, खाली जमीन या जल स्रोत के पास फेंकना पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ई कचरे को जलाए नहीं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को जलाकर धातु निकालने की कोशिश बिल्कुल न करें, इससे हानिकारक धुआं निकल सकता है। अधिकृत रिसाइकलर या संग्रह केंद्र का इस्तेमाल करें जहां उपलब्ध हो। ई कचरे को अधिकृत ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर, रिसाइकलर या निर्माता द्वारा उपलब्ध कराए गए टेक बैक सिस्टम को दें। पुराने मोबाइल या कंप्यूटर को देने से पहले अपना निजी डेटा सुरक्षित कर लें। फोन या कंप्यूटर किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को देने से पहले अपने जरूरी डेटा का बैकअप लें और व्यक्तिगत

0: जानकारी हटाएं। बैटरियों को विशेष सावधानी से संभालें, खासकर खराब या क्षतिग्रस्त बैटरियों को सामान्य कचरे में न डालें, उन्हें उचित संग्रह व्यवस्था तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे उत्पाद चुनें जो टिकाऊ हो, मरम्मत किए जा सके और जिसके लिए निर्माता की जिम्मेदार टेक बैक या रिसाइकलिंग व्यवस्था उपलब्ध हो। याद रखिए, एक कचरे का सही समाधान सिर्फ फेंकना नहीं बल्कि सही जगह पहुंचाना है। दोस्तों, एक बार गौर से अपने घर में देखिए कि क्या कोई पुराना मोबाइल है, कोई खराब चार्जर है, पुरानी बैटरी है, पुराना कंप्यूटर, कीबोर्ड या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। उसे सामान्य कूड़े में डालने के बजाय अलग रखिए और अपने क्षेत्र में उपलब्ध अधिकृत ई कचरा संग्रह या रिसाइकलिंग व्यवस्था के बारे में जानकारी लेकर उसी माध्यम से निपटान कीजिए, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा कोई बहुत बड़ा काम करके नहीं होता। कई बार एक छोटा सा सही फैसला भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और दोस्तों, आइए सुनते हैं एक गाना।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

चलते चलते आइए हम ये संकल्प लें कि ई कचरा ना खुले में फेंकेंगे ना जलाएंगे, सही तरीके से इसका निपटान कराएंगे, दूसरों को भी जागरूक बनाएंगे। जागरूक रहिए, जिम्मेदार बनिए और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रहिए। इसी संदेश के साथ आज के युवा तरंग से माधवी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की मजार पर आयोजित 219वें उर्स में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मजार पर चादर पोशी की। उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। प्रदेश भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा ने कहा कि खान और खनिज विकास और विनियमन MMDR संशोधन से खनन व्यवस्था स्पष्ट और मजबूत होगी तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा ने झामुमो पर अवैध खनन को लेकर राजनीति करने और अपने कार्यकाल में खनिज संसाधनों के दोहन का आरोप लगाया। वहीं झामुमो ने कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार से समझौता नहीं किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नेपाल में आई भीषण त्रासदी में लापता रांची निवासी राम प्रसाद घोष के परिजनों से आज मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों से बात कर लापता की खोजबीन और सकुशल बरामदगी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भी अपने माध्यमों से लापता की खोज करने का प्रयास कर रही है। रांची में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद पलामू जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीज के इलाज के लिए अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत पलामू स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 10 बेड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम मेहनत कश।

आज का दिन उन हाथों को सलाम करने का दिन है जो छोटे छोटे सपनों को बड़े कारोबार में बदलते हैं, उन मेहनतकश लोगों को सलाम जो सीमित साधनों के बावजूद अपने हुनर, मेहनत और हौसले से रोजगार पैदा करते हैं। कार्यक्रम मेहनतकश में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए माधवी का नमस्कार। श्रमिक भाइयों, आज है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस और आज हम बात करेंगे लघु उद्योगों की, छोटे उद्यमियों की, कारीगरों की और उन तमाम लोगों की जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं या अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। आज हम करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन पहले सुनते हैं एक गाना। फिल्म का नाम है लव स्टोरी, आवाज़ें आशा भोसले और अमित कुमार की है।

0: जाती है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: चैंपियन नहीं आई अब तक।
6: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
7: सुगंध क्या हो रहा है?

0: अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रमिक भाइयों, छोटे उद्योग केवल एक दुकान, एक मशीन या एक छोटी सी कार्यशाला का नाम नहीं है। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये रोजगार देते हैं, हुनर को पहचान देते हैं और गांव तथा कस्बों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाते हैं। भारत सरकार भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इनमें वित्तीय सहायता, ऋण सुविधा, ऋण गारंटी, प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नयन, बाजार उपलब्धता और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। आज हमारे देश में बहुत से लोग नौकरी तलाशने के बजाय अपना रोजगार खड़ा करना चाहते हैं। कोई फर्नीचर बनाना चाहता है, तो कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाना चाहता है, तो कोई अपने पारंपरिक हस्तशिल्प को बाजार तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन अक्सर एक सवाल सामने आता है कि पैसा कहाँ से आएगा। यहीं से शुरू होती है सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सहायता की भूमिका। आज सरकार की कई योजनाएं उद्यमियों को वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए चल रही है। कई छोटे कारोबारी ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत बड़े निवेश की नहीं, बल्कि अपने कारोबार को शुरू करने या बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत छोटी पूंजी की जरूरत होती है। ऐसे में मुद्रा ऋण उपयोगी हो सकता है। जरूरत के अनुसार वित्तीय विकल्प चुनिए, योजना की शर्तें समझिए और बैंक से पूरी जानकारी लेकर ही ऋण लीजिए। हमारे गांव और कस्बों में सदियों से चले आ रहे अनेक पारंपरिक उद्योग हैं।

0: शिल्प, हथकरघा, बांस का काम, लकड़ी का काम, कुम्हारी, खादी और ग्राम उद्योग से जुड़े अनेक कार्य हैं। श्रमिक भाइयों, हुनर पुराना हो सकता है लेकिन बाजार नया बनाया जा सकता है। अकेले की ताकत सीमित हो सकती है लेकिन मिलकर काम करने से क्षमता बढ़ जाती है। एक क्षेत्र के कई छोटे उद्यमी मिलकर साझा सुविधाओं, तकनीक और बुनियादी ढांचे का लाभ उठा सकते हैं। आज के दौर में सिर्फ उत्पाद बनाना पर्याप्त नहीं, जरूरी है अच्छी पैकेजिंग, सही कीमत, गुणवत्ता, ब्रांडिंग, डिजिटल उपस्थिति और ग्राहक का भरोसा। आज गांव का उद्यमी भी अपने उत्पाद को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा सकता है। उद्यमिता का अर्थ होता है बाजार को समझना, ग्राहक को समझना, लागत का हिसाब रखना, गुणवत्ता बनाए रखना, कर्मचारियों को साथ लेकर चलना और समय के साथ अपने व्यवसाय को बदलना। इसलिए जो युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण और कौशल विकास अवसरों के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। और दोस्त श्रमिक भाइयों, सुनते हैं हम एक भेंट वार्ता। सृष्टि कमल से बातचीत कर रहे हैं अशोक कुमार, जो हमें जानकारी दे रही हैं केक मेकिंग स्वरोजगार का बढ़िया विकल्प है। इस बारे में आपको हम बता दें कि ये भेंट वार्ता पुनः प्रसारित है।
1: श्रोताओं, आज के मेहनत कश कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है एक बेकरी व्यवसाय से जुड़ी शख्सियत सृष्टि कमल जी को। तो सृष्टि जी, आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार मुखातिब है, बहुत बहुत स्वागत, साथ ही साथ नमस्कार।
2: धन्यवाद।
1: मैम, ऐसा है कि आजकल स्वरोजगार की ओर ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है, युवा वर्ग भी देख रहे हैं कि अगर नौकरी मिलना संभव नहीं है तो स्वरोजगार एक ऐसा है, बहुत सारे विकल्प हैं रोजगार की अगर बात करते हैं तो आसपास। इसी में एक बेकरी व्यवसाय जो है काफी बेहतर, थोड़ा बहुत पूंजी लगा के अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें इस व्यवसाय से आप जुड़ी हुई हैं, उसको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये व्यवसाय की शुरुआत किस प्रकार से होती है। खासतौर से आप इसमें केक बनाती हैं, बेकरी में बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं लेकिन आप केक बनाती हैं, तो पहले ये बताइए कि इस कार्य को आप कितने वक्त से कर रही हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ?
2: तो ये 2 साल पहले की बात है। हाँ। उस वक्त पे कोविड आया था और मैं अपने थर्ड ईयर में थी कॉलेज में, तो हमारे कैंपसेस चल रहे थे, हमारी जॉब्स भी लग गई थी, बट ज्वाइनिंग से जस्ट कुछ टाइम पहले ही कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया।
1: अच्छा।
2: एक साल हम लोग पहले एक हफ्ते से, वो एक महीना हुआ, फिर 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, ऐसा करके 1 साल हो गया। फिर धीरे धीरे सारी कंपनीज ने भी अपनी जॉब्स वापस लेनी शुरू कर दी।
1: हाँ।
2: तो फिर और उस टाइम पे जॉब्स भी नहीं थे होटल्स, क्योंकि होटल सारे लॉस में चल रहे थे बहुत ज्यादा। तो उस वक्त और कहीं जा भी नहीं सकते थे, बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। तो फिर ठीक है, क्या करें, और मेरा बर्थडे भी था तो मैंने अपने बर्थडे पे बेसिकली केक बनाया था।
1: अच्छा,
2: तो
1: अच्छा।
2: सबको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि आप बना के देखो कि कैसा रिस्पांस आता है। तो फिर बनाना शुरू किया, तो पहले महीने में बस 2 ऑर्डर्स थे, फिर वो धीरे धीरे 4 हुए, 6 हुए, फिर पता नहीं लगा कि कब पर दिन 6 ऑर्डर्स आने लगे, जो मतलब ये मैक्सिमम था कि 6 ऑर्डर्स ही हम लेते थे, उसके आगे हम रोक देते ऑर्डर्स लेना बिल्कुल ही। तो अभी ऐसा ही चल रहा है। अच्छा,
1: बस
2: है।
1: उस प्रकार से इसे आपकी शुरुआत हो गई।
2: हाँ।
1: चलिए, बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि ये जो 6 ऑर्डर आप जैसे इस काम को स्वयं करती हैं या फिर घर के लोग हाथ इसमें बटा दें, या कोई स्टाफ वगैरह भी रखी हैं?
2: अभी तो फिलहाल स्टाफ तो नहीं रखा है मैंने। अच्छा। तो अभी तो है कि हाँ, जैसे सारे बर्तन वगैरह का काम हो गया, या कभी कोई बॉक्सेस बनाने केक का, तो उसमें मम्मी हेल्प कर देती हैं।
1: अच्छा।
2: अदरवाइज क्योंकि केक वगैरह का काम का तो मेरे को ही आइडिया, वैसे हाथ बैठा हुआ, वो नहीं कर सकते और कोई, अगर उनका प्रैक्टिस नहीं है तो बाकी काम तो मेरे को ही करना पड़ता है फिलहाल कोई, क्योंकि अभी कोई भी स्टाफ नहीं है, अभी अकेली हैंडल करना होता है सब कुछ।
1: तो काफी मेहनत। और वैसे अभी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है?
2: अभी मेरे मास्टर्स बस खत्म होने वाले हैं।
1: अच्छा,
2: IHM पूसा से, और मैंने ग्रेजुएशन करी थी होटल मैनेजमेंट में ही चंडीगढ़ से, IHM चंडीगढ़ से।
1: तो जो जॉब आपकी लगी थी वो होटल मैनेजमेंट में ही जॉब लगी थी या कहीं और लगी?
2: हाँ जी, ओबेरॉय में लगी थी।
1: अच्छा, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन फिर वो जाते लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको उसका अफसोस होगा, क्योंकि आपने उसको रिकवर किया इस व्यवसाय को स्टार्ट करके।
2: हाँ, बहुत। हाँ, एक एक्सपोजर मिला, पता चला कि हाँ, यहाँ पे भी मेरा अच्छा इंटरेस्ट है
1: जी।
2: और पता चला कि हाँ, मेरे इंटरेस्ट अभी तक हम यहाँ इतना आगे तक पहुँच सके।
1: अच्छा, ये बताइए कि इस व्यवसाय को आरंभ करने के लिए आपने पूंजी कितना इन्वेस्ट किया? अभी
2: स्टार्टिंग में तो 800 रुपए ही लगाए थे, घर पे। अच्छा। पहले से अवन था ही,
1: बहुत मिनिमम अमाउंट था।
2: तो उस वक्त की हाँ

0: केक का डब्बा ले आया, दो केक
1: हाँ
0: बेस ले आया, एक विप क्रीम का डब्बा ले आया था, ऐसे
1: हाँ
0: करके एक बस कि हाँ दो तीन केक के लायक का सामान लेके आया कि पहले देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा है। फिर तीन केक से जो पैसा है उससे और सामान आया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर अभी है कि पहले से अवन तो था ही, फिर फ्रिज लिया, फिर ये मतलब इक्विपमेंट्स, फिर टे मतलब जितने भी केक मोल्ड्स वगैरह वगैरह, फिर उसमें बहुत तरीके के टाइप्स आ गए। तो अब है कि हाँ अब वो पहले से बहुत बेहतर कलेक्शन है मेरे पास।
1: अच्छा मैम, ये बताइए कि इक्विपमेंट की आपने बात की, सामग्री की आपने बात की, एक्चुअली कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता इसमें पड़ती है एक केक के लिए? जो बाहर से जैसे सेप आते हैं तो हर सेप का एक डब्बा होता है या क्या होता है, क्या उसके बारे में थोड़ा?
0: देखिए अवन तो बेसिक है, आप कुकर में केक बनाना, अवन में केक बनाना बहुत डिफरेंस होता है।
1: अच्छा, बेहतर
0: और
1: कहाँ बनता है?
0: अवन में, क्योंकि अवन में आपका चारों तरफ से हीट पड़ता है केक पे, तो वो चारों तरफ से बेक होता है।
1: अच्छा
0: कुकर में सिर्फ नीचे से हीट पड़ता है, जहाँ पे आँच जल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि नीचे से जलने का चांस है, ऊपर से ढंग से पकता नहीं है। फिर आप बार बार कुकर खोल के देखते हैं कि अब वो पक्का है कि नहीं। फिर आपको फ्रिज भी वैसा चाहिए केक के लिए, घर का फ्रिज, नॉर्मल फ्रिज नहीं, मतलब क्योंकि उसमें आपका फ्रॉस्ट होता है तो वो केक को थोड़ा मॉइस्ट कर देता है उसका क्रीम को, तो ट्रैवल
1: अच्छा
0: करते वक्त केक टूटने का चांसेस बहुत रहता है। तो फिर आपके पास हैंड ब्लेंडर, स्टैंड मिक्सर और इस तरीके के इक्विपमेंट्स होने ज़रूरी है अगर आपको बेकरी मतलब अगर थोड़ा प्रॉपर करना है तो।
1: आमतौर पर मान के चलिए एक आप केक बना रही है तो हमारे श्रोताओं को बताओ कि क्या क्या सामग्री उसमें लगेगा बनाने के लिए
0: तो पहले तो
1: उसका?
0: मतलब आपका जो स्पॉन्ज है वही मैदा, बेकिंग
1: हाँ
0: पाउडर, बेकिंग
1: जी,
0: सोडा, ये
1: ठीक
0: सब
1: है।
0: हो जाता है। फिर विप क्रीम हो गया, आपको अगर चॉकलेट केक बनाना है तो आपको गनाश बनाना होता है, जो आपका क्रीम और चॉकलेट को गर्म करके बनाया जाता है।
1: जी
0: वैसे ही जैसे जैसे फ्लेवर है, ब्लूबेरी है तो ब्लूबेरी कंपोट आता है, चॉकलेट का बता दिया मैंने, फिर आपका वनीला में तो नॉर्मल विप क्रीम और
1: जी
0: स्पॉन्ज का
1: बिल्कुल।
0: केक हो गया, तो ऐसे आपका वेरिएशंस होता है इसमें।
1: और आजकल देखते हैं कि बहुत से घर में महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं खासतौर से, नेट में यूट्यूब के माध्यम से निकाल लेती केक कैसे बनाए और उससे भी देख देख के बने ठीक ठाक खाने लायक वो बना ही लेती हैं, ये भी एक।
0: ये है मतलब YouTube पे है बहुत सारे वीडियोस, बट जो एक बेसिक होता है वो
1: हाँ,
0: आपको एक टीचर ही सिखा
1: एक
0: सकता
1: आपने तो सीधे स्वतः ही शुरुआत किया इसका
0: है एक्सपीरियंस से। शुरू के
1: एक्सपीरियंस?
0: केक्स बहुत मेरे वैसे ही थे कि हाँ घर वाले केक्स है, तो धीरे धीरे धीरे करते करते फिर आपका एक्सपीरियंस भी होता है, आपका हाथ भी बैठता है, आपको समझ आता है कि आपको कैसे क्रीम को हैंडल करना है, कैसे स्पॉन्ज को हैंडल करना है।
1: सृष्टि जी, आमतौर पे हमारे युवा जो सुन रहे हैं और ये व्यवसाय काफी बेहतर है, घर से कहीं दुकान भी आप नहीं ले रहे हैं, घर से ही इसे अब किया जा सकता है, तो आमतौर पर उन्हें कहीं प्रशिक्षण लेना चाहिए इसका? तो आसपास कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जिसके बारे में आपको जानकारी हो?
0: हाँ बट अब हमको लगता है कि लोगों को कोर्सेस करना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं है कि हाँ विप क्रीम फेटा, आपने स्पॉन्ज बनाया और केक बनाया, आपको साइंस पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं और क्या मतलब आप मार्केट में क्या निकाल रहे हैं, अगर आप कौन सा मैदा यूज़ कर रहे हो, क्या मैदा, मैदा में भी बहुत वेरिएशंस होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: चॉकलेट में भी
1: बिल्कुल।
0: बहुत वेरिएशन होता है,
1: हाँ
0: आपको नॉलेज होना उसका ज़रूरी है। कोर्स करना चाहिए आई गेस सबको, अगर उनको आइडिया होना चाहिए। आप
1: अच्छा, अभी अभी अभी तक आपने जितने भी सामान ओवन वगैरह जो आपने कहा ये सारे लेकर के, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी की है अभी तक? आपने कितना पैसा लगाया हुआ है
0: हाँ
1: अभी
0: अप्रोक्स
1: तक,
0: 80 एक तक गए।
1: है ना, एक तक कर लिया। अभी बताइए कि कुल मिला जुला कर महीने में आपकी इनकम कितनी आ जाती है?
0: ये डिपेंड करता है, क्योंकि
1: हाँ
0: अभी जैसे सीजन ऑफ है तो वो आपका डिपेंड करता है कि अभी कितना जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि
1: हाँ
0: इतना ही जाना है।
1: लेकिन फिर भी एक मिनिमम मिनिमम
0: कभी
1: मैक्सिमम
0: काउंट नहीं करा मैंने
1: फिर भी हमारे श्रोताओं को बताया कि अनुमानता आप अभी कितना कमा लेती?
0: अभी अगर ऑफ सीजन है तो फिर आपका 25 हो गया, या फिर आपका 50 चला गया, 60 चला गया सीजन के हिसाब से।
1: अच्छा, सीजन के हिसाब से, ऑफ सीजन मतलब 15-20 हज़ार रुपये में कमी नहीं है, उतना आपको आ जाता है ना? अभी बताइए मिनिमम केक आप कितने का, मतलब आपके यहाँ कितना से शुरू होता है, श्रोता अगर सुन रहे हो तो?
0: हम लोग का क्वालिटी
1: हाँ
0: मतलब हम लोग क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते
1: 1 पाउंड
0: हैं,
1: का कितना कीमत रखते हैं?
0: 350 से शुरू है
1: अच्छा,
0: और 1100 तक गए।
1: तो इस एरिया, ये तो अच्छे एरिया में आप हैं, तो यहाँ पर कितने का ऑर्डर आपको मिलता है, कितना बड़ा केक का?
0: आ जाता है आपका एंगेजमेंट केक आ गया
1: हाँ
0: कभी
1: इंगेजमेंट में तो 1000 से कम का मिलेगा ना, है ना? अब बाकी बर्थडे केक है तो शॉर्टकट में गार्जियन चाहते हैं कि आजकल निकालना।

0: तो वही 300 साढ़े 300 मैक्सिमम।
1: मतलब आप जैसे हम लोग केजीज में डील करते हैं, हाफ के जी, 1 kg, हम लोग 1 pound 2 pound नहीं डील करते क्योंकि हम लोग का केक बेसिकली थोड़ा बड़ा होता है साइज में।
0: सही है।
1: और मतलब वो डिपेंड करता है कि कस्टमर के यहाँ कितने लोग आने वाले हैं, उनको कितना बड़ा केक चाहिए, उस हिसाब से वो हमको जैसे अगर बताएंगे कि हाँ 10 लोग आएंगे तो हम उनको बोलेंगे कि हाँ आपका 1 pound में हो जाएगा या 2 pound में हो जाएगा।
0: अच्छा, तो मतलब इस व्यवसाय से आप खुश हैं और आगे अभी पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं?
1: अभी तो फिलहाल व्यवसाय से ही खुश
0: तो
1: हूँ।
0: चलिए ठीक है, अपने घर में रह करके और अपने गांव घर में रह के, हजारीबाग में रह करके आप तो इतना अच्छा व्यवसाय कर रही हैं और लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है, आप भी 4 पैसे कमा रही हैं और लोगों के लिए एक आइकॉन हैं आप, लोग काफ़ी आपको पसंद भी करते हैं, चाहते भी, आपके फॉलोअर्स भी हैं, तो शुभकामनाओं के साथ। चलते चलते एक बात, जवाब कि नए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें आप संदेश देना चाहेंगे, अगर बेकरी व्यवसाय के क्षेत्र में वो आना चाहते हैं, खासतौर से केक बनाना चाहती हैं या चाहते हैं कोई भी हमारे श्रोता है, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका, कहाँ से शुरुआत करनी होगी?
1: देखिए, बेकरी बहुत फैसिनेटिंग लगता है दूर से देखने में कि हाँ कितना सुंदर है, कितना हैपनिंग है, बट इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है।
0: कंपटीशन है, मेहनत भी है,
1: अब जहाँ
0: प्लस टेस्टी भी आपका होना चाहिए।
1: हाँ, आप अब किसी कस्टमर को चाहिए कि नहीं हमको बस सस्ते में 150 रुपये का केक चाहिए, ठीक है, तो वो आपके पास नहीं आएंगे, बट आपको उनको बिलीव कराना है कि नहीं आप क्वालिटी बेच रहे हैं इसीलिए हम 300 रुपये में ये केक निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वालिटी, हमारा टेस्ट है। तो आपको वो चीज़ भी, मतलब ये बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिशन है अपने आप में ही, कस्टमर को कन्वेंस करना कि आप उनको क्या सर्व कर रहे हैं। और अभी मतलब जो बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ के या बाहर से लोग रहे हैं या बाहर जाते हैं तो उनको आइडिया होता है, जो यहाँ पे है नहीं रहे, मतलब यहीं पे रहे हमेशा से रहे, तो उनके लिए थोड़ा सा है कि उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि आप क्या निकाल रहे हैं, या तो आप क्वालिटी निकाल सकते हैं या तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं, दोनों हमेशा अपोजिट ही रहेगा। अगर आप क्वांटिटी निकालना है आपको ज़्यादा सस्ते में, तो आप क्वालिटी कभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि चीज़ों के दाम अब धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, कुछ का किसी चीज़ का भी दाम नहीं गिर रहा। तो आपको मार्केट में मेंटेन करने के लिए आपको पहले मार्केट रिसर्च करना होगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्या लोग देखता है और क्या लोग ढूंढ रहा है। तो आपको हमेशा मतलब ट्रेंड के साथ भी चलते रहना पड़ता है कि कभी पिनाटा आया, कभी सरप्राइज बॉक्स, कभी फुलमेड केक्स आया, तो आपको उस हिसाब से भी चलना पड़ता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि कमल जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और श्रोताओं के लिए अच्छी जानकारी दी कि एक व्यवसाय के रूप में इसे किया जा सकता है और थोड़ी सी तन्मयता के साथ में और तैयारी के साथ में, और अगर कहीं से सीख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी बातचीत से ही पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सृष्टि कमल से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रही थी केक मेकिंग स्वरोजगार का बढ़िया विकल्प है, इस बारे में इनसे बातचीत कर रहे थे अशोक कुमार। और आइए चलते चलते सुनते चले एक गाना।

इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम मेहनत कर श्री माधवी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेहनतकश, आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है आपकी कसम से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है।

आपकी कसम, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म आराधना में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत एस टी बर्मन का है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आए दिन बहार के, सुनते हैं इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में।

इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे राज्य केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया और खेतीबाड़ी, मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: वेक्टर जनित रोग मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
3: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जाँच और उपचार कराएं।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
5: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से की वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने की अपील। झारखंड में एमएमडीआर संशोधन को लेकर भाजपा और झामुमो आमने सामने। दोनों दलों ने एक दूसरे पर राज्य के खनिज संसाधनों और हितों को लेकर उठाए सवाल। रांची में आदिवासी एकता महाजुटान में शामिल हुए राज्य भर से आए लोग। अधिकार और सम्मान के मुद्दे उठे। परिसीमन में आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने की मांग। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने पर दिया जोर। कहा, गांवों के विकास में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है सरकार की प्राथमिकता। और राज्य में 2 सितंबर तक बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना। रांची समेत 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आम लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का भी आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: प्रदेश भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा ने कहा कि खान और खनिज विकास और विनियमन एमएमडीआर संशोधन से खनन व्यवस्था स्पष्ट और मजबूत होगी तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा ने झामुमो पर अवैध खनन को लेकर राजनीति करने और अपने कार्यकाल में खनिज संसाधनों के दोहन का आरोप लगाया। वहीं झामुमो ने कहा कि झारखंड के जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार से समझौता नहीं किया जाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आयोजित आदिवासी एकता महाजुटान में आदिवासी समाज के अधिकार, पहचान, सम्मान और जल जंगल जमीन के मुद्दे उठाए गए। कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और परिसीमन को लेकर सरकार की नीतियां और वक्ताओं ने चिंता जताई। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि परिसीमन में आदिवासी समाज के हित और प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहने चाहिए।
2: अगर जनसंख्या को आधार मान करके हमारा संख्या को घटाने का काम किया तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ने के लिए तैयार हैं मित्रों, लड़ने के लिए तैयार हैं। आप परिसीमन के नाम पर हमारा राजनीतिक अधिकार को घटाकर पांचवी क्षेत्र को अब संविधान में जो अधिकार मिला है उसको आप खमा करना चाहते हो, ये ऐसा होने नहीं देंगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की मजार पर आयोजित 219वें उर्स में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मजार पर चादर पोशी की। उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नेपाल में आई भीषण त्रासदी में लापता रांची निवासी राम प्रसाद घोष के परिजनों से आज मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों से बात कर लापता की खोजबीन और सकुशल बरामदगी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भी अपने माध्यमों से लापता की खोज करने का प्रयास

0: प्रयास कर रही है।
1: उनके एक भाई कल काठमांडू गए हैं, खुद अभी तक कोई पता नहीं लगा है। हम भी एम्बेसी के थ्रू अन्य माध्यमों से पता कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। सब ईश्वर से प्रे कर सकते हैं कि सकुशल लौटें, क्योंकि वो एक साल से काम करने वहां नेपाल गए थे।
0: राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी को प्रभावी विकास की आधारशिला बताया है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से योजनाएं अधिक प्रभावी बनती हैं और विकास का लाभ जन जन तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं की सक्रिय भूमिका से गांव में विकास कार्य अधिक पारदर्शी और मजबूत होते हैं। मंत्री ने कहा कि हर नागरिक की आवाज को विकास प्रक्रिया से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाने का जोर दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन वायरल हो रहे उस ऋण स्वीकृति पत्र का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय ने नागरिकों से ऐसे दावों के झांसे में न आने को कहा है। रांची में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद पलामू जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत पलामू स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 10 बेड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। जामताड़ा जिले के कर्माटार थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक वसीम रजा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन और 10 फर्जी सिम कार्ड समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं।
2: इनके पास से कुल 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इनका एमओ ये था कि योनो ऐप के नाम पे लोगों को फोन करते थे, फिर उनसे स्क्रीन शेयर करवा के जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है लाइक पासवर्ड वगैरह, ओटीपी वगैरह उनसे लेते थे और ठगी करते थे।
0: राज्य में 2 सितंबर तक कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा राज्य के कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है।

एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से की वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने की अपील। झारखंड में एमएमडीआर संशोधन को लेकर भाजपा और झामुमो आमने सामने। दोनों दलों ने एक दूसरे पर राज्य के खनिज संसाधनों और हितों को लेकर उठाए सवाल। रांची में आदिवासी एकता महाजुटान में शामिल हुए राज्य भर से आए लोग। अधिकार और सम्मान के मुद्दे उठे। परिसीमन में आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने की मांग। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने पर दिया जोर। कहा, गांव के विकास में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है सरकार की प्राथमिकता। और राज्य में 2 सितंबर तक बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना। रांची समेत 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी से प्रसारित समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: साहिबगंज जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियरा और तटवर्ती निचले इलाकों में पानी घुस गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी किया है। जिले के संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है। बाढ़ पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिविरों में पहुंचाने के लिए मोटर जनित नाव एवं पशुओं के लिए चारा इत्यादि का प्रबंध किया गया है। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जहां पर किसी भी आपात स्थिति की सूचना दिया जा सकता है। जिला उपायुक्त दीपक दुबे ने बताया,
2: सप्लाईज के, टेंट्स के इत्यादि सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। टेंडर ऑलरेडी किया जा चुका है, संवेदक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी के लिए जिला प्रशासन प्रिपेयर्ड है। गोताखोर हमारे जो लोकल गोताखोर हैं वो ऑलरेडी ट्रेन हैं और उनको हम डेप्यूट करेंगे। इनमें हमारे दो गोताखोर ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, उनकी भी हमको सेवा वापस तुरंत मिल जाएगी। तो गोताखोर का हम लोग भी पॉइंट चिन्हित करके डिप्लॉयमेंट कर देंगे। अभी हमने जायजा भी लिया कि हमारा एम्बुलेंस जो है, वाटर एम्बुलेंस जो है, जिसमें कुछ खराबी आ गई थी, वो भी नाव ठीक करा लिया गया है, रेडी है।
1: गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर से जहां निचले इलाकों में पानी भर गया है, वहीं दूसरी ओर रामपुर, करगिल दियरा, लाल बथानी और महाराजपुर दियरा में भी कटाव जारी है, जहां के लगभग 3000 लोग इससे प्रभावित हैं। साहिबगंज सदर के अनुमंडल पदाधिकारी इन इलाकों का दौरा कर लोगों की वस्तु स्थिति से अवगत हुए। बोट एम्बुलेंस, एंटी वेनम, आवश्यक दवाइयों तथा राशन की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए प्रशासन द्वारा बनाए गए शिविरों में शरण लेने की अपील किया।
3: सभी से हम लोग अनुरोध किए कि वो लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लोग जिला

0: प्रशासन की ओर से उनके रहने का खाने का सब व्यवस्था किया हुआ है, तो किसी प्रकार की अगर उन्हें परेशानी होगी तो उसके लिए बताया गया कि आप लोग जिला प्रशासन से संपर्क करें, वहाँ के थाना प्रभारी से, सीओ से, एसडीओ से, सभी संपर्क करें और जो कुछ भी समस्या उनके बारे में बताएं, साथ ही स्वास्थ्य के बारे में भी उन्हें बताया गया।
1: बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए संबंधित पंचायतों के सरकारी भवनों में अस्थायी शिविरों में आश्रय बनाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरंतर निगरानी किया जा रहा है, साथ ही लोगों के खाने पीना, बच्चों के लिए पाउडर दूध, चूड़ा, गुड़, बिस्कुट इत्यादि सूखे राशन की व्यवस्था हुई है। टीम गठित कर प्रभावित हुए लोगों के स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित किया जा रहा है।
2: गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा भ्रमण किया गया और प्रभावित इलाके का दौरा के पश्चात पता चला कि कुछ इलाका जो मकमलपुर लाल बथानी में कटाव हो रहा है, वहाँ के दो चार घर परिवार जल से प्रभावित हो गए जिनका कटाव के तहत बह गया है, तो उन लोगों को वहाँ के स्थानीय पंचायत में आश्रय कराया गया है और वहाँ के लोगों के रहने के लिए और खाने पीने का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और अन्य स्वास्थ्य के लिए भी मेडिकल डिपार्टमेंट के विभाग से बातचीत हो गई वहाँ भी।
1: आज लघु उद्योग दिवस है। साहिबगंज जिले में भी रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित लोग अपना लघु उद्योग स्थापित कर स्वावलंबी बन रहे हैं। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
3: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।
4: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

अभी आप सुन रहे थे हेमलता और शैलेंद्र सिंह को, फिल्म का नाम था अखियों की झरोखों से। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम थाईलैंड मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से सीधा प्रसारण।

0: थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, और जैसा कि कप्तान ने कहा, नारुमोन चाइवाय ने कहा कि 120 पर रोकना चाहेंगे। मतलब T20 का महासंग्राम है, कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का ये खेल है। लेकिन ऐसे में सबसे पहले राकेश जी से पूछना चाहूंगा मैं, अगर स्ट्रक्चर की बात करें दोनों टीमों के, थाईलैंड वर्सेस इंडिया, 4 साल बाद आई थिंक आमने सामने हो रही है टीमें, और T20 में इतिहास गवा रहा है कि डोमिनेट करता हुआ भारत नजर आया।
1: देखिए बिल्कुल सही बात है, भारत की टीम कोई भी थाईलैंड के साथ मुकाबले में दिखेगा तो ये मानेगा कि भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसके अंदर किसी भी टीम को आप हल्का करके नहीं आ सकते हैं, और थाईलैंड की टीम को एकदम मैच से पहले ही, इस मुकाबले से पहले एक झटका लगा है कि उनकी कप्तान जो है वो चोटिल होने के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रही है। जो स्टैंडिंग कैप्टन है थिगचापा पोतेगोंग, वो एक बड़ी मतलब अच्छी क्रिकेटर हैं, उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और जो उनका क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें बहुत सक्सेसफुल रही थी, 16 विकेट उन्होंने लिए थे, तो आज कप्तानी का भार शायद उनको दिया गया क्योंकि टॉस करने वो आई थी। तो पहला झटका तो थाईलैंड को लग गया है, लेकिन अब टॉस जीत के उन्होंने जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास एक मौका रहेगा। बल्लेबाजी हमारी थोड़ी डावाडोल चली रही है T20 के अंदर, तो देखते हैं कि किस तरीके का उनका फायदा उठाते हैं, क्योंकि ऐसी टीम जिसके साथ आप ज्यादा खेलते नहीं हैं, आपको बरसों बरस हो जाते हैं उनके साथ खेले हुए, उनके खिलाफ खेलना थोड़ा सा एक वो रहता है कि कैसे बॉलर होंगे उनके, किस तरह का वो करते हैं, तो देखते हैं कैसा करते हैं। उम्मीद है कि अच्छा करेंगे, बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, 170 तक तो रोकने की बात थाईलैंड की कप्तान ने कर ही दी है, तो मुझे लग रहा है कि आज मौका है, 200 के ऊपर जाना चाहिए।
2: बिल्कुल, और इसके अलावा प्रतिका रावल आज T20 आईज में अपना डेब्यू करने वाली हैं, ODIs में शानदार प्रदर्शन रहा है उनका, नंबर 3 पर लगता है कि बल्लेबाजी करने आएंगी या फिर
3: देखिए मुझे लगता है सिलेक्टर्स ने कोई ना कोई भरोसा दिखाया होगा उन पर, और इसीलिए उनका सिलेक्शन जो है इस एशिया कप के लिए किया है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की प्रतिभा वो रखती है, हमने वनडे वर्ल्ड कप में भी देखा, उनका प्रदर्शन देखा कि वो बहुत अच्छे प्रदर्शन से निकल रहे थे, लेकिन इंजरी के चलते उनको सेमीफाइनल फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला। रिसेंटली भी जब इंग्लैंड में थे वहां पे भी उनको इंजरी हुई, लेकिन अब जिस तरीके से उनको एशिया कप के लिए बुलाया गया, स्पेशली T20 के लिए, कहा जाता है कि काफी टाइम हुआ है उनको इस T20 फॉर्मेट में खेले हुए, और पिछला WPL भी उनको इंजरी की वजह से मिस हुआ था, तो मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ये भरोसा देखना चाहते हैं कि नंबर 3 पे अगर जमीमा इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है, उनकी जगह वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अगर टेक्निकली बोले बहुत साउंड क्रिकेटर है प्रतिका रावल, और हम सभी ये देखना चाहेंगे कि एक प्रतिभाशाली जो क्रिकेटर है वो हर किसी फॉर्मेट के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो अब प्रतिका रावल की बारी है कि आज उनको ये बेहतर मौका मिलने वाला है, आज पहली बार वो T20 में आ रही हैं, किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, और भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है ये एशिया कप, क्योंकि लास्ट कुछ समय से जो T20 का जो सफर रहा है भारतीय टीम का, वो मैं ये कहूंगी कि 50-50 रहा है, तो यहाँ पर हरमनप्रीत की जो फौज है वो ये कोशिश जरूर करेगी कि एशिया कप से वो एक कॉन्फिडेंस लेके जाएं, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हम फॉर्मेट्स खेल रहे हैं T20s में, वहाँ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं।
0: और सबसे बड़ी बात है, अगर दुबई की बात करें तो स्पिनर्स को कितना सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, बिकॉज उनका एक्शन भी काफी कमाल का रहना चाहिए आज की शाम।
1: देखिए काफी सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है, कुछ जो कोच हैं अमोल मजुमदार, उन्होंने बोला भी है कल कि स्पिनर्स के लिए मदद दिखाई दे रही है, तो इसीलिए दोनों टीमों में जो है स्पिनर्स की भरमार है वैसे भी, क्योंकि दुबई में टूर्नामेंट हो रहा है, तो और दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, लेग स्पिनर्स भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं, ऑफ स्पिनर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं हमारे पास, लेकिन यह है कि बात के हमारी टीम क्लिक नहीं कर रही। एक अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी लगी BCCI की, कि इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए एक 15 दिन का कैंप लगाया गया, उस कैंप में जो हमारी वीकनेसेस थी जो वर्ल्ड कप के अंदर भी नजर आई कि जिसमें हमने कैचेस बहुत ड्रॉप किए, फील्डिंग हमारी खराब थी, उस पर इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया गया, छोटी छोटी चीजों को पकड़ने की कोशिश की गई है। खेल हम भले ही एशिया कप में रहे हैं, लेकिन जो हमारी निगाहें हैं ना वो 2 साल आगे तक के लिए गई हुई हैं, क्योंकि T20 के बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने हैं, एशिया कप होगा, उसके बाद एशियन गेम्स होने हैं सितंबर में, उसमें T20 फॉर्मेट होना है, फिर T20 के चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2027 की शुरुआत में, उसके बाद ओलंपिक्स होना है 2028 में लॉस एंजलिस का, वो भी T20 होगा, और उसके बाद भी T20 का वर्ल्ड कप भी होना है 2028 में, तो निगाहें हमारी आगे के टूर्नामेंट में है। प्रतिका रावल को टीम में रखना तो वो थोड़ी सी जेमिमा रॉड्रिक्स की वजह से, लेकिन खिलाड़ियों को आजमाया जाएगा, मौके मिलेंगे, हमने वर्ल्ड कप में भी

0: देखा कि हमारे 16 खिलाड़ियों को आजमाया गया था, तो यहाँ भी मैक्सिमम खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे। और अगर थाईलैंड के खिलाफ आप किसी नई खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे तो फिर किस टीम के खिलाफ देंगे? तो एक अच्छा डिसीजन, खिलाड़ियों को यहाँ मौके दिए जाएंगे। इस टूर्नामेंट को जीतना, हम डोमिनेट किया हमने एशिया कप में, चाहे वो 50 ओवर के फॉर्मेट से 2004 में शुरू हुआ, 2012 में जब वो T20 फॉर्मेट आया तभी थाईलैंड की टीम ने डेब्यू किया था। तो एक ऐसी चीजें हैं, T20 फॉर्मेट में आने के बाद हम इसमें हारे भी हैं 2 बार, लेकिन एक बड़ी बात है, चाहे 50 ओवर फॉर्मेट रहा चाहे T20 का, हमने हर फाइनल खेला
1: जी।
0: ये एक बड़ी हमारे पास बात है, हमारा डोमिनेंस है, उसको हमारे खिलाड़ी भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो आपके साथ जो आपकी लेगेसी चलती है उसको आगे बढ़ा के रखना। और इस समय सबसे अनुभवी कप्तान हरमनप्रीत कौर हमारे पास हैं, उन्होंने 25 जो खेले हैं मैचेस उसमें से 23 में उन्होंने कप्तानी की है, एक अनुभवी कप्तान। और थाईलैंड के पास एकदम कम अनुभवी, जिसको कप्तानी का अनुभव नहीं होगा उतना मुझे लगता है, तो वो देखना होगा कि दोनों कप्तान किस तरीके से इस मैच को लेते हैं
1: जी। और 2024 में श्रीलंका से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, T20 का ही फॉर्मेट था एशिया कप का, उस बार भी हम नंबर 3 का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। समहाउ भारत की तरफ से उस पोजीशन पे काफी एक्सपेरिमेंटेशन होते रहा है इस फॉर्मेट में, खास करके जब कोई बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो जाता है तब।
2: मुझे लगता है कि ये एक सही टाइम भी बोलूंगी कि एक्सपेरिमेंट आपको करना है, क्योंकि आप अभी वर्ल्ड कप से निकल के आए हैं, आपको अपनी टीम की खामियां भी पता है, आपको ये भी पता है कि आपको कहाँ काम करना है। और मुझे लगता है कि प्रतिका रावल जिस तरीके के सिलेक्शन किया गया है, उनको ये चांस दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन इन फ्यूचर आती है, कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या किसी वजह से अनअवेलेबल उस टाइम पर है, तो आप क्या उस टाइम पे प्लेयर्स को रखते हैं वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये एशिया कप बड़ा क्रूशल होने वाला है भारतीय टीम की, अगर सोच के हिसाब से मैं बात करूं। और आई होप मैनेजमेंट कोचिज सब इस चीज को देख रहे हैं कि यहां से आगे का सफर आप किस तरीके से तय कर सकते हैं। भारतीय टीम में बहुत ऐसे प्लेयर्स की खोज हुई है पिछले कुछ टाइम से, और उन सभी को हम जानते भी हैं, बहुत अच्छा वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये एशिया कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कुछ प्लेयर्स के लिए कि यहाँ से वो अपनी जर्नी को और लंबा कर सकते हैं भारतीय टीम में।
3: देखिए, सबसे बड़ी बात है अगर स्ट्रक्चर की बात करें, खासकर वर्ल्ड कप के बाद जो है और स्टेट में अगर हम देखें तो फिर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है कि विमेंस बढ़ चढ़ के आई है। वहीं अगर थाईलैंड की बात करें तो शुरुआत आगाज अच्छा हुआ है, लेकिन हाँ अगर कंपैरिजन इस चीज में करें कि वहां पर कितना डेवलप्ड है क्रिकेट और इंडिया उस मामले में भी आगे है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कंपैरिजन जो हम बातें करते आए हैं शुरुआती दौर में, वो क्वेश्चन मार्क क्या आज लगेगा आज के मुकाबले पे कि थाईलैंड शुरुआत अच्छी हुई, ये भी अहम होगा मुकाबले।
0: देखिए, दोनों का कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, हिंदुस्तान में जितनी क्रिकेट होती है उतनी तो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के अंदर नहीं होती, चाहे वो मेंस क्रिकेट की बात करें चाहे विमेंस क्रिकेट की बात करें। और विमेंस क्रिकेट को जो इतना बढ़ावा दिया गया है कि तमाम स्टेटों में अब तो T20 की जो लीग्स भी हो रही हैं और उनके जो टूर्नामेंट्स हैं नेशनल लेवल के, वो भी बड़े मतलब ध्यान से हो रहे हैं, पहले की तरह नहीं हो रहे। मैंने तो एक जमाना जो 90s का देखा, जब डायना डुलजी हिंदुस्तान की कप्तान होती थी और किस तरह से विमेन क्रिकेट चलता था, और आज जो मैं देखता हूं जिस तरह से शॉर्ट्स लड़कियां खेल रही हैं, तो मुझे तो भरोसा नहीं होता कि किस तरीके से 1-2-3 करके स्टेप आउट करके सिक्स मारना लॉन्ग ऑफ के ऊपर, तो बहुत मतलब गजब का लगता है वो शॉट्स, उस तरीके से उनका खेलना, उनके अच्छा स्किलफुल भी हैं अच्छे, जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग में हम देख रहे हैं कभी कल ही एक लड़की ने पूनिया ने सेंचुरी बनाई है, पहली बार सीजन में सेंचुरी भी बनी। और एक लड़की रावल, उसने मेडन ओवर भी फेंका T20 के अंदर, मेडन ओवर फेंकना जबकि एक लड़की इतनी आपकी पिटाई कर रही हो कि वो सेंचुरी बना रही हो उसके खिलाफ आप मगर मेडन ओवर फेंकते हैं, तो ये बड़ी चीज है। दोनों तरह की हमारे जो खिलाड़ियों की प्रतिभा वो निखर रही है, तो बड़ा जबरदस्त लगता है ऐसे पुल शॉट्स खेलना उनके, बहुत जबरदस्त। और फास्ट बॉलर्स को आगे निकल के स्टेप आउट करके मारना, वो ऐसा तो मैंने विमेंस क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा। हमारी बड़ी ग्रेट खिलाड़ी पहले भी हुई हैं, संध्या अग्रवाल जैसी बल्लेबाज हुई हैं, बहुत जबरदस्त वो खेलती थी, सब कुछ था, लेकिन जिस तरह की अब बल्लेबाजी हो रही है तो बहुत अटैकिंग हो रही है। लड़के और लड़कियों के मैच में थोड़ा सा अंतर नजर आता है ताकत का, लेकिन जो जिगरा है ना वो लड़कियों का बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है, जो पहले नहीं दिखाई देता था। और वही चीज आप देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी, जब हम हरमनप्रीत को देखते थे कुछ साल पहले भी कि जिस तरीके के वो शॉट्स मारती थी, जिस तरीके के उनके पुल शॉट्स होते थे, बहुत गजब के होते थे। आज भी वो 37 साल की उम्र में हिंदुस्तान की कप्तानी कर रही है, और मौका मिलने पे T20 इसमें तो एक प्लेयर आपको बदल के रख देता है। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा, मुझे बैटर के साथ उतनी दिक्कत नहीं, कि हमारे जो गेंदबाज हैं वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि जब आपको अनुभवी स्पिनर्स आपके पास मौजूद हैं, फास्ट बॉलर

0: आपके पास बहुत है, वैरायटी बहुत है हमारी टीम के अंदर, और कोच को थोड़ी 11 चुनने में दिक्कत भी आती होगी कि भाई किसको रखें बाहर किसको अंदर करें टीम के अंदर, लेकिन जब आपके पास इतने वेरिएशन वाले खिलाड़ी हैं, अब तो आपके पास लेग स्पिनर भी एक आ गई है टीम के अंदर, तो ये काफी चीजें हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे हैं आपके पास, स्पिनर्स अच्छे हैं, वो फील्डिंग वाला जो डिपार्टमेंट है मुझे लग रहा है उसकी मजबूती वो दिखाई देगी पहले मैच से ही कि भाई हमने जो कैंप लगाया उसमें किस तरह की तैयारी की।
1: देखिए पावर हिटिंग की आपने बात की और एक पावर हिटर हमारे साथ भी बैठी हुई है लतिका कुमारी, उनसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कप्तान ने कहा है, भारतीय कप्तान ने कहा है कि ये कमबैक करने का सही समय, यहां पर वो गैप जो हम देखते हैं ना कि पिछले 3 मैचेस हुए हैं थाईलैंड के अगेंस्ट और जो जीत का फर्क है वो 74-66 इतना ज्यादा फर्क है, वो आज भी देखने को मिलेगा?
2: देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल देखने को मिलेगा, और जो स्टैंडर्ड हाई किया है भारतीय टीम ने पिछले कुछ सालों में वो हमने देखा भी है, और सर ने भी बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा क्रिकेट आज के टाइम पे चल रहा है। अगर हम वुमेंस की बात करें, हर ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपकी लीग स्टार्ट हो चुकी है, और ये एक जगह है जहाँ पर आप पीछे से प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी मेन टीम जो है वहां पर अगर कभी भी कुछ, जैसे कि अभी जमीमा रॉड्रिक्स इंजर्ड हुई तो प्रतिका रावल वहां तैयार रही है, तो ये बैकअप आपके पास हमेशा रहता है, और इसकी वजह से क्या है हेल्दी कंपटीशन डोमेस्टिक सर्किट में चलता रहता है, और तो हमारे जो इंडिया प्लेयर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि आपको परफॉर्म करते रहना होगा, और T20 जैसा जो फॉर्मेट है वहां पर जिगरे की भी जरूरत है, ताकत की भी जरूरत है और स्ट्रेटजीज की भी जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एशिया कप, जहां से हम इन सब चीजें हैं जो हमें पिछले कुछ मैचेस में परेशान किया है उनको किस तरीके से ओवरकम करें, जो कैंप लगा है वहां किस तरीके की तैयारियां हैं वो आज के मैच में पता चलेगा, उनकी प्लानिंग्स उनके एग्जीक्यूशंस क्या करना चाहते हैं, गेंदबाजी जिस तरीके सर ने कहा कि अच्छे कॉम्बिनेशन है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा अगर पेस की बात करूं तो वहां थोड़ी तकलीफ नजर आती है, क्योंकि काफी लंबे समय से हमें कोई ऐसा इफेक्टिव गेंदबाज वहां नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से अच्छी शुरुआत कर पाए। T20 मैचेस में हमारे रन्स लीक्स होते हैं जब इनिंग की शुरुआत होती है, तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कंसर्न है भारतीय टीम के पास के किस तरीके से अटैक वो गेंदबाजी में देखते हैं, किनको अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिलने वाली है, तो वो सारी चीज रहेंगी। ये पूरा एशिया कप अगर मैं पर्सनली देखना चाहूंगी तो मैं गेंदबाजी पे ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि बल्लेबाजी मुझे लगता है हम सक्षम हैं किसी भी तरीके का स्कोर खड़ा करने के लिए या किसी भी स्कोर को हम चेज करने के लिए।
3: बिल्कुल, और इस बीच हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि अगर वो हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084 और 1085। इस बीच राकेश चर्चा चल रही थी पेस डिपार्टमेंट पर, और हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में तो खास करके केवल 5 विकेट निकाले पेसर्स ने, लगातार चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही थी उसमें, और जिस कारण भी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं देखने को मिली, सबसे कम थे 5 विकेट।
0: नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हमारा तेज बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा अनसेटल्ड लगता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये मैच, इस मैच से पता चलेगा आपको, क्योंकि जो कैंप लगाया गया, तैयारी की गई, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले ये परंपरा थी कि किसी बड़े टूर्नामेंट, बड़ी सीरीज से पहले तैयारी की जाती थी, तो तैयारी के साथ टीम यहाँ पर उतर रही है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो कमियां रही हैं तेज गेंदबाजी की भी उसके ऊपर ध्यान दिया गया होगा।
1: बिल्कुल, और प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे, खासकर ग्रुप ए की भी बात करेंगे, उस पर भी निगाहें काफी टिकी हुई हैं, बिकॉज आने वाले मुकाबले तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, और सबसे ज्यादा अगर निगाहें होंगी तो वो पूथा वांग पर होंगी जिन्होंने 10 मैचों में 20 विकेट लिए हैं, तो यस वो गेंदबाजी की धार क्या थाईलैंड की तरफ से देखने को मिलेगी लतिका मैम?
2: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से थाईलैंड ने पिछला मैच खेला है और वहां उनकी गेंदबाजी हुई है, उनके स्पिनर्स का जो दबदबा रहा है, सिर्फ एक ही मीडियम पेसर को उन्होंने अपनी टीम में रखा, अपनी गेंदबाजी में रखा, और बाकी के ऑफ स्पिनर भी, लेग स्पिनर भी, लेफ्ट आर्म सब वहां रहे और विकेट लेने ले पाए उस मैच में, तो थोड़ा सा ये चीज देखनी होगी कि हमारे बल्लेबाज, जो कि हम कहते हैं कि अगर भारतीय टीम होती है तो स्पिन अच्छा खेलते हैं, क्योंकि हमारे पास भी वो बेहतर स्पिन अटैक है, तो ये थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगी कि हमारे बल्लेबाज उन स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक छोर से पेसर अगर आ रहे हैं तो दूसरे छोर से आपको स्पिन अटैक जरूर मिलेगा।
3: और अटैक में विविधता बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रश्नों में भी विविधता के लिए हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं। तो पहले श्रोता

0: उन्होंने अभी कॉल किया, उनसे बात करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार सर
0: जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे विशेषज्ञों ने भी अभी एम्फसाइज किया, उन्होंने जोर दिया कि बल्लेबाज तो अच्छे हैं, गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा। और लतिका, खास करके हम पेस अटैक का यहां पर जिक्र कर रहे हैं, रेणुका सिंह ठाकुर जो कि जिन्होंने कमान संभाल रखी थी बहुत लंबे वक्त तक भारतीय गेंदबाजी की, वो फॉर्म में नहीं नजर आ रही, इंजरी कारण है, खास करके न्यू बॉल के साथ इफेक्टिवनेस सेम नहीं है।
2: देखिए, रेणुका की अगर हम बात करें, जब आई थिंक एक या दो साल पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ही इफेक्टिव थी, बहुत अच्छा स्विंग भी चल रहा था, लेकिन WPL के बीच में उन्हें थोड़ा बैक इंजरी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर भी रही थी। और उसके बाद जब वो कम बैक उन्होंने टीम में किया तो वो पेस हमें वहाँ पर नज़र नहीं आई, वो कहते ना कि वो धार नज़र नहीं आई, तो वहाँ से थोड़ा कंसर्न हुआ कि रन लीक ज़्यादा करते हैं, 8 या 9 एवरेज से वो जो है ओवर में रन्स दे रहे हैं, तो वहाँ एक कंसर्न हो जाता है। क्रांति गौड़, जिनसे बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छी गेंदबाज भी हैं वो, लेकिन वही बात कि आप वहां पर अगर हमारे मीडियम पेसर्स जितने भी देखें तो 8 से 9 रन जो पर ओवर है वो कहीं ना कहीं लीक होते हैं। और T20 के गेम में अगर शुरुआती ओवर्स में आप इस तरीके के रन्स दे रहे होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जो है आपकी टीम पे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कंसर्न, जो मैंने पहले भी कहा, ये एक कंसर्न देखते हैं कि कितना काम करके आई है भारतीय टीम। और हम चाहेंगे कि क्रांति गौड़, रेणुका सिंह है, ये किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करेंगे, और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से भारतीय टीम इन पर भरोसा दिखा रही है, मैनेजमेंट इन पर भरोसा दिखा रहे हैं, कोचिज, कप्तान, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम की नज़रों से।
3: इम्पोर्टेंस काफ़ी है इसकी, और हमारे कॉलर्स की इम्पोर्टेंस भी उतनी दुगनी हो जाती है, खासकर जब ऐसे मैचेस हों। तो एक कॉलर के साथ हम, हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? जी जी, आपका सवाल क्या है सर?
1: सर मेरे एक दो सवाल और कुछ सुझाव भी है। पहला तो सवाल ये भी बनेगा और सुझाव भी हो सकता है, मुझे सही से जानकारी नहीं है।
3: जी जी जी,
1: सर इसमें जो मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच वगैरह ये सब जो अवार्ड्स होते हैं वो उनका चयन क्या जेंट्स लोग करते हैं या महिलाएं करती हैं? अगर जेंट्स लोग करते हैं तो मेरा मानना सर बिल्कुल गलत है, सिर्फ महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार एक वर्ल्ड कप जो चल रहा था महिलाओं का, इसमें एक फैसला मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा था, प्लेयर उस समय
3: जी बिल्कुल। सर सवाल क्या है आपका?
1: दूसरा सवाल एक मेरा ये है कि जो सर इतने सब लीग चल रहे हैं IPL तो बेहतर ये होगा कि मेरा मन ICC में इसमें सोचना चाहिए, एक इंटरनेशनल क्रिकेट लीग करवाए, उसी में वो उसको इंटरनेशनल मान्यता भी दे दें, बाकी इधर उधर के लीग वगैरह से लफड़े ना हो, इससे क्रिकेट खराब हो रही है, मेरा मानना है।
3: जी बिल्कुल, तो राकेश जी ये कहना ये चाह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि वो प्रोत्साहन मिले महिलाओं को भी, और भी ज्यादा जो है उड़ान पर आए, लेकिन उड़ान के साथ कहते हैं ना कि देखना है उसकी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को। प्लेइंग 11 की तरफ थोड़ी सी नजर हम करेंगे, ज्यादा बदलाव इंडियन टीम में तो नहीं है, लेकिन हाँ थाईलैंड निगाहें जरूर होंगी। राकेश जी
4: नहीं बिल्कुल, देखिए जो भी टीमें यहाँ 11 आप बनाते हैं तो पिच के मिजाज को देखकर बताते हैं, और सबको ये लग रहा है कि भाई पिच में जो है स्पिनर्स के लिए मदद रहेगी, तो इसीलिए दोनों टीमों ने स्पिनर पैक्ड अपनी 11 को रखा है यहाँ पर। और लेकिन जिस तरह से थाईलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है तो मुझे लगता है कि वो पिच के अंदर जो शुरुआती कुछ मदद होती है तेज गेंदबाजों के लिए उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहेंगे।
3: राइट, और 120 का हम जिक्र कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अनिश्चितताओं का ये खेल है और अनिश्चितताओं की तब्दीली निश्चितताओं में होती है। निश्चित रूप से 120 लग रहा है आपको, थोड़ा सा प्रेडिक्शन सबसे लेना चाहूंगा। लतिका मैम,
2: मुझे लगता है कि पिछला मैच जिस तरीके से इन लोगों ने खेला है, विकेट्स लिए हैं स्पिनर्स ने, तो उसी की वजह से ये टॉस पे इन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया है, क्योंकि इनको लगता है कि हम गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं, दूसरी टीम को हम कम स्कोर पे रोक पाने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां से अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की डेप्थ देखी जाए तो 120 से तो ऊपर हो गई होगा।
0: ऑब्वियसली एम्बिशन दिखाती वहां पे थाईलैंड की स्टैंड इन कप्तान, और जो भारतीय 11 है यहाँ पर

0: वो शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना ओपन करते हुए, प्रतिका रावल डेब्यू करते हुए, हरमनप्रीत कौर कप्तानी की कमान संभालते हुए भारतीय फुलमली को वापस से मौका मिला है। 11 में ऋचा घोष विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा स्पिन ऑलराउंडर, प्रेमा रावत हैं लेग स्पिन करते हुए नजर आएंगी वो, एन श्री चरणी, क्रांति गौड और नंदिनी शर्मा। लेकिन क्योंकि भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है राकेश, तो वापस से बल्लेबाजी पर यहां पर अगर हम जोर दें और फिनिशर्स के तौर पर जिस लेवल का एवोल्यूशन भारत एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा देखने को नहीं मिला है, काफी दारमदार ऋचा घोष पर ही आ जाता है।
1: नहीं बिल्कुल रहेगा, फुलमानी के ऊपर भी है, वो भी बिग हिटर हैं। और यहाँ पर देखना सबसे बड़ी चीज है कि आपको न केवल ओपन अच्छा करना है बल्कि जो आपके मिडिल ऑर्डर हैं या फिनिशर है, लास्ट ओवर्स में किस तरह से आप लास्ट के 5 ओवर्स में किस तरह से बैटिंग करते हैं, नए बैटर आपके ना आए उस समय, अगर पहले के लोग लंबी इनिंग खेल रहे हैं, जो अच्छा खेले उसको लंबा टिकना चाहिए यहाँ पर, तो उससे आप बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद मिलती है।
0: जी बिल्कुल, और हरमनप्रीत के तौर पर भारत के पास एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि दोनों रोल डॉन कर सकती हैं, मिडिल ओवर्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की और डेथ में जरूरत पड़े तो फिनिशर का रोल भी।
2: देखिए उनको मैं हमेशा से एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह देखती हूँ कि जिस तरह के उनके शॉट्स हैं, उनके पास जो बल्लेबाजी करती हैं, जितना दमखम वो अपने शॉट्स में दिखाती हैं, तो मुझे लगता है कि एक कह सकते हैं कि संपूर्ण तरीके से बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो। अगर उनको जल्दी मौका मिलता है तो वो अपनी टीम के अनुसार शॉट्स लगाती हैं और जब रनों की गति बढ़ानी होती है तो बड़े बड़े हिट्स भी उनके बल्ले से आते हैं। तो हरमनप्रीत कौर एक ऐसे प्लेयर हैं, कप्तान भी हैं, तो अपफ्रंट होके लीड करने जानती हैं वो।
0: जी बिल्कुल, द कैप्टन नोज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड शी डस कम विद इनॉर्मस एक्सपीरियंस एज वेल। अ बिग थैंक्स टू आर एक्सपर्ट्स, थैंक यू टू यू एज वेल गौतम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन फर्स्ट बॉल 20। वेल वी हेड स्ट्रेट अवे टू द फर्स्ट इनिंग्स वेयर द टू इंडियन ओपनर्स आर ऑल गियर्ड अप, शेफाली वर्मा एंड स्मृति मंदाना। थाईलैंड आर लुकिंग टू रिस्ट्रिक्ट इंडिया टू 120। वेल दैट हैपन्स और नॉट, वीड वेट एंड लिसन।
3: First ball 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार। भारत और थाईलैंड के बीच विमेन्स एशिया कप 2026 में आज मुकाबला खेला जा रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, और ये इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला है। भारत अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतर रहा है और इस मुकाबले में टॉस जीता है थाईलैंड की कप्तान ने, और टॉस जीत करके उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस लाइव कमेंट्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल, मेरे साथ अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे पंकज अठावले, स्कोरर हैं रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन हैं ओपी शर्मा। आप तमाम साथियों का, आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। फिलहाल भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी इस वक्त मैदान पर पहुंच रही है, और आज भारतीय टीम जिस प्रकार से इस प्लेइंग 11 का अगर हम जिक्र करें तो भारतीय टीम में आज स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर कप्तान, भारती फूलमली, ऋचा घोष विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्रीचरणी, क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा, ये भारत की प्लेइंग 11 है आज के मुकाबले में। प्रतिका रावल आज अपना पदार्पण कर रही हैं भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में, और ये पहला मुकाबला होगा उनका भारत की जानिब से। भारतीय टीम की तरफ से प्रारंभिक जोड़ी स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा मैदान की तरफ पहुंच रही हैं, और इस वक्त समय है अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले का स्वागत करने का। पंकज, बहुत बहुत स्वागत।
2: Thank you very much. Good evening to all our listeners on Akashwani. What a day it is, as Panita Maya for Thailand will be starting the proceedings. Thailand women winning the toss and deciding to bowl first at this wonderful and a very iconic venue, the Dubai International Stadium. The Ring of Fire, Iqbal, is ready, and the Indians will be up there. The most important point here is Thailand, the girls are giant killers. They have done something big in the past, and this will be a fantastic experience for them as the evening sun sets down on the western horizon in Dubai.
1: Smriti Mandana, 172वां मुकाबला, 4538 रन, और वहीं शिफाली वर्मा 112वां मुकाबला खेल रही हैं, 2901 रन उन्होंने बनाए हैं, और बेहतरीन स्ट्राइक रेट रही है स्मृति मंदाना के साथ साथ शिफाली वर्मा का भी। इस वक्त तमाम जो फील्डर्स हैं उनमें से ज्यादातर फील्डर्स 30 गज के, जो कि वुमेन्स क्रिकेट में 25 गज का दायरा होता है, वो 25 गज के दायरे के अंदर नजर आ रही हैं, और सिर्फ दो खिलाड़ी हैं जो बाउंड्री लाइन पर नजर आ रही हैं। पहली बॉल के साथ तैयार हैं गेंदबाज, पहली गेंद लेग और मिडिल स्टंप पर थी, और इस पहली बॉल को बल्लेबाज ने खेला सीधे बल्ले से मिड ऑन की जानिब। स्मृति मंदाना ने रन बनाने का कोई मौका नहीं, और इस तरह से फिलहाल स्कोर में कोई इजाफा नहीं, भारतीय टीम शून्य बगैर किसी विकेट के नुकसान के। माया इस वक्त गेंदबाजी कर रही हैं और वो पहला ओवर डाल रही हैं एमिरेट्स रोड एंड से पहला ओवर डाल रही हैं। फिलहाल एक बार फिर से तैयार हो रही हैं गेंदबाज माया, सामना करने के लिए तैयार हैं स्मृति मंदाना। ये गेंद, और इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, इस गेंद को घूम कर मारा, गेंद जा रही है फाइन लेग क्षेत्र में और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, पहला चौका भारत की पारी का। लेग स्टंप पर खराब गेंदबाजी, और ऐसे में इस गेंद को बड़ी आसानी के साथ लेग स्टंप के बाहर से फ्लिक नुमा स्ट्रोक खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज, सामना करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज स्मृति मंदाना, चौके के साथ खाता खोला है उन्होंने, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है माया। ये गेंद एक स्लिप के साथ, और इस बार लेग और मिडिल स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, ऑन साइड में पुल कर दिया और गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में, 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज, दो लगातार गेंदों पर दो चौके, काफी खराब गेंद, हाफ ट्रैकर, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और बड़ी आसानी के साथ स्मृति मंदाना ने इस गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में निकाल दिया 4 रनों के लिए। भारत का स्कोर इस चौके के साथ 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है और जो स्लिप इस वक्त मौजूद था उसको हटा दिया गया है। एक बार फिर से अब राउंड द विकेट आ रही है माया, ये गेंद और इस बार धीमी रफ्तार की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, पंच किया इस गेंद को कवर क्षेत्र में लेकिन 25 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज स्मृति मंदाना के पास। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, पिच नंबर 4 का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के मुकाबले के लिए। पहला मुकाबला थाईलैंड की टीम जीत चुकी है, वहीं दूसरे मुकाबले में श्रीलंका विजय रही है। यह तीसरा मुकाबला है विमेन्स एशिया कप का। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार बैकफुट पंच, बेहतरीन स्ट्रोक, कवर और पॉइंट के बीच में गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, तीसरा चौका इस ओवर का। इनएक्सपीरियंस जो है थाईलैंड का वो नजर आ रहा है, बैकफुट पर बेहतरीन पंच किया स्मृति मंदाना ने, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी और एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने। 3 चौके इस ओवर में लग चुके हैं और भारत का स्कोर 12 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान के। माया इस ओवर में अब अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रही है, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी, बल्कि राउंड द विकेट आती हुई अगली गेंद और इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को मिड विकेट पर पुश किया, तेजी के साथ 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया और इसी के साथ ये पहला ओवर मुकम्मल हुआ। भारत का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के।
2: It's a good start there for India and Smriti Mandana, of course, doing the needful. In fact, Maya Fanita's first delivery was very interesting. She kind of bowled it quite up and got a bit of movement there. But then, of course, as you mentioned, Iqbal, experience is something that Thailand will be gaining from this particular match. And Maya Fanita, I remember, she came up on the circuit somewhere around 2022 in that Asia Cup, which was played in Bangladesh. And from there, the Thai girls have done really very well. And as you mentioned, they have started this tournament with a victory, which is a good one for the Thai girls. India, of course, would be looking to start with a win, and not just with a win, but a big, big win. And that's why Smriti Mandana, there batting on 13, has got some good lusty blows in the very first over. Thipacha Puthawong will be bowling from the other end. Her best is 3 for 5, and she has got 169 wickets in her T20 career. Left arm spin with a slip, left arm round the wicket, first ball.

0: नहीं है, 10,746 रन उनके हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनका इंतजार कर रही है। फिलहाल अगली गेंद और इस बार फुल पिच डिलीवरी को ड्राइव किया थ्रू द लाइन, लेकिन कवर्स पर गेंद को रोक लिया गया। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं है शेफाली वर्मा के पास। शेफाली वर्मा ने 6 गेंदों पर 12 रन बनाए हैं, 2 चौके अब तक उनके नाम, और स्मृति मंदाना ने 10 गेंदों पर 19 रन बनाए हैं और 4 चौके अभी तक स्मृति मंदाना ने लगाए हैं। हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई छक्का इस मुकाबले में नहीं लगा है। 5वीं बॉल के साथ माया ओवर द विकेट, और इस बार इस गेंद को शेफाली वर्मा ने उछाल दिया बॉलर के सर के ऊपर से, और ये लीजिए पहला छक्का इस मुकाबले का।
1: Iqbal, you wanted it, they heard you, and the first 6 of the match, lovely shot, punched it downtown Dubai.
0: जबरदस्त स्ट्रोक, पावर है कलाइयों में स्मृति मंदाना, बल्कि शेफाली वर्मा के बॉटम हैंड का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया और गेंद को उछाल दिया बॉलर के सर के ऊपर से। भारत का स्कोर 37 रन इस छक्के की मदद से बगैर किसी विकेट के नुकसान के। एक बार फिर से माया तैयार हैं, बेबसी की मुस्कुराहट इस वक्त माया के चेहरे पर नजर आ रही है। उन्हें मालूम है कि किस कद की खिलाड़ियों के साथ उनका सामना हो रहा है। आखिरी बॉल के साथ चली गेंदबाज माया, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद और इस बार धीमी रफ्तार की फुल पिच डिलीवरी, ऑन साइड में इस गेंद को काउ कॉर्नर की तरफ मोड़ा, निश्चित तौर पर 2 रन मिलेंगे, और इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी मुकम्मल किया। हालांकि सीधा थ्रो स्टंप पर लगा, लेकिन तब तक स्मृति मंदाना क्रीज के अंदर आ चुकी थी और ऐसे में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हालांकि तीसरे अंपायर को इस वक्त ये निर्णय रेफर किया जा रहा है कि क्या स्मृति मंदाना क्रीज के अंदर आ चुकी हैं या फिर उनका जो बल्ला है वो बाहर है। हालांकि जिस तरह से रिएक्शन है उससे लगता है कि शायद स्मृति मंदाना अंदर। ओ माय गुडनेस, स्मृति मंदाना का बल्ला बाहर है, स्मृति मंदाना का बल्ला बाहर है, और पंकज एक अप्रत्याशित विकेट मिल रहा है थाईलैंड को यहां पर।
1: Unbelievable, a direct throw right from the deep caught Smriti Mandana napping for a moment and she is run out. Apisara was there in the deep and what a throw right on the furniture at the non-strikers end, and India lose their first wicket as you mentioned in a very very unfortunate manner, but what a turnaround. This is what luck is all about in this game of T20 cricket. India lose their first wicket in the form of Smriti Mandana run out.
0: दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट इस वक्त भारत की तरफ से। स्मृति मंदाना जो कि बहुत जबरदस्त ओपनिंग बैटर हैं और बड़ी अच्छी पारियां उन्होंने खेली हैं। जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओवरऑल सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में उनका नाम अब दूसरे नंबर पर आ गया है मिताली राज के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो 10 गेंदों पर 19 रन बना करके रनआउट हुई है दूसरा रन लेने की कोशिश में। हालांकि पर्याप्त समय था पंकज, लेकिन न जाने किस तरह की वहां पर समझबूझ थी ये समझ नहीं आई। नई बल्लेबाज मैदान पर प्रतिका रावल जो कि अपना डेब्यू कर रही हैं।
1: Yes, 3 overs India 38 for 1 and Pratika has come at a very very interesting moment. Oh, good ball there by Thipacha, the first ball left arm round the wicket, very slow through the air, in fact just curling into Pratika, and what just happened was when in fact Shefali got that shot, Smriti took the first run very quickly and she sort of just slowed down and sort of took a bit of a U-turn kind of a thing while returning, and that is where she kind of lost those couple of yards, and unfortunately for her the throw was a direct hit. Small things in cricket make such a huge difference, and Smriti Mandana is a tall girl, no doubt about it, and her lunge and her reach is also pretty good, but extremely unfortunate, but Thailand will be very very happy. Next ball slightly short, Pratika goes on the back foot and almost drags it towards wide-ish long on to open her account, but 39 for 1 and Iqbal, Shefali and Smriti were going at really a very very good pace, and in fact the ball was slow, Shefali took off very slow, first run from Smriti was very very quick.
0: बिल्कुल, और ऐसा लगा भी कि दूसरा रन से स्मृति मंदाना ही चाह रही थी। इस बीच अगली गेंद और इस गेंद को डिफेंड किया बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं, और जब आप खुद दूसरे रन को इनिशिएट कर रही हैं इसके बाद आप पीछे रह जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये बड़ी गलत बात नजर आई। और बिल्कुल आपने सही कहा, एक तो उन्होंने स्ट्रेट न दौड़ करके थोड़ा उन्होंने दूर से ग्राउंड को कवर किया और साथ ही साथ थोड़ी स्लो भी नजर आई है। इस बीच अगली गेंद और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछाल दिया, एक टप्पा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन।
1: Oh, what a shot.

0: Shefali says, I will continue from where I've stopped, and what a lovely shot that was. And Thipacha is trying to kind of lure Shefali into a wrong shot, but waiting for that ball, letting that ball come in, and then making room for herself and then driving it over the covers. Beautiful shot there by Shefali, and India will expect her to really continue till the end. And that's the most important point. Both your openers were playing so well, but at one end, Shefali will have to continue with the onslaught. There's a shot, third man, point, backward point, cover, mid-off. That's the fielding on the offside. There's a shot, fine leg. There's a deep backward square leg. And now, in fact, Thipacha has got the long on in, and she has sent the fielder at mid-off to long off. So they're trying to kind of create some doubts in the mind of Shefali. She goes in the same direction. You keep a fielder there. It doesn't matter. She goes over the covers. Shefali gets another boundary. What a shot! What did she have for lunch today, Iqbal? 4 overs, 47 for run, India.
1: जबरदस्त शुरुआत की है भारत ने, और शेफाली वर्मा इसी तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती हैं, आती हैं, और इसके बाद वो क्या कुछ कर जाती हैं, ये हमारे और आपके सामने है, उनके रिकॉर्ड हमने देखे हैं। और साथ ही साथ जो विश्व कप था, उसमें जिस तरीके से इनको अंतिम चरण में बुलाया गया था, टीम में इंजरी के कारण ये आई थी, और इनफैक्ट अगर मैं सही हूं तो प्रतीका रावल की जगह पर ही इनको भारतीय टीम में शामिल किया गया था, और वो जो नॉकआउट्स मुकाबले थे उसमें क्या जबरदस्त प्रदर्शन रहा था शेफाली वर्मा का। अमूमन देखें, इस तरह के जो मौके होते हैं खिलाड़ी का करियर चेंज कर देते हैं। विश्व कप की टीम में शेफाली नहीं थी, लेकिन आती हैं और वो गजब ढा जाती हैं।
0: No doubt about it. And Pratika has come into the team because Jemima Rodrigues is not available because of injury. And this is going to be a good point here. Sunida now is coming into the attack. 74 matches for her. A pretty good off-spinner, Sunida. And she will be expected to create something. Thailand will be happy. You are not getting wickets. Let them come through runouts or some other means. But keep on getting wickets.
1: Sunida, new over ke saath, pehli gain flighted. Aur is pehli gain ko Pratika Rawal ne uchhal diya extra cover ke upar se. Aur ye laga chhakka. प्रतिका रावल शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। आसान नहीं होता पंकज एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारना, और प्रतिका रावल ने कहा क्या बात है, मैं आज डेब्यू कर रही हूं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रिकॉर्ड वनडे और टेस्ट क्रिकेट में उठाकर देखिए, मैंने बहुत रन बनाए हैं, और आज अपने डेब्यू मुकाबले में महज चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। भारत का स्कोर 53। इस बीच अगली गेंद, और इस बार प्रतिका ने इस गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, एक रन दौड़ करके पूरा कर रही हैं, और इस एक रन के साथ प्रतिका पहुंच गई हैं 8 पर, और भारत का स्कोर 54 रन एक विकेट के नुकसान पर। पांचवां ओवर पारी का चल रहा है। प्रतिका रावल का टेस्ट क्रिकेट में एवरेज भारत के लिए 40 का है, बहुत ही जबरदस्त इनका रिकॉर्ड है, और वनडे क्रिकेट में तो खैर कमाल ही किया है इन्होंने, 47-48 की एवरेज रखती हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं, और ऐसे में अब T20 की बारी है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, रूम बनाकर इस गेंद को कट किया शेफाली ने, लेकिन पॉइंट क्षेत्र पर फील्डर मौजूद, दायरे के अंदर, गेंद को रोका गया, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं है। प्रतिका रावल जिस तरह की खिलाड़ी हैं, बहुत कॉपी बुक स्टाइल की खिलाड़ी हैं, बहुत स्लैम बैंग क्रिकेट नहीं खेलती हैं, लेकिन T20 है, और T20 में देखते हैं किस प्रकार का उनका बल्ला चलता है। अगली गेंद, और इस बार शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, लेग स्टंप पर घुमा दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका। शेफाली वर्मा इस चौके की मदद से पहुंची है 31 पर, यह उनका पांचवां चौका है, और भारत का स्कोर 58 रन एक विकेट के नुकसान पर। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, खराब गेंद लेग स्टंप के ऊपर, ऑफ ब्रेक गेंदबाज की यह गेंद बहुत ही खराब कही जाएगी, और ऐसे में बड़ी आसानी के साथ इस गेंद को मोड़ा 4 रनों के लिए। पांचवां ओवर चलता हुआ, पांचवीं बॉल के साथ तैयार है गेंदबाज सुनीदा, ये गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में घुमाया है मिड विकेट के सर के ऊपर से, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन से ज्यादा इस मरतबा नहीं मिलेगा शेफाली को। शेफाली इस सिंगल की मदद से पहुंची है 32 पर, और भारत का स्कोर 59 रन एक विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार भारत की 12.21 रन प्रति ओवर, क्या शानदार रन रेट रहा है भारत का। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑलमोस्ट रिटर्न कैच दे दिया था, बैकफुट पर खेला था प्रतिका ने, लेकिन किस्मत वाली रही प्रतिका रावल की, फील्डर सुनीदा के ठीक सामने गेंद टप्पा खाई, और ऐसे में बाल बाल बच गई हैं बल्लेबाज प्रतिका रावल, और ऐसे में ये ओवर समाप्त हुआ। पांचवा, पांच ओवर्स के बाद भारत का स्कोर है 59 रन, एक विकेट के नुकसान पर। शेफाली 32 पर और प्रतिका रावल 8 रन बनाकर खेल रही हैं। और पंकज, जिस तरह का रन रेट है भारतीय टीम का, निश्चित तौर पर पावर प्ले का इसमें कहने की जरूरत नहीं है, भारत ने भरपूर लाभ उठाया है।
0: Yes, no doubt about it, Iqbal. And the point here is that if you talk about Thailand, what they're doing is they're being consistent and they're getting along with their overs very, very quickly. That's their style. And Onicha Kamchompu is now into the attack, 153 wickets for her in her career. She is the off-spinner as the first ball punched towards mid-wicket by Shefali. Now, this is going to be an interesting time because India are going at about 11.5 runs per over and Thailand are going quickly through their overs, and their exuberance in the fielding, even though they're getting hit, their exuberance is really very, very exciting. And that is what you'll have to do when you're playing a big team. Two dot balls to begin with, Onicha with her over. This is the most economical over till now. The first two deliveries have been dot ball, and Shefali is playing on 32 of 16 deliveries. India 59 for the loss of a wicket. Sixth over in progress. That means this is the last over of the power play. Onicha bowls slightly slow, going on the back foot, nicely cutting it through. Shot third man. Good fielding there by Maya Panita, the youngster. Dives, slides and stops the ball, just a single. And the kind of improvement that Thailand have made over the years, in the last 4-5 years, has been really phenomenal. That's really very good advertisement for the game of women's cricket. Indonesia are playing in this particular tournament, Hong Kong, UAE, that's really very good to see. Next ball coming down the track, Pratika goes for that big shot, it's in the air, safe, downtown Dubai. 4 runs there for Pratika, and only 5 runs have come in this over from Onicha. That means India are feeling not just the pressure but the need to constantly get the runs going. Good to see Pratika using her feet, coming down the track and hitting that ball very, very nicely. So India moving quickly towards a very big score. They're 64 for the loss of a wicket. Pratika right now on strike, she's batting on 12. This time waiting for that ball, couldn't connect it well, straight to the fielder at backward point. The overall development of women's cricket, especially in Southeast Asia, and the kind of teams that have come. Thailand have had some big victories over Sri Lanka, over Pakistan in the last few years. Now they are up here. So the improvement is very evident, and that's good for the game of women's cricket. Last ball of the over. Coming down the track, this time goes on the onside. Didn't connect it well. There was a fielder, Sunida, who got that run out of Smriti Mandana earlier on in the innings. 6 overs have been bowled. India 65 for the loss of a wicket. Pratika batting on 13. Shefali is batting on 33. And Iqbal, India of course would be looking at this particular match from the perspective of a very big victory, because every time there's a multi-team format, you need to always take care of your net run rate. It's always better to have a good net run rate right from the first match. And with teams like Indonesia, Thailand, Hong Kong, India have a good opportunity here. Now the point is the middle order will have to really kind of exploit the situation instead of kind of getting a bit more overexcited.
1: बिल्कुल सही बात है पंकज, और क्योंकि भारत जिस ग्रुप में है, ग्रुप ए में, उसमें थाईलैंड, पाकिस्तान और हांगकांग की टीमें हैं, तो दो कमजोर टीमें नजर आती हैं। भारत पाकिस्तान के आगे जाने की संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी भारत अपने आप को और बेहतर तरीके से लेकर जाना चाहेगा सेमीफाइनल का। जहां तक प्रश्न है, नए ओवर की शुरुआत सुनीदा ने की है, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, दूसरी गेंद के साथ तैयार हैं गेंदबाज सुनीदा, सामने है बल्लेबाज प्रतिका रावल। ये गेंद प्रतिका के लिए, और इस बार प्रतिका ने इस गेंद को रूम बनाकर कट किया, पॉइंट से गेंद रुकी नहीं, आउटफील्ड अच्छा खासा तेज नजर आया है, हालांकि बहुत स्लो हो गई ये गेंद, डाइव लगाई नहीं रोक पाई और गेंद सीमा रेखा से जा टकराई 4 रन के लिए। बहुत अच्छी कोशिश फील्डर के द्वारा, पूरी तरह से अपने आप को झोंके रखा अंतिम समय तक, लेकिन डाइव अंतिम समय पर उन्होंने लगाई, गेंद हाथ में आ भी गई लेकिन हाथ के नीचे से टकरा करके बाउंड्री लाइन से जा भिड़ी गेंद, और ऐसे में ये चौका मिल गया बल्लेबाज प्रतिका रावल को। इस चौके के साथ प्रतिका पहुंची है 13 पर। फील्डर को थोड़ी चोट लगी है वहां, और इस वक्त वो दर्द से कराहती हुई नजर आ रही हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर ये 20वां

0: टी20 मैच खेला जा रहा है ये वुमेन्स क्रिकेट का, ये जानकारी दी है हमारे स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा ने हमारे स्कोरर रजित सिन्हा के साथ। भारत का स्कोर इस वक्त 69 रन है एक विकेट के नुकसान पर। विकेट गिरा है स्मृति मंदाना का जो कि रनआउट हुई है। तो मैं बात कर रहा था ग्रुप्स का, ग्रुप ए में भारत है, थाईलैंड, पाकिस्तान और हांगकांग। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और यूएई की टीमें ग्रुप बी में नजर आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान की दावेदारी बेहतर नजर आती है। वहीं उधर ग्रुप बी में बांग्लादेश और श्रीलंका की दावेदारी बेहतर नजर आती है। लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कहीं भी बाजी पलट सकती है। और ये जो नई टीमें हैं, ये जो थाईलैंड, हांगकांग, यूएई जैसी टीमें हैं, ये अपना छाप छोड़ने के लिए इस टूर्नामेंट में आई हैं। फिलहाल इस वक्त खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब गेंदबाजी करने के लिए सुनीदा तैयार हैं। सामने है प्रतिका रावल, 17 रन बनाए हैं 11 बॉलों पर। अगली गेंद और इस बार प्रतिका ने इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा मिड विकेट क्षेत्र में, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद, गेंद को रोक लिया गया और इस बीच दौड़ करके एक रन पूरा किया प्रतिका रावल ने और इस एक रन की मदद से 18 पर पहुंची हैं प्रतिका और भारत का स्कोर 70 रन एक विकेट के नुकसान पर। आज प्रतिका रावल को भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने डेब्यू कैप थमाई, इंटरनेशनल टी20 कैप थमाई। और इस बीच अगली गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया शेफाली वर्मा ने, गेंद को उठा दिया वाइड लॉन्ग ऑन पर और गेंद जाकर गिरी है स्टैंड्स में, 6 रन। शेफाली वर्मा का दूसरा छक्का और भारत का स्कोर 76 रन एक विकेट के नुकसान पर। सुनीदा की ये फ्लाइटेड गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंची और एक बेहतरीन पावरफुल हिट लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए। सीधे स्टैंड पर जाकर गेंद गिरी है, भारत 76 एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली बॉल और इस बार बैक ऑफ लाइन डिलीवरी, ऑन साइड में इस गेंद को घुमाया, गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में, डाइव लगाई फील्डर ने, नहीं रोक पाई और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। शेफाली वर्मा बहुत तेजी के साथ अब अपनी अर्धशतक की ओर बढ़ रही हैं। 19 गेंदों पर 43 रन बना लिए हैं शेफाली वर्मा ने और भारत का स्कोर देखते ही देखते 6.5 ओवर में 80 रन एक विकेट के नुकसान पर। सुनीदा थोड़ी छोटी गेंद कर बैठी थी और उसका पूरा लाभ उठाया शेफाली वर्मा ने। सुनीदा अंतिम ओवर, अंतिम गेंद के साथ तैयार हैं, ये उनका दूसरा ओवर है। अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन लेंथ छोटी कर दी सुनीदा ने और विवश होकर इस गेंद को मोड़ा, फाइन लेग 25 गज के दायरे के अंदर है, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, कोई रन नहीं बना आखिरी बॉल पर। और इसी के साथ 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय वुमेन्स टीम का स्कोर है 80 एक विकेट के नुकसान पर। प्रतिका रावल खेल रही है 18 पर और शेफाली वर्मा 43 रन बनाकर खेल रही हैं महज 20 गेंदों पर, 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से। स्ट्राइक रेट उनका 215 का चल रहा है और मौजूदा रनगति लगभग 11.5 रन प्रति ओवर भारत का।
1: सो इकबाल, इंडिया वोंट रियली बी अनहैप्पी आफ्टर दैट रन आउट ऑफ स्मृति मंदाना बिकॉज प्रतिका एंड शेफाली हैव एक्चुअली कंटिन्यूड फ्रॉम वेयर स्मृति मंदाना हैड लेफ्ट। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज दैट द रन रेट 11.5 रन पर ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग नंबर कमिंग अप हियर, प्रतिका इज बैटिंग ऑन 18 राइट नाउ, इज द हाईएस्ट स्कोर ऑन डेब्यू ओवरऑल in the Asia Cup T20. Very interesting. Onicha now comes for the next over. Pratika batting on 18 of 13 deliveries. And you mentioned about her copybook style. You saw earlier Shefali hitting the ball through onside, through the air. But coming down the track, Pratika tries to play it along the carpet. So these are different styles of players. As Onicha bowls this time, swept high in the air by... This couldn't be a wicket, though. Just falling short of the fielder at deep backward square leg. Pratika swept it. Top edge, the ball was in the air for quite some time. The fielder there, Nanapatha, was the fielder. She tried really very hard, but the ball kept on dipping onto the Thailand player, Nanapath, and just falling short. A very, very aggressive attempt there by the fielder. Thailand are giving it all. They want a wicket at any cost this time, driven nicely through the covers, straight to the fielder at extra cover. Pratika batting on 20. India 82 for the loss of a wicket. Iqbal, what's good to see is that the Thailand players are not

0: able to control the runs, but they're not giving up. Their fielding has been fantastic and their overall body language has been very, very positive, which is really very good. This time playing across the line, nicely clipped it. There's a fielder at deep mid-wicket, Sunidha. Pratika will just get a single. She wanted to kind of get that gap between mid-wicket and deep backward square leg and played that across the line shot, but she will get a single. This is an interesting over. India going at 11.5 runs per over have got only 3 runs from the last 4 deliveries. Onicha seems to be the bowler who has got India under control. Court ball, lovely turn. Very slow through the air on the off stump. The ball gripping the surface, turning and sort of cramping Shefali for space completely. And Shefali also gave enough respect to that ball. We have not seen so much of turn till now. Maybe a bit of finger and maybe a bit of wrist there by Onicha. This is very good bowling from the Thailand girls. Coming down the track, anticipated that really very well. Bowled a slower one, forced Shefali to play it back to Onicha. Only 3 runs coming from this over. So the 8th over has turned out to be the most economical for Thailand till now. And is this the turning point of the match for Thailand? Because Thailand, when they won the toss, their captain said they want to kind of keep it about 120-130 for India. India already have got a very, very good score in the first 8 overs. Can Thailand just grab that, you know, sort of get them into shackles and keep the Indian scoring slightly low in the next few overs and then see what happens?
1: और पंकज, जैसे ही आपने बताया कि उनके कप्तान ने कहा कि भारत को 120-130 के अंदर हम रोकना चाहेंगे, दरअसल उनको भी पता है कि भारत को 120 और 130 के अंदर नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो भारत जैसे मजबूत टीम के सामने खड़ी होकर के कह रही हैं कि हम भारत को 120-130 में रोकना चाह रहे हैं। और वैसे बात अलग है कि 8 ओवर में ही भारत ने 83 बना लिए हैं। फिलहाल लाउमी आई हैं गेंदबाजी करने के लिए और वो गेंदबाजी करेंगी प्रतिका रावल को। पहली गेंद फ्लाइटेड ऑफ स्टंप के बाहर, टर्न हुई गेंद, विद द टर्न इस गेंद को खेला ऑफ साइड में, पॉइंट क्षेत्र में गेंद को बाउंड्री लाइन के आसपास फील्ड किया गया। 1 रन लेने का मौका प्रतिका रावल के पास और इस 1 रन की मदद से प्रतिका पहुंच गई हैं 22 पर और भारत का स्कोर 84 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिस प्रकार का रन रेट चल रहा है भारतीय टीम का 10.29, अगर हम इसी को मान के चलें कि यही सिलसिला आने वाले ओवर्स में भी जारी रहता है, तो आसानी के साथ भारत 200 रन को पार कर लेगा। फिलहाल एक बार फिर से तैयार हो रही हैं गेंदबाज लाउमी और सामना करने के लिए तैयार हैं अब शेफाली वर्मा। हालांकि क्योंकि अब पावर प्ले के ओवर्स खत्म हो गए हैं तो थोड़ी सी राहत थाईलैंड की गेंदबाजों को भी है। अगली गेंद और इस बार लेग ब्रेक गेंद की गेंदबाज की, ये गेंद टर्न हुई बाहर की तरफ, खेला इस गेंद को पॉइंट पर, रन बनाने का मौका नहीं।
0: Yes, in fact, what has happened with the Thailand team is that the first 3-4 overs, they were slightly kind of under pressure because of the hard hitting of Shruti Mandhana and Shefali. But then they have come back because the fielding placement seems to be right now in the last few overs. Lovely fly, the leg spinner Laumi is definitely making Shefali think a bit. And both Shefali and Pratika, of course, utilized the power play really very well. But Iqbal, now these middle overs are going to be very, very crucial.
1: बिल्कुल सही बात है और भारतीय टीम को इन ओवर्स में रनों का जो सिलसिला है उसको बनाए रखना होगा। फिलहाल एक बार फिर से तैयार हैं लाउमी, लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रही हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट शॉट गेंद, इस बार उछाल दिया इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। शेफाली वर्मा ठीक बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए फील्डर के सर के ऊपर से खेलने में कामयाब हुई, वरना ये कैच भी हो सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी कि भारत 6 रन प्राप्त करता हुआ। 49 पर हैं शेफाली वर्मा, 1 रन चाहिए अर्धशतक पूरा करने के लिए। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चली गेंदबाज और इस बार शेफाली ने इस गेंद को घूम कर खेला ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, 1 रन इत्मीनान के साथ पूरा किया और इसी के साथ शेफाली वर्मा का अर्धशतक पूरा। शेफाली वर्मा 26 गेंदों पर 50 रन, 6 चौके और 3 छक्के, 192 की स्ट्राइक रेट। और हमारे स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा ने हमारे स्कोरर रजित सिन्हा के साथ जानकारी दी है कि ये 19वां अर्धशतक है शेफाली वर्मा का 112वें मुकाबले में। अगली गेंद और इस बार नीची रही, गुगली, टर्न हुई, बोल्ड हो गई प्रतिका रावल।
0: Look at the smiles on the face of the Thailand girls. दे हैव गॉट अ बिग बिग विकेट

0: और 3 छक्के उन्होंने लगाए हैं इस मुकाबले में। 10 ओवर का खेल खत्म हुआ है और 10 ओवरों में भारत ने 101 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। आज इस मुकाबले में जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुनना शुरू किया उनको बता दें कि टॉस जीता है आज थाईलैंड की कप्तान ने और टॉस जीत करके उन्होंने पहले भारत को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की और दोनों बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन आगाज दिया भारतीय टीम को और भारत ने 38 रन पर पहला विकेट गंवाया और ये 38 रन भारत ने मात्र 3 ओवर में बनाए थे। स्मृति मंदाना अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश तरीके से वो 19 रन बना करके रन आउट हुई। 10 गेंदों पर 4 चौके लगाए थे उन्होंने। इसके बाद डेब्यूटेंट प्रतीका रावल आई बैटिंग करने के लिए। प्रतीका रावल ने 22 रन बनाए 18 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया और फिलहाल शिफाली वर्मा 59 पर और हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रही हैं। गेंदबाजी का जिक्र करें तो माया ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 25 रन दिए हैं, कोई सफलता नहीं। थिपाचा ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 22 रन दिए हैं और कोई कामयाबी उनको भी प्राप्त नहीं हुई है। सुनीता ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 27 रन उन्होंने खर्च किए हैं और कोई सफलता उनको भी प्राप्त नहीं हुई है। ओनिचा ने 3 ओवर डाले हैं और इन 3 ओवरों में ओनिचा ने 19 रन दिए हैं और कोई सफलता उनको भी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सबसे किफायती गेंदबाजी ओनिचा ने की है, 3 ओवर 19 रन और कोई कामयाबी नहीं। 6.30 का उनका इकोनॉमी है। और इसके अलावा लाउमी ने आते ही पहले ही ओवर में थाईलैंड को विकेट दिलाया, उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की है, 8 रन दिए हैं और 1 सफलता उनको प्राप्त हुई है। पहला विकेट भारत का 38 पर गिरा, दूसरा विकेट 91 पर गिरा और इस वक्त कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनके साथ शिफाली वर्मा मैदान पर भारतीय टीम को आगे बढ़ा रही हैं। जिस तरीके से शिफाली वर्मा ने बैटिंग की है उनको कॉम्प्लीमेंट करना होगा हरमनप्रीत कौर को पंकज, क्योंकि हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी T20 क्रिकेट में लेकर के ऑफ लेट काफ़ी चर्चा में रही है और काफ़ी स्क्रूटनी में रही है कि क्या हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी T20 क्रिकेट को सूट करती है। ये बात और है कि उनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता।
1: No doubt about it, as Laumi starts a new over, the 11th of the innings, a cheeky sweep from outside the off stump by Harmanpreet. She'll get a couple of runs as the ball trickles over towards fine leg. And it's a very important point that you made about Harmanpreet. And the fact remains that every player goes through different phases in his or her life. And Harmanpreet has a good opportunity to actually play in the shadow of Shefali and kind of get back to what she is good at. But the Thailand girls would be looking forward to exploiting this particular situation. And instead of targeting Shefali, they would try and target Harmanpreet and get wickets at one end. 103 for the loss of 2 wickets.
0: एक बार फिर से लाउमी लेग ब्रेक गेंदबाज, अगली गेंद और इस बार टर्न के सहारे इस गेंद को कट किया लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है हरमनप्रीत कौर के पास। हरमनप्रीत कौर इस वक्त 1 रन बनाकर खेल रही हैं और उनके साथ 59 पर शिफाली वर्मा बैटिंग कर रही हैं। फिलहाल एक बार फिर से तैयार गेंदबाज लाउमी, सामने है हरमनप्रीत कौर। ये गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को उछाल कर खेला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद लेकिन ठीक पहले फील्डर के गेंद टप्पा खाई और ऐसे में बाल बाल बच गई हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर।
1: You mentioned it right, she's not really getting the shots or the timing really very well. She wanted to go for that expansive drive over the covers and there was Onicha who was there at long off and Laumi would be very very devastated. This would have been a big big wicket.
0: Harmanpreet Kaur ko single mila lekin ek jeevandaan bhi aap keh sakte hain. 4 run aur 6 gendon par ye 4 run unhone banaye hain. फिलहाल लाउमी एक बार फिर से चली ये गेंद और इस बार इस गेंद को बैकफुट पर ऑन साइड में मोड़ा मिड विकेट पर शिफाली ने, खुद गेंदबाज गई हैं फील्ड करने के लिए। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर 105 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर पारी का चल रहा है, लाउमी ने अपने पहले ओवर में 8 रन देकर के 1 विकेट लिया। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दिए हैं लाउमी ने, और इस वक्त कप्तान हरमनप्रीत कौर सामना करने के लिए तैयार। लेग ब्रेक गेंदबाज की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में सिर्फ पुश भर कर पाई। 1 रन लेने का मौका, अच्छा मौका था इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का, समझ नहीं पाई दरअसल हरमनप्रीत।

0: एक और ऐसा लग रहा है टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई, गुगली थी ये, और ऐसे में ऑन साइड में खेला एक रन के लिए। और यही कारण है कि आलोचनाओं के केंद्र में रहती हैं हरमनप्रीत कौर। इतनी छोटी गेंद, इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, आपको घूमकर इस गेंद को मारना चाहिए था, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि आत्मविश्वास जो है हरमनप्रीत का थोड़ा सा हिला हुआ है। इस ओवर की आखिरी बॉल के साथ लाउमी तैयार, ये गेंद शेफाली के लिए, शॉर्ट गेंद, शेफाली ने घूम कर मारा इस गेंद को, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिला, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के इंटेंट में साफ फर्क नजर आया। पंकज, उसी शॉर्ट गेंद को हरमनप्रीत कौर कैसी खेली और उसी शॉर्ट गेंद को शेफाली ने कैसे खेला, बेशक नतीजा सेम रहा, दोनों को सिंगल मिला, लेकिन जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि
1: व्यापार का लक्ष्य सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
2: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद

0: श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
3: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
3: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
1: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के

0: आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership will be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
2: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द टू कंट्रीज विल ऑल्सो सेट अप कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
2: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने

0: डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है वो बहुत जबरदस्त थाईलैंड की टीम ने, और ये दिखाया उन्होंने कि क्यों वो जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था उसमें क्यों वो चैंपियन बने हैं। यूएई जैसी टीम को फाइनल में उन्होंने हराया। उनके बॉलर्स बड़े नाम भले ही वैसे ना हो लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। स्पिनर्स ने खासतौर पर बड़े अच्छी गेंदबाजी की, लेग स्पिनर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट लेना और 2 बार एक एक ओवर में 2-2 विकेट, आपने क्रिकेट में कहा जाता है नेवर लूज 2 क्विक विकेट्स, वो फार्मूला जो है शायद इनके दिमाग से उतर गया हमारे खिलाड़ियों से, 2-2 विकेट गए। और जो नए खिलाड़ी हैं जिनको जैसे मौका, प्रतीका रावल ने थोड़ा अच्छा किया लेकिन आउट बड़े खराब ढंग से हुई, जो प्रेमा रावत हैं वो जिस तरीके से आपने पिच में आप आगे निकल आए, उस समय जरूरत नहीं थी उस चीज की, जब आपके विकेट्स गिर रहे हैं थोड़ा सा आपको रुक के चलना चाहिए। क्रिकेट में देखो रन बनाना एक अलग बात होती है लेकिन हाउ टू बिल्ड द इनिंग्स सबसे बड़ी चीज ये होती है। पारी को संवारने की कला अगर आपके अंदर नहीं आएगी तो वही होगा जो आज यहाँ भारतीय टीम के साथ हुआ।
1: बिल्कुल, इट टर्न्ड आउट टू बी अ टेल ऑफ टू हाफ्स विद इंडिया स्कोरिंग 101 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स एंड देन सब्सिक्वेंटली जस्ट मैनेजिंग 58 for 7, ऑल्दो ऑब्वियसली क्रेडिट टू द टेल एंडर्स फॉर इंश्योरिंग लतिका कि भारतीय टीम ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की।
2: देखिए 20 ओवर बल्लेबाजी तो यहाँ पर करी लेकिन मैं गेंदबाजी की तारीफ ये करूंगी कि उन्होंने एक ही लाइन एंड लेंथ में गेंदबाजी की है। भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बड़े शॉट्स खेलने का। जरूर शुरुआत अच्छी रही भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से शेफाली और स्मृति से, लेकिन उसके बाद लगातार परेशान किया, डॉट बॉल्स का प्रेशर बनाया जिसका शिकार हरमन भी हुई गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से। आगे आने वाले जो बल्लेबाज हैं उन बल्लेबाजों को भी तकलीफ हुई रन बनाने में, और ये क्रेडिट जाता है इनकी गेंदबाजी पे, इनकी फील्डिंग एफर्ट्स पे, जिस तरह के कैचेस लिए, डायरेक्ट हिट्स लिए, तो एक दिखाता है कि ये टीम आपको इतनी आसानी से रन नहीं बनाने दे रही है। तो अब ये कंपटीशन, अब ये देखना होगा कि बल्लेबाजी में आके ये लोग क्या करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चिंताएं यूं की यूं बनी हुई हैं भारतीय टीम के लिए जिससे ये पार पाना चाहते होंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड अभी एक और पार्ट बचा है इस मैच का, हम उसको देखेंगे वो किस तरीके से।
3: बिल्कुल, चिंता के विषय की आपने बात यहां पर की और कहा कि प्रेशर में बिखरे नहीं निखरे। एक मोड ऐसा भी आया था जब ऋचा को शायद वो स्टेज सेट करने का मौका मिला था, वहां पर भी गड़बड़ हुई कहीं ना कहीं, और ये क्वेश्चन मार्क हमेशा से लगा हुआ है कि वो जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ती है ऐसे मोड।
0: बिल्कुल, आपने आते ही पहली गेंद से इस तरीके का वो जो शॉट खेला है वो उससे ऋचा घोष से वैसी उम्मीद नहीं आपको की जाती, आपने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। देखिए बॉलर्स का, फील्डर्स का जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम वो हमारी बल्लेबाजों ने किया है। वो तो 10 ओवर में पूरी तरह से डाउन आउट हो चुके थे, हमारा बड़ा स्कोर, मैंने देखो आपको पहले भी कहा था कि जो इनिंग खेले वो एंड तक लंबी इनिंग जाएगा। अगर एंड तक आपका शुरुआती बल्लेबाज टिकेंगे, अगर एंड के ओवर्स में लास्ट 5-6 ओवर्स में आपके नए बल्लेबाज आएंगे तो आपको रन बनाने में दिक्कत आएगी, आप बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन शफाली ने जिस तरीके से इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, जितनी तारीफ हो उतनी कम है, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुई उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। वैसी उम्मीद मतलब नहीं की जाती थी कि इस तरीके से आउट होंगी। जो कप्तान हरमनप्रीत ने जो बैड शॉट खेला इस तरीके से, वैसी उम्मीद उनके साथ नहीं थी। लेकिन इन बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी, इन्होंने स्पिनर्स ने ज्यादा तेज फेंकने के बजाय बॉल को धीमा रखा, हवा में ज्यादा लटकाया, वेरिएशंस के साथ की, कोई कोई बॉल उन्होंने इस तरीके से की जो ज्यादा बाउंस उस पर पिच पे नहीं आया, तो उनको उस वेरिएशंस का फायदा मिला। और एक लाइन पे स्टिक करना, एक कम अनुभवी गेंदबाज जो होते हैं जिनको ज्यादा इंटरनेशनल का अनुभव नहीं होता और एक बड़ी टीम के खिलाफ जब खेल रहे होते हैं तो बड़ी हिम्मत चाहिए बॉलर्स के अंदर, खासतौर पर स्पिनर्स के अंदर, वो भी T20 में। बहुत हिम्मत इन गेंदबाजों ने दिखाई है कि जिस तरह की बिल्कुल विकेट टू विकेट उन्होंने गेंदबाजी की। शुरू में ठीक है थोड़ा बहुत वेवर्ड रहे वो, उनके फास्ट बॉलर्स को भी शॉर्ट पिच गेंदे की, क्योंकि आजकल शॉर्ट पिच गेंदों पे ही लोग विकेट लेते हैं, फास्ट बॉलर्स का तो एक फंडा ये बन चुका है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो वुमेन्स क्रिकेट हो, कि आप शॉर्ट पिच फेंकते रहो कितने मारेगा कोई, एक आध तो उठ ही जाएगी ना कैच, तो वो वाले उस पर अच्छे रन बनाए, लेकिन जो बैड शॉट सिलेक्शन है वो भारत को बहुत नुकसान दे गए।
3: लियोम ने कमाल तो किया, 3 बड़े विकेट लिए, लेकिन यहाँ पर जिनका डेब्यू हुआ उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रतीका रावल, एक बड़ा शॉट जरूर देखने को मिला।
0: नहीं, प्रतीका रावल ने देखो अच्छी की, एक अच्छी साझेदारी उन्होंने लगाई है शफाली वर्मा के साथ, अक्षतीय साझेदारी करना आसान नहीं, अच्छा किया। लेकिन क्या होता है कि आपको जब आप टिक गए तो आपको लंबी इनिंग खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो उसमें कहीं ना कहीं कमजोर रह गए। और जब लगातार विकेट आपके गिरने लगते हैं तो जो विपक्षी टीम है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप बहुत बड़े नाम है, थाईलैंड

0: के जो प्लेयर्स हैं वो इतने बड़े नाम नहीं है, उनके लिए उनकी गेंदबाज के लिए स्मृति मंदाना को आउट करना बहुत बड़ी बात, उनके फील्डर्स के लिए डायरेक्ट हिट, ये बार बार चीजें दिखाई जाएंगी, लोगों के जहन में रहेंगी। स्मृति मंदाना भी आज रात को सो नहीं पाएंगी कि किस तरीके से डायरेक्ट हिट इस तरीके से लगा है, वो बड़ा हर्ट करता है किसी भी प्लेयर को। दीप्ति ने खुद अपनी कॉल पर जाके आप रन आउट हो गए, आप बॉल को देखने लग गए, फील्डर को देखने लग गए, आपने अपने उस पर रन पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे अपना एरिया कवर करना है। वो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बताया जा रहा था भाई कैंप में छोटी छोटी चीजों को पकड़ा है, तो ये तो बल्लेबाजी में लग रहा है कि भाई छोटी छोटी चीजों पे अभी और बहुत काम करने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल, और इसी तरह से अपनी छोटी छोटी चीजों पर काम करते हुए थिपाचा हाईएस्ट विकेट टेकर T20 आईस की उन्होंने आज भी प्रभावित किया आपने लेफ्ट आर्म स्पिन से।
2: बिल्कुल, देखिए कोई भी गेंदबाज होता है और गेंदबाजी जब वो करता है तो ये देखा जाता है कितना कंसिस्टेंटली वो विकेट ले रहा है, रन्स नहीं दे रहा है, बल्लेबाजों को कितना प्रेशर में लेकर आता है, और देखिए इसी की बदौलत वो आज हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 में। और आज इस मैच में भी उन्होंने शो किया कि गेंदबाजी जब आप करते हैं तो एक कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एक लाइन लेंथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि बल्लेबाज को आप उनके शॉट्स ना खेलने दें। तो मुझे लगता है कि पूरी ही टीम के जो भी गेंदबाज रहे हैं बहुत ही अच्छा कमबैक किया है उन्होंने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, प्रतीका रावल को आज ये मौका मिला था, वो पूरा एक लंबा यहाँ से खेल सकते थे, 20 ओवर्स पूरे खेल सकते थे, क्योंकि एक शुरुआत जरूर मिल चुकी थी प्रतीका रावल को, और एक कॉन्फिडेंस भी दिखा था जिस तरीके से उन्होंने सामने एक बड़ा हिट भी लगाया था। तो मुझे लगता है कि वही बात है कि छोटी छोटी चीजें जो हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं उनको और आपको एग्जीक्यूशन में लाना बहुत जरूरी है।
3: खासकर हम अगर रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट की बात करें और अब सेकंड इनिंग की तरफ जब हम जाएंगे तो ऐसे में दीप्ति का कॉन्ट्रीब्यूशन और श्री चरनी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना अहम होना चाहिए पावर प्ले में?
0: देखिए बड़ा अहम रहेगा, जैसे उन्होंने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ शुरुआत की तो आपको जो एक ओवर फास्ट बॉलर से कराया, सेकंड ओवर उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर से कराया, तो मुझे लगता है यहाँ हमारे साथ भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि स्पिनर शुरुआत में ही लगें और पावर प्ले में ज़्यादा ओवर उनको मिल जाए करने को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अब बेहतरीन फील्डिंग करनी होगी और विकेट चटकाने की तरफ जाना होगा। अगर आप शुरुआत में विकेट नहीं लेंगे, कमबैक तो दिखे कर सकते हैं, इन्होंने भी कमबैक किया, कहा जाता है T20 में कमबैक नहीं होता, लेकिन कमबैक हुआ है थाईलैंड का ना, तो यहाँ हमारा भी हो सकता है, लेकिन हमें अगर स्ट्रांग पोजीशन में रहना है तो शुरुआत में ही हमें विकेट चटकाने होंगे।
3: बिल्कुल, गलती गलत फहमियों में तब्दील नहीं होनी चाहिए, खासकर टेक द कैचेस एंड विन द मैचेस। वो कैच पहले भी छोटे थे लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में हमसे वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो थाईलैंड ने की।
0: कोई भी किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और सबको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा और उनके बल्लेबाजों को भी हल्का मानने की गलती नहीं करनी होगी।
2: मुझे लगता है कि उनके कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे रन्स बनाते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर खासा ध्यान देना होगा। हमारे जो गेंदबाज हैं, अगर हम मीडियम पेसर्स की बात करें, नंदनी की बात करें, क्रांति गौड की बात करें, तो पिछले कुछ समय से हमने वो फॉर्म उनकी गेंदबाजी में नहीं देखा है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी खलती है, रन्स ज़्यादा लीक होते हैं। तो ये सब देखना होगा कि आपने उन दोनों गेंदबाजों को अगर आज के प्लेइंग 11 में रखा है तो क्या हम दोनों को नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, या एक एंड से हमें पेस अटैक दिखेगा, एक से स्पिन अटैक दिखेगा, ये देखना होगा। लेकिन पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे दोनों ही गेंदबाज देखने कि नई गेंद से वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि अगर आप काम करके आए हैं तो ये मैं बार बार कह रही हूँ, एशिया कप एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कि आप हर चीज़ को यहाँ एग्जीक्यूशन में लेकर आ सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपफ्रंट होके उन्हीं दो गेंदबाजों से आप शुरुआत करा सकते हैं इनिंग की।
1: बिल्कुल, और राकेश हमने देखा कि किस तरह से इनिशियल ओवर्स में देयर वाज मूवमेंट अप फ्रंट, हालांकि जैसा आपने मेंशन किया शॉर्ट पिच डिलीवरी कर रही थी पेसर्स, इसलिए उतना मूवमेंट को भुना वो नहीं पाए।
0: नहीं बिल्कुल, और हमारी जो बल्लेबाज है ना वो देखिए शॉर्ट पिच गेंदों पे बहुत अच्छे, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, शेफाली वर्मा हो, बड़े अच्छे पुल शॉट्स लगाने में वो महारत थी, और ऑफ साइड की गेंदों पे भी आजकल बढ़िया पुल शॉट लोग लगाते हैं, तो सही लाइन और लेंथ में वो होना चाहिए। लतिका ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं तो आपको शुरुआत में उनके साथ दो दो ओवर तो कम से कम जाना चाहिए।
3: बिल्कुल, और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, और खासकर ऐसी पिचेस की अगर हम बात करें, दुबई स्टेडियम की बात करें, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब सेकंड इनिंग में आपकी?
0: देखिए ये पहला मैच होता है किसी भी टीम का जब किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के अंदर, तो थोड़ा सा एक पिच को लेके होता है कि जब तक आप खेले नहीं, प्रैक्टिस पिच एक अलग तरह की होती है और जब आप मेन पिच के ऊपर खेलते हैं तो एक अलग तरीके की चीज़ आपको मिलती है। तो आज थोड़ा सा एहसास होगा, पिच का अंदाज़ा हमारी बल्लेबाजों को हो गया होगा, सब अनुभवी हैं और मुझे लगता है कि अब वो जो गेंदबाजी है उन्हीं की तरह से सही लाइन और लेंथ की बॉलिंग आपको करनी होगी और विकेट लेने की तरफ जाना पड़ेगा। अगर 20 ओवर पूरे खोलेंगे तो हो सकता है वो आपको मैच में हरा भी दें।
3: बिल्कुल, टेल एंडर्स, ये सवाल कहीं ना कहीं आज आया है। लतिका मैम, तो आपको लगता है कि शुरुआत अगर आप सही कर लेंगे, ओपनर्स को थोड़ा सा सेटल डाउन नहीं होने देंगे, तो जाहिर सी बात है स्कोर कार्ड इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलना पड़ेगा आपको।
2: देखिए T20 का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि आपको विकेट लगातार अंतराल में लेनी होगी, तभी आप कामयाब रहते हैं किसी भी मैच को जीतने के लिए। तो यह उम्मीद यही है कि क्रांति गौड़ किस तरह की गेंदबाजी करेंगे और नंदनी कैसी गेंदबाजी करेंगे, और अब मैच की शुरुआत होने जा रही है तो देखते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन हम आगे देखने वाले हैं।
3: बिल्कुल, और मुलाकात होगी आपसे फिर, और ये T20 का महासंग्राम है, अनिश्चितताओं का ये खेल है, फिर से हाजिर होंगे।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारत और थाईलैंड के बीच विमेन्स एशिया कप का मुकाबला इस वक्त चल रहा है, जहां पर भारत ने 160 रन का लक्ष्य दिया है थाईलैंड को, और इस वक्त थाईलैंड की दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर हैं और थाईलैंड अपनी पारी की शुरुआत कर रहा है। क्रांति गौड़ गेंदबाजी करती हुई, और क्रांति गौड़ गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार होती हुई बल्लेबाज। इस बीच क्रांति चली, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और इस बार इस गेंद को बेहतरीन कट किया और गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन। शानदार स्ट्रोक, खाता खुलता हुआ इस चौके की मदद से थाईलैंड का। तीन गेंदें हुई हैं पहले ओवर में, और इस गेंद को जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को कट किया और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। क्रांति गौड़ एक बार फिर से तैयार हो रही हैं और सामना करने के लिए तैयार हैं नताकन चांतम इस ओवर की चौथी बॉल के साथ। भारत ने 160 रनों का लक्ष्य दिया है थाईलैंड को मुकाबला जीतने के लिए। क्रांति एक बार फिर से चली दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, और इस बार धीमी रफ्तार की गेंद अंदर आई, इस गेंद को चांतम ने सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। भारत ने निर्धारित 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए, और 160 रनों की चुनौती इस वक्त दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर थाईलैंड के सामने। अगली बॉल, बल्ले का अंदरूनी किनारा, और इसी के साथ चांतम प्लेड ऑन, भारत को पहली कामयाबी। नताकन चांतम ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद थी, ड्राइव करने के लिए गई और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लग करके स्टंप पर चली आई, मिडिल स्टंप पर जाकर गेंद हिट करती हुई, और इसी के साथ भारत को पहली कामयाबी। मात्र 4 की रन संख्या पर थाईलैंड ने अपना पहला विकेट गंवा दिया है। भारत ने पहली कामयाबी पहले ही ओवर में हासिल कर ली है। इस लाइव कमेंट्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल, अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले, स्कोरर रजित सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा के साथ। स्वागत करते हैं पंकज का, बहुत बहुत स्वागत पंकज।
2: Thank you, welcoming me with a wicket, and that was the swag of Kranti. In fact, Chantham played that square cut in the earlier delivery really very well, very stylish shot, and she was looking very confident, this time not getting her foot movement, not getting the leg to the pitch of the ball and missing it. But Kranti Gaur has got a big, big breakthrough, and as our experts also were speaking about in the mid-innings show, they mentioned that India can't really allow Thailand to play all the 20 overs. They have to get them out, and a good start there for India.
1: तो भारत को पहली कामयाबी बहुत जल्द मिली है, और जिस तरह का खराब प्रदर्शन भारत ने अपनी बैटिंग के दौरान आखिरी 10 ओवर में किया था, ये बहुत जरूरी था कि भारत अपनी गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत करे, और अच्छी शुरुआत क्रांति गौड़ ने करा दी है। इस बीच अगली गेंद, और इस बार इस

0: सके उतने रनों में आउट किया जाए, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम की यहां पर गेंदबाजी चलती है। आज भारत अपना पहला मुकाबला खेल रहा है, दूसरे मुकाबले में 3 सितंबर को भारत का मुकाबला हांगकांग चाइना से होगा। इस बीच नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद रूम बनाकर खेलना चाहा, गेंद हवा में, इधर रनआउट का भी खतरा था, सीधा थ्रो स्टंप पर लगा है, कैच तो हुआ नहीं, लेकिन शेफाली वर्मा ने गेंद को उठाकर स्टंप पर मार दिया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और ऐसे में तीसरे अंपायर की तरफ इस वक्त इशारा किया गया है। गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद हवा में लहराई थी, मिडॉन पर खड़े हुए फील्डर ने कोशिश की, और ऐसा लग रहा है कि बल्ला शायद बाहर ही रह गया है खिलाड़ी का। गेंद जब स्टंप पर लगी, बेल्स जब ज्वलित हो उठी, उस समय क्या बल्ला क्रीज के बाहर है या अंदर है, ये तीसरे अंपायर को थोड़ा सा स्लो मो में देखना होगा। ये जस्ट गेंद जब लगी है, बल्ला शायद उसी वक्त अंदर की तरफ आ गया है, लेकिन अभी भी जो मोशन, जिस मोशन में देखा जा रहा है, शायद वो करेक्ट नहीं है, स्लो मो में देखना होगा। और इस वक्त तीसरे अंपायर के द्वारा इस वक्त देखा जा रहा है, नजदीकी निगाह डाली जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि तीसरे अंपायर का निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा और नॉट आउट का ही निर्णय आता हुआ तीसरे अंपायर का। अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर के द्वारा, शिफाली वर्मा के द्वारा। फिलहाल अगली बॉल के साथ चली क्रांति गौड़, ये गेंद बल्ले का किनारा, स्लिप में दीप्ति शर्मा ने कैच छोड़ दिया। दीप्ति शर्मा के लिए एक आसान सा कैच, कमाल की गेंदबाजी क्रांति की। माया ड्राइव करने के लिए गई, बल्ले का जेन्युइन एज और स्लिप में हाथों में आया हुआ कैच छोड़ दिया। अगली गेंद लेग स्टंप पर फुल टॉस, घुमाया ऑन साइड में, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, एक रन मिला और इसे एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब 16 रन एक विकेट के नुकसान पर थाईलैंड का। आसान सा मौका, आसान सी यहां पर अपॉर्चुनिटी हाथ से जाती हुई, और फर्क दिखाई दे रहा है जो एनर्जी और कमाल आज थाईलैंड ने फील्डिंग में किया, वो भारत ने शुरुआती ओवर्स में ही ठीक उसके उलट किया, एक आसान कैच छोड़ा। अगली गेंद एक्स्ट्रा बाउंस, इस बार इस गेंद पर सकपकासी गई नन्नापत, और गेंद को उन्होंने खेलने की कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं की, गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। थाईलैंड का अगर हम जिक्र करें तो T20 क्रिकेट में इस गेंद के बाद जिक्र करेंगे। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट किया पॉइंट पर, फील्डर कोई रन नहीं। T20 इंटरनेशनल्स में थाईलैंड का जो उच्चतम स्कोर है वो 259 रन है, 4 विकेट के नुकसान पर। सिंगापुर के खिलाफ ये रन इन्होंने बैंकॉक में बनाए थे 2025 में। लेकिन अगर भारत के खिलाफ जिक्र करें तो भारत के खिलाफ उनका जो उच्चतम स्कोर है वो 74 रन, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन भारत के खिलाफ रहा है। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, बैकअप फ्लैन डिलीवरी, कट करने के लिए गई, चूक गई बल्लेबाज, गेंद चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, अंपायर ने किसी वाइड का इशारा नहीं किया, ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद थाईलैंड का स्कोर है 16 एक विकेट के नुकसान पर। तो जो स्टैट इस वक्त पंकज ओपी शर्मा ने हमें प्रदान किया है कि इनका हाईएस्ट टीम टोटल तो 259 रन है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने आसमान की बुलंदियों को जमीन पर लापटक दिया, और ये भी बताया ओपी शर्मा जी ने कि भारत के खिलाफ उनका उच्चतम स्कोर 74 रन है।
1: Yes, of course, this is good news for the Indian fans, but you never know. The funny game called cricket, and that too the shorter format of the game. 16 for the loss of a wicket, Thailand after 3 overs, and Nanapat and Maya Panita there in the middle. And luck definitely favors the brave, and Thailand today have got that slice of luck. They had it when they were bowling and fielding, and even now when they are batting, as Nandini gets ready for the next over. And in fact, it's been caught. What a catch! Driven towards point by Maya Panita. She can't get it over.

0: दे रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तफाक रखता हूं कि थाईलैंड को प्रयास करना होगा कि वो रुक कर खेलें, जम कर खेलें, पूरे 20 ओवर तक बैटिंग करने की कोशिश करें, और ये अपने आप में एक अचीवमेंट होगी। इस मुकाबले का नतीजा क्या होगा नहीं होगा इस पर हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन अगर 20 ओवर की गेंद बल्लेबाजी थाईलैंड कर लेता है भारत के खिलाफ तो ये बड़ी बात होगी उनके लिए। नए ओवर की शुरुआत हुई है, पहली गेंद को ऑन साइड में घुमाया, एक रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटना चाहती हैं और दूसरा रन भी पलट कर पूरा कर लिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और इन दो रनों के साथ नन्नापद पहुंच गई है 13 पर और थाईलैंड का स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारत ने अपना दूसरा विकेट गंवाया था, तब भारत का स्कोर 91 था, लेकिन थाईलैंड ने बहुत जल्दी जल्दी दो विकेटें गंवाई हैं। फिलहाल क्रांति गौड़ अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से घुमाया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन ऑन ड्राइव अपिश मिड विकेट के ऊपर से, और चौका मिलता हुआ नन्नापद को। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बावजूद भी मिड विकेट को क्लियर करने में कामयाब हुई, वरना यह कैच हो सकता था। इस बीच चौके के साथ स्कोर 29 2 विकेट के नुकसान पर। पांचवां ओवर चल रहा है, क्रांति गौड़ चली, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस वक्त एक खिलाड़ी स्लिप में नजर आ रहा है, वो खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा जो कि स्लिप में इस वक्त फील्डिंग कर रही हैं। एक कैच उन्होंने छोड़ा है, 160 का लक्ष्य भारतीय टीम ने दिया है थाईलैंड को। क्रांति गौड़ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में फिर से पुल किया मिड विकेट पर, और गेंद एक बार फिर से गैप में निकलती हुई 4 रन। दो बेहतरीन चौके नन्नापद ने मारे हैं क्रांति गौड़ को, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी इस बार, और इस गेंद को बढ़िया पुल किया 4 रन के लिए, और इस चौके के साथ अब नन्नापद पहुंच गई हैं 21 की रन संख्या पर और थाईलैंड का स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा प्रोडक्टिव ओवर ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खिलाड़ी के अगर जिक्र करें, नन्नापद ने तो 144 T20 मुकाबले खेले हैं, 298 चौके लगा चुकी हैं ये अपने करियर में। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चली गेंदबाज क्रांति गौड़, ये गेंद नन्नापद के लिए फुल पिच डिलीवरी, बल्ले के जड़ से इस गेंद को खेला, ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है। एक रन सिर्फ मिलेगा इस मर्तबा, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नन्नापद खेल रही हैं 21 पर, और अफिसारा स्वांचन राती इस वक्त बल्लेबाजी कर रही हैं 1 पर। एक बार फिर से क्रांति गौड़ इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद और इस बार स्टंप पर आती हुई इस गेंद को लगभग खड़े खड़े अपने स्थान पर खेला कवर्स पर, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त हुआ पांचवा, और 5 ओवर्स के बाद थाईलैंड का स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मौजूदा रन गति 6.8 रन प्रति ओवर का है, और रिक्वायर्ड रेट की बात करें तो 8.4 का रिक्वायर्ड रेट है। तो अगर विकेटों पर अंकुश लगाए रखती है थाईलैंड की टीम पंकज, और जिस तरीके से इस ओवर में 11 रन आ गए, 2 चौके बड़ी आसानी के साथ मारे, इसी तरह से बाउंड्रीज आती रहीं, रन्स सिंगल्स डबल्स के जरिए आते रहे, स्कोर बोर्ड को चलायमान रखा, तो इस मुकाबले में एक तरह से बने रहने की जो कवायद होती है वो कम से कम कर पाती हुई थाईलैंड की टीम जरूर नजर आएगी।
1: नो डाउट अबाउट इट इकबाल, एंड द फैक्ट रिमेन्स दैट द एग्जूबरेंस ऑफ द थाई प्लेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थाईलैंड इज नॉट रियली अ ट्रेडिशनली क्रिकेट प्लेइंग नेशन, दे हैव अडैप्टेड टू द गेम रियली वेरी वेल, एंड दे हैव रियली इंप्रूव्ड एंड कम अप एंड स्टैंडिंग अप टॉल टू इंडियन बोलर्स ऑफ इंटरनेशनल क्लास एंड हिटिंग देम। नन्नापद हैज शोन सम रियल ग्रेट कॉन्फिडेंस एज हरमनप्रीत कौर नाउ गेट्स श्री चरणी इन टू द अटैक, 42 विकेट्स फॉर हर, रियली वेरी गुड बॉल of Sri Charni, 4 for 12 is a best, and it's going to be interesting how the Thailand batters will tackle the Indian spinners. Now we are talking about which Indian spinner will the Thailand batters target. Is Sri Charni the one, with a slip, left arm round the wicket. Here she comes. Nanapath goes for that big

0: sweep. And there is a lot of protection there, deep mid-wicket, deep backward square leg. So India is also trying to play to what the Thailand batters would be looking forward to. And the fielding placement is pretty good. But right now, Nanapath batting on 23 is the fulcrum for Thailand. She's the pivot around where all the batters will have to work around. Apisara nicely plays it square of the wicket. Doesn't get runs, but as you said, she has to stand at one end, Iqbal. You're right. She has to just give some good support. Apisara, as they call her. She's a very, very good all-rounder. Nanapath at the other end, batting on 23. Thailand 35 for 2. Sri Charney gets ready to bowl. Left arm round the wicket. Flatter delivery. Thought that Apisara would probably run down the wicket, dance down the wicket for a big shot. But a lot of conversation going on between Nanapath and Apisara. That's good to see that both the batters are communicating, because the pitch is, I won't say really very challenging, but there are certain spots where you got to be careful about. Thailand have a target of 160 runs to win this match. Trying to go across, big appeal, and as it hits the pad, Apisara deep inside the crease. The appeal took some time for the umpire, but the finger goes up. India pick up a wicket. Sri Charney picks up a very, very important wicket. Kept Apisara locked, cramped inside her crease, stump to stump. And in trying to play across, Apisara was caught right plumb in front. An umpire had no problem whatsoever. So India doing the needful, putting the pressure, and they are getting the wickets. The third wicket falls. Apisara goes for one. She was not looking really very comfortable, but the fact remains that could she have kind of survived there for a bit long, Iqbal, and give some support to Nanapath at the other end. But India pretty much on course with that third wicket.
1: जी हाँ बिल्कुल, और यही चैलेंज होने वाला है थाईलैंड के लिए. भारतीय गेंदबाजी के सामने खास तौर पर उनका टिकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है. श्री चरणी बहुत कम समय में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपना एक रेपुटेशन बनाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और काफ़ी कामयाब रही हैं. अभी तक की जो जर्नी रही है श्री चरणी की, वो बहुत ही कमाल की रही है. और आप जो सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं भारत की तरफ से, वो अभी आने बाकी हैं. दीप्ति शर्मा, जिन्होंने अभी अभी एक कैच छोड़ा, वो मैदान पर अभी गेंदबाजी करने के लिए आई नहीं है. तो दोनों स्पिन गेंदबाजों के सामने इतना आसान थाईलैंड के लिए होने वाला नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कितना रेजिस्टेंस ये दिखा पाते हैं, कितना यहाँ पर धैर्य दिखा पाते हैं. फिलहाल अगली गेंद इस बार बाहर की तरफ निकलती हुई, चनीदा नई बल्लेबाज हैं, उनको छोड़ती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, और ये डॉट डिलीवरी. हालांकि क्या हाइट ज्यादा थी जिस गेंद पर LBW दिया गया, हालांकि बिल्कुल बैकफुट पर धंसी हुई थी क्रीज में बल्लेबाज. अगली गेंद, अफिश खेला लेकिन गैप में, और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर, चार रन के लिए. शेफाली वर्मा, दौड़ लगाई जरूर उन्होंने लेकिन गेंद का पीछा नहीं कर पाई. एक लकी बाउंड्री आप कह सकते हैं अपिश, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद निकली और ये चौका मिला आखिरी गेंद पर. 6 ओवर का खेल यानी कि पावर प्ले के ओवर्स खत्म हो गए हैं, और पावर प्ले में थाईलैंड ने 39 रन बनाए हैं और 3 विकेट गंवा दिए हैं. तो निश्चित तौर पर पावर प्ले थाईलैंड के नाम नहीं रहा है, ये पावर प्ले भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा है, पंकज.
0: Yes, but the efforts from the Thailand girls has been pretty good. Now, as we have been constantly saying, if you're targeting or if you have to reach 160 runs, you've got to kind of keep your wickets and play out the 20 overs. But nevertheless, comparatively, India was 65 for 1. Skriti Mandhana and Shefali gave a good start, and then Pratika and Shefali also had a good kind of a partnership. But Prema Rawat has been brought into the attack, leg spin, leg break bowler, and India would be looking forward to kind of finish this under 100. That will be a good thing, considering the fact that they'll get a good net run rate advantage because of that. So Nanapath is batting on 23 of 15 deliveries. Now she is the one batter that India will have to target.
1: Prema Rawat is waqt gendbazi karne ke liye aayi hain. Pehli gend on side mein, is gend ko turn kiya, gend gayi hai deep square leg ke ilake mein, ek run daud karke pura kiya ballebaz ne, aur is ek run ki madad se tha

0: बाजी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। इस बीच अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, खेला पॉइंट पर, थोड़ी सी फंबल, फायदा उठा करके रन पूरा करना चाहती थी, लेकिन जब देखा कि दोबारा फील्डर गेंद पर कंट्रोल हासिल कर चुकी हैं, चनिदा ने अपना इरादा बदला और इस गेंद पर कोई रन नहीं। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर थाईलैंड टॉस जीता था। थाईलैंड ने पहले बॉलिंग चुनी थी, भारत ने 159 रन बनाए 9 विकेट पर। इस बीच अगली गेंद प्रेमा रावत की, इस बार गेंद जाकर के पैड पर टकराई, लेकिन साफ तौर पर गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खा रही है, और ऐसे में एक LBW की जो अपील थी वो उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम। 160 रन का लक्ष्य इस वक्त थाईलैंड के सामने है। थाईलैंड 3 विकेट गंवा करके थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन क्या वापसी कर पाएगी थाईलैंड की टीम? भारत के खिलाफ उनका उच्चतम स्कोर 74 रन ही है, क्या उसको पार कर पाएंगे इस ओवर की अगली बॉल के साथ? चली प्रेमा, फ्लाइटेड गेंद, और इस बार इस गेंद को डाउन द ग्राउंड ड्राइव किया, लेकिन मिड ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग कप्तान हरमनप्रीत कौर की, कोई रन बनाने का मौका नहीं है बल्लेबाज चनिदा के पास। चनिदा ने 4 रन बनाए हैं, अच्छी फ्लाइट दे रही हैं प्रेमा रावत। एक बार फिर से तैयार हैं प्रेमा, सामने चनिदा, ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्पिन के सहारे कवर के ऊपर से उछाला, लेकिन स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पर है। 1 रन सिर्फ लेने का मौका चनिदा के पास। चनिदा पहुंची अब 5 की रन संख्या पर, और स्कोर बढ़ता हुआ थाईलैंड का 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ प्रेमा, सामने है ननापत, ये गेंद, और इस बार ननापत ने इस गेंद को पुल करना चाहा, टॉप एज लगा, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के आसपास कोई फील्डर नहीं, विकेट कीपर जब तक गेंद को जाती उठाती। 1 रन दौड़ करके ननापत ने पूरा किया। 7 ओवर का खेल इसी के साथ समाप्त हुआ, और 7 ओवरों में थाईलैंड ने 42 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। ननापत 17 गेंदों पर 25 रन और चनिदा 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रही हैं।
1: India seems to be in control, no doubt about it, with the 3 wickets, and the fact means that the Thailand batters will really have to play something really extraordinary in order to in fact reach that 160 runs target that has been given to them. But it's a good outing for them, and if you look at the Thailand side, their core has been the same for the last 3-4 years, you know. Maya, Nanapat, Chanida, all of them have been playing together for a long time, and that has given them a lot of confidence to come up and take up teams like India, as they are 42 for the loss of 3 wickets and they're chasing 160. Sri Charney now will be bowling to Nanapath, who's batting on 25. This is going to be a very good contest, because Sri Charney will definitely try to fox Nanapath. Will Nanapath continue to be aggressive? A slip in place. Oh, tries to go for that big swing, but then controls and checks a shot, realizing that the length wasn't right. The ball just pops up towards short extra cover. Sri Charney also trying to lure Nanapath into that trap. This is going to be an exciting contest between the two. Flight there, driven, and what happened was Nanapath tried to drive it across, didn't connect. The ball just goes off the boot of Richa Sharma into the slips, where Deepti Sharma is there, and she catches this one, but then it doesn't make much of a difference, because there was no willow which got in touch with the ball. Coming down the track, converting into a full toss, Nanapath will get a single as the ball rolls towards long off. That takes Thailand to 43 for the loss of 3 wickets, and this was expected, Iqbal, because India, with their strong bowling lineup, would have made life difficult for Thailand, and that has been the case. But now Thailand have an interesting opportunity. OP Sharma, our statistician, told us 74 is the highest score against India. Can the first step be going beyond that, and then of course moving towards the target of 160? Going for that big shot, Chanida high in the air towards mid on, straight into the hands of Smriti Mandhana, who is very, very happy to accept that. In trying to be aggressive, Chanida falls at 5, and Thailand lose their 4th wicket at the score of 43 in the 8th over.
0: और जिस तरीके से विकेटें गिर रही हैं, ननापत को छोड़ करके अगर लगातार उनके साथ ही यूं ही बिछड़ती रहेंगी, तो फिर जो 74 रन उनका उच्चतम स्कोर है, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं पंकज, उस स्कोर को पार करना शायद इतना आसान नहीं होगा थाईलैंड की टीम के लिए, क्योंकि एक छोर पर आप देखें तो 20 गेंदों पर 26 रन बना करके 100

0: प्लस की स्ट्राइक रेट इन विषम परिस्थितियों में, जबकि टीम एक छोर पर लगातार विकेट गंवा रही है, वो बनाकर खेल रही है, लेकिन दूसरे छोर पर तू चल मैं आया वाली कहानी चल रही है, एक के बाद एक लगातार विकेटें गिरती चली जा रही हैं।
1: And of course the pressure is 160 runs, Iqbal, because it's a long journey. And Thailand did was they bowled really very well, and they thought that they could kind of roll over that confidence into their batting. And I think early on the first wicket was somewhere which was very very difficult. Nathakan was cleaned up. That was something very important for Thailand as the new batter is in 43 for the loss of 4 wickets. Naomi Hamilton is the player who has come up for Thailand, and this is going to be an interesting one. Naomi Hamilton has a decent record, and she's come there in the middle order. 8th over is in progress. Sri Charney bowling with a slip, left arm round the wicket. Good ball. And the way Sri Charney bowls, lovely action. She's a tall bowler, and the kind of angle that she creates, also the fact is she gives a nice flight which comes quite high, and that pushes the batter on the back foot initially. It becomes very difficult, and if she's able to get a bit of turn and bounce, then she becomes very very difficult to face. Just one run in this over and a wicket for Sri Charney. Hamilton on strike, slightly short, nicely pulled towards the onside, and that will help Naomi to open her account. End of over number 8, 44 for 4, Thailand chasing 160. And of course 160 is a huge huge climb like Mount Everest for Thailand, but if they could have got a good start in the power play, and probably they wouldn't have lost the wicket, the first wicket, that probably could have helped them. But nevertheless, cricket is a funny game. The second phase of the game, the next 5 overs are going to be very crucial for Thailand.
0: जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से विकेटों का पतन रहा है वो निश्चित तौर पर थाईलैंड के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कोई खुशखबरी तो नहीं है उनके लिए, क्योंकि लगातार अंतराल में विकेट गंवाए हैं थाईलैंड ने। पहला विकेट 4 पर, दूसरा विकेट 16 पर, तीसरा विकेट 35 पर, चौथा विकेट 43 पर। तो रेगुलर इंटरवल में, हर अंतराल में आप देखें तो विकेटें गिरती रही हैं थाईलैंड की, जो कि बहुत अच्छी खबर उनके लिए नहीं है। इस वक्त भारत की सबसे अनुभवी गेंदबाज दीप्ति शर्मा को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। 150वां मुकाबला खेल रही हैं दीप्ति शर्मा, एक अचीवमेंट है उनके लिए। पहली गेंद के साथ तैयार, पहली गेंद फ्लाइटेड अंदर आई, पैड पटक रही, एलबीडब्ल्यू की अपील और इसी के साथ आउट। 150वें मुकाबले को इससे बेहतर और क्या सेलिब्रेट कर सकती थी वो, कि आई और पहली बॉल पर ही विकेट उड़ा ले गई है पंकज।
1: Naomi Hamilton pushed on the back foot, crammed for space, a good ball there to start, and plumb in front, and Naomi Hamilton had no clue whatsoever. I think this was one of the easiest decisions for the umpire, as half the Thailand side is back in the pavilion.
0: Naomi Hamilton मात्र एक रन बना करके पटबाधा आउट हुई हैं दीप्ति शर्मा की गेंद पर। तो जो विकेटों का पतन का सिलसिला था, और जिसका ब्यौरा मैं कुछ देर पहले दे रहा था, ये देखिए एक और विकेट एक रन के अंतराल में। तो अगर इस तरह की क्रिकेट खेली जाएगी तो फिर निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि थाईलैंड को अपनी बैटिंग में खास तौर पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि गेंदबाजी उनकी अच्छी है इसमें कोई दो राय नहीं है, फील्डिंग में वो अपना जान झोंकती हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां तक बैटिंग का सवाल है, और अमूमन इस तरह की नई टीमें या जो इतना एक्सपोजर जिन टीमों का नहीं है, उन टीमों के लिए बैटिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। फिलहाल नए बल्लेबाज ने इस गेंद को पुश किया, ऑलमोस्ट रिटर्न कैच था ये, दीप्ति शर्मा ने अपनी बाईं तरफ डाइव लगाई, लेकिन बाल बाल बच गई हैं बल्लेबाज, और ऐसे में ये विकेट नंबर 6 गिरते गिरते रह गया। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में पुल किया, शॉर्ट मिड विकेट पर कप्तान मौजूद, कैच कर लिया हरमन ने, और चाइहान आते ही मात्र दूसरी गेंद का सामना करते हुए आउट हो गई हैं। ये छठा विकेट थाईलैंड ने गंवा दिया है 44 की रन संख्या पर।
1: Yes, very difficult for the Thailand middle order to negotiate with someone like a Deepti Sharma, and a simple catch there. Chaihan not really able to get used to this particular track, and another wicket falls. India definitely kind of

0: जिस तरह की गेंदबाजी भारत ने कर दी है, साफ तौर पर कहीं से कहीं तक खड़ी होती हुई थाईलैंड की टीम नजर नहीं आई है भारत की गेंदबाजी के सामने। और उस बात की गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं कि ननापत एकमात्र ऐसी बल्लेबाज हैं जो दहाई के आंकड़े में पहुंची हैं, बाकी सभी बल्लेबाज सिंगल डिजिट में यानी कि इकाई के आंकड़े में आउट हुई हैं। आप चाहे नताकन चांतम की बात करिए, 4 रन बनाए उन्होंने, माया ने 6 रन बनाए, इसके अलावा सुनी तुरंगा ने 5 रन किए, हैमिल्टन ने 1 रन बनाया, चाईहान ने 0 किए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो विकेट हैं वो लगातार अंतराल में गिर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज कुछ योगदान भी अपनी तरफ से नहीं प्रदान कर पा रहा है, एक्सेप्ट नताकन जिन्होंने की बेहतरीन बैटिंग, बल्कि माफ कीजिएगा ननापत ने बहुत ही शानदार बैटिंग की है, 26 गेंदों पर 26 रन। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि एक छोर से आपने 6 विकेट गंवा दिए हैं और इसके अलावा कोई खिलाड़ी जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो ननापत के ऊपर प्रेशर है। नंबर 3 पर वो आई थी बैटिंग करने के लिए, अभी अपने सामने उन्होंने विकेटें गिरते हुए देखी हैं, तो डेफिनेटली अब उनको भी थोड़ा सा ज़रूर इस बात को लेकर के प्रेशर महसूस हो रहा होगा कि आखिर इस सिचुएशन में करें तो करें क्या, रन के लिए जाएं, रोकें, किसी में भी तो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। रन के लिए जाते हैं, आउट होने का खतरा रहता है और बहुत दूर है मंजिल, अगर रोकते हैं, 4 विकेटें बची हुई हैं, कोई टिकने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल में इस वक्त ननापत नजर आ रही हैं। वहीं भारत की गेंदबाजी कमाल की रही है, 3 ओवर क्रांति गौड ने डाले, 21 रन 1 विकेट, नंदिनी शर्मा 2 ओवर 13 रन 1 विकेट, श्री चरणित 2 ओवर 7 रन 2 विकेट, प्रेमा रावत 2 ओवर 1 मेडन 3 रन कोई विकेट नहीं, दीप्ति शर्मा 1 ओवर 1 मेडन और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। तो भारतीय सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है, हालांकि प्रेमा रावत को कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन उनकी गेंदबाजी भी देखें, 2 ओवर में 3 रन, 1.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो रन खर्च कर रही हैं। तो भारत का पूरा कंट्रोल इस मुकाबले में है, भारत पूरी तरह से नियंत्रण में इस मुकाबले में है। अभी भी 60 गेंदें बची हैं और 60 गेंदों पर 116 रन बनाने हैं, रिक्वायर्ड रेट अब लगभग 12 रन प्रति ओवर का हो चला है थाईलैंड के लिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है उनके लिए इस टारगेट को अचीव करना। फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक नए ओवर की शुरुआत हो रही है और नंदिनी शर्मा को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। नंदिनी ने एक कैच छोड़ा मिड विकेट पर, अच्छी कोशिश थी, डाइव लगाते हुए हाथ में गेंद लगभग आ गई थी, अगर वो कैच ले लिया जाता तो एक ही ओवर में 3 विकेट हो जाते दीप्ति शर्मा के। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद फुल पिच डिलीवरी, ऑन ड्राइव किया, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर क्षेत्र में, तोड़ करके रन पूरा किया बल्लेबाज ने, 1 रन मिलता हुआ लाउमी को और इस 1 रन की मदद से लाउमी का खाता खुला और थाईलैंड का स्कोर 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर ये है ये पारी का और नंदिनी शर्मा अपना ये दूसरा बल्कि तीसरा ओवर डाल रही हैं। इस ओवर की अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, धीमी रफ्तार की गेंद को कट किया, गेंद गई है स्क्वेरिश थर्ड मैन पर भारती के पास, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया ननापत ने और इस 1 रन की मदद से ननापत पहुंच गई हैं अब 27 पर। ननापत कोंचा रोयनकाई ये इनका पूरा नाम है, फिलहाल 27 गेंदों पर 27 रन उन्होंने बनाए हैं और इस पारी में उन्होंने 4 चौके मारे हैं। इस ओवर की अगली बॉल नंदिनी की फुल पिच डिलीवरी, बेहतरीन ड्राइव, लेकिन कवर पर स्मृति मंदाना फील्डिंग कर रही हैं, गेंद को उन्होंने बड़ी आसानी के साथ रोक लिया, कोई रन नहीं मिलेगा लाउमी को। 11वां ओवर चल रहा है, नंदिनी शर्मा गेंदबाजी कर रही हैं, मध्यम गति की तेज गेंदबाज हैं और मुझे ये आवश्यकता समझ नहीं आई कप्तान को कि तेज गेंदबाज को क्यों लाना, स्पिनर्स बढ़िया गेंदबाजी कर रही हैं और आपके पास 3-3 स्पिन गेंदबाज हैं, ये रणनीति क्या है, और वो भी लगातार फुल पिच गेंदें हो रही हैं तो बल्लेबाज को कोई परेशानी नहीं आ रही है। अगली गेंद एक और ओवर पिच डिलीवरी, ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, 1 रन दौड़ करके पूरा किया लाउमी ने, लाउमी पहुंची अब 2 पर और थाईलैंड का स्कोर 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नंदिनी शर्मा को 1 विकेट मिला है, पिछली 30 गेंदों पर थाईलैंड ने मात्र 13 रन बनाए हैं और 4 विकेट गंवाए हैं, बहुत ही खराब प्रदर्शन बल्लेबाजी में रहा है, मुश्किल दौर से उनकी बल्लेबाजी गुजर रही है। इस ओवर की अगली बॉल और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी बैक ऑफ लेंथ गेंद कट करने के लिए गई बल्लेबाज नानापत लेकिन बीट हो गई, बाहर की तरफ गेंद स्विंग हो रही थी हल्की सी और कोई रन नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेटों के पीछे ऋचा घोष ने। नानापत 27 पर, लाओमी 2 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं, 47 रन 6 विकेट पर थाईलैंड। आखिरी गेंद करने के लिए अब तैयार हैं नंदिनी शर्मा, आगे गेंद पिच कराएंगी शायद मुश्किल होगी लेकिन अगर थोड़ा बैक ऑफ लेंथ रखेंगी तो शायद बल्लेबाज को परेशान कर सकें। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर धीमी रफ्तार की गेंद, गेंद को बड़ी आसानी के साथ कवर पर धकेला, कोई रन नहीं, ओवर समाप्त हुआ 11 ओवर के बाद थाईलैंड 47 6 विकेट के नुकसान पर।
1: Still there as the next ball driven towards sweeper cover by Laumi as she gets Nanapat back on strike. Now 12th over is in progress. Nanapat will have to decide how long to continue. Will it be worth playing 20 overs or will it be worth going after? Because Thailand batters will have to target some Indian bowler. Will it be Prema? We'll have to see. Oh, good ball! Prema knew that Nanapat will be going for a big one. She was in position for that, but then a lovely flight, fuller length, and the ball turning square. Completely surprised Nanapat on that occasion, and that could have been very interesting. So Prema is also working extremely hard and trying to fox the batter. Coming down the track, but Prema just puts it a bit fuller, can't get underneath that ball, and Nanapat has to drive it back to the bowler. Now, Nanapat was playing really very well for the first 25 deliveries that she faced. But now, the dot balls are building up the pressure on her. Will she fall? Will she break down? Or will she retaliate? She retaliates with a lovely pull. Good fielding there by Kranti Gawd at the deep backward square leg region. She saves a definite boundary and Nanapat will get a couple of runs. So Thailand inching in closer towards the half century mark, but they have got the 50. Yes, so they have reached the half century. Thank you to our scorer Rajit Sinha. And overall, there were a bit of hiccups in that second phase when India was batting the middle order, but otherwise things have gone pretty well for India. Coming down the track, driving it towards long on for a single, and Nanapat will keep strike with that single. 12 overs have been bowled, 51 for 6, Thailand chasing 160. So overall, as far as the bowling is concerned, India has done the job, but the middle of the batting, a bit of fielding, drop catches still haunting India, and they will really have to correct this as early as possible, because a bad day later on in the next phase of this particular tournament can be very very dangerous, and India probably can't afford those kind of mistakes.
0: बिल्कुल सही बात है पंकज, और फिलहाल जो रणनीति थाईलैंड की नजर आ रही है वो ये, पिछले दो ओवर्स में अगर आपने गौर किया हो तो एरियल रूट का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, लगातार जमीन के सहारे स्ट्रोक्स खेल रही हैं दोनों बल्लेबाज, और कोशिश कर रही हैं कि जितना हो सके ओवर्स खेलें भारत के खिलाफ। फिलहाल श्री चरणी आ रही हैं गेंदबाजी करने के लिए, पारी का 13वां ओवर लेकर के सामने होंगी नानापत जो कि 30 रन बनाकर खेल रही हैं। श्री चरणी की फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को खेला ऑफ साइड में और गेंद जा रही है स्वीपर कवर पर, एक रन दौड़ करके पूरा किया नानापत ने, और इस एक रन की मदद से नानापत पहुंच गई हैं 31 पर और थाईलैंड का स्कोर 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर 110 रन था 3 विकेट के नुकसान पर, थाईलैंड का स्कोर 52 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल श्री चरणी एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रही हैं, लाओमी को गेंदबाजी करेंगी राउंड द विकेट आती हुई। श्री चरणी की अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार बीट किया बल्लेबाज को, विकेट कीपर ने स्टंप्स उड़ा दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सुलिपोर्ण लाओमी का पिछला पैर क्रीज के अंदर मौजूद था और ऐसे में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन बढ़िया इस बार टर्न मिला गेंदबाज श्री चरणी को और पूरी तरह से टर्न के सहारे बीट किया बल्लेबाज को। इस ओवर की अगली बॉल के साथ तैयार हैं श्री चरणी। श्री चरणी का ये तीसरा ओवर है, 8 रन देकर के 2 विकेटें निकाली हैं इन्होंने, बाएं हाथ से राउंड द विकेट ये गेंद और इस बार खड़े खड़े इस गेंद को खेला ऑफ साइड में पॉइंट क्षेत्र में, एक रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज लाओमी ने, और इस एक रन की मदद से लाओमी पहुंच गई हैं 4 पर और थाईलैंड का स्कोर 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर।

0: श्री चरणी लेफ्ट आर्म स्पिनर, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, दौड़ती हैं, शुरुआत करती हैं जाडेजा की तरह स्लो और लगभग उसी प्रकार की उनकी उनका एक्शन भी है। अगली गेंद और इस बार तेज गेंद, फ्लैट ट्रैजेक्टरी, इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं नाना पत को। 31 पर है नाना पत, पांचवीं बॉल के साथ श्री चरणी तैयार, राउंड द विकेट, स्लिप को अब हटा लिया गया है। अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को फुल टॉस पर लेना चाहती थी, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगकर ऑन साइड में गई, विकेट कीपर ऋचा घोष गई हैं गेंद को उठाने के लिए, लेकिन तब तक दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर थाईलैंड की टीम का। 2 विकेटें मिली हैं श्री चरणी को, अपने तीसरे विकेट की तलाश में है, आखिरी बॉल तीसरा ओवर अपना डाल रही हैं। अगली गेंद और इस बार फिर से टर्न और एक्स्ट्रा बाउंस भी था, बीट कर दिया बल्लेबाज लाउमी को और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ 13वां। 13 ओवरों के बाद थाईलैंड का स्कोर है 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नानापत 32 पर 36 गेंदों का सामना किया है, उन्होंने 4 चौके लगाए हैं जबकि लाउमी 4 रन बनाकर खेल रही हैं, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। रिक्वायर्ड रेट जिक्र करना क्या सही है पंकज, 15 से ज्यादा का अब रिक्वायर्ड रेट हो चुका है।
1: And Thailand, of course, I mean, you can't expect them to really go slam bang against a team like India, but they have done a very good job. It's very encouraging to see that they have kind of held on fort. Now, the challenge for India would be they've got Thailand 54 for 6 after 13 overs. India shouldn't allow them to play 20 overs. Now, that is going to be another very important point as Prema Rawat starts a new over. Quicker, flatter, compact delivery, and Nanapat has to play it back to the bowler. So, the point here remains that can India quickly finish off the tail? Now that's also an art, and that's also an art of making a statement as Prema Rawat, the leg break bowler, flighted, comes down the track, Nanapat drives it, good dive there by Sri, in fact Deep Shefali at mid-off, she gets a hand to it, otherwise that was a certain boundary, and a single there as far as Nanapat is concerned. Very important here, in fact we come back for the second run because the ball trickled towards the boundary line, and Nanapat will have to keep the strike as long as possible, try and go for the big hits because you can't expect the lower middle order to do much. Quicker delivery down the leg side, will it be called as a wide? Was very very close as Nanapat tried to kind of go on the back foot and pull it. It's not given a wide, very very close, but a interesting decision. 56 for 6 Thailand. They need 104 runs to win this match. Coming down the track and almost a cotton bowl. Came down the track, found herself in an awkward position, cross-batted straight what Nanapat played, and it almost popped back to Prema. Probably she thought that it would come into her hands all the way, but that was not the case. Pulling that ball from way outside the off stump towards long on for a single. That will take Thailand to 57 for 6. And India probably are doing the right thing, but they need to kind of quickly finish this innings, Iqbal, because letting or allowing Thailand to play 20 overs will not really reflect good on the Indian bowling. Nicely driven, the next ball, which is a flighted one, a square drive, there by Laumi. She will keep the strike at the end of over number 14. Thailand are 58 for the loss of 6 wickets. So Thailand were not really expected to kind of go really very hard initially, score 50-60 odd runs in the power play. But what they have done is they're showing the tenacity to stay there even after 6 wickets have gone. Now, can India finish it off quickly is what we'll have to see. And that will really help sharpen India's bowling for the upcoming matches in this particular tournament.
0: जी हाँ बिल्कुल, और भारत की गेंदबाजी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इसमें कोई शक की बात नहीं है पंकज, लेकिन पिछले 5 ओवर और 3 गेंदे यानी पिछले 5.5 ओवर से भारत को कोई विकेट नहीं मिला है। 33 गेंदे ये दोनों बल्लेबाज खेल चुकी हैं, इस जोड़ी ने 33 गेंदों का सामना किया है यानी 5.5 ओवर का सामना किया है और 14 रन बनाए हैं। रन इतने मायने नहीं रखते यहां पर क्योंकि रन्स अभी वैसे ही बहुत ज्यादा अब जरूरी हैं, 102 रन चाहिए 36 गेंदों पर, तो थोड़ा मुश्किल अब यहां पर लगने लगा है। इस बीच अगले ओवर की शुरुआत, पहली गेंद हवा में उछाल

0: कर खेला, लेकिन स्क्वायर थर्ड मैन से पहले गेंद टप्पा खाई है, एक रन मिलेगा बल्लेबाज को। तो इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 58, 6 विकेट के नुकसान पर। इस सिंगल की मदद से अब लाउमी पहुंची हैं 6 पर 35 पर, ननपत बैटिंग कर रही हैं। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, और उस मुकाबले की भी कमेंट्री आप आकाशवाणी पर सुन सकेंगे। फिलहाल एक बार फिर से तैयार होती हुई गेंदबाज, ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, विकेट कीपर काफी ऊपर आ गई हैं, उन्होंने गेंद को गैदर किया, बीट हो गई बल्लेबाज इस मरतबा ननपत और गेंद चली गई ऋचा घोष के दस्ताने में। तो इस साझेदारी ने रन कितने बनाए हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो टिकने की जो एक मंशा दिखाई है, पूरे 20 ओवर खेलने की जो मंशा दिखाई है, वो जरूर उसमें कामयाब नजर आ रही है। नंदनी इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने है ननपत, ये गेंद और इस बार ननपत ने इस गेंद को घूमकर मारा फाइन लेग क्षेत्र में, गेंद को बाउंड्री लाइन के आसपास रोक लिया गया और इस दरमियान दौड़ करके एक रन पूरा किया बल्लेबाज ननपत ने, और इस एक रन की मदद से ननपत पहुंच गई हैं 36 पर और थाईलैंड का स्कोर 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी 15 रनों की हो गई है, 16 रनों की इनफैक्ट, 16 रनों की साझेदारी 36 गेंदों पर, पिछली 51 गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं आई है, पिछली 51 गेंदों से कोई चौका या छक्का नहीं लगा है। इस ओवर की अगली गेंद फुल पिच डिलीवरी, रूम बनाकर खेला कवर्स पर, लेकिन गेंद को इनफील्ड के अंदर रोक लिया गया, कोई रन नहीं। तो साफ तौर पर अब थाईलैंड के खेल से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी रणनीति से यही लग रहा है कि वो 160 चेज करने के लिए नहीं जा रही हैं, वो 20 ओवर खेलने के लिए जा रही हैं, और शायद कहीं बैक ऑफ द माइंड किसी सपोर्ट स्टाफ ने या कोई टेक्निकल स्टाफ ने उनको जरूर बताया होगा कि देखिए भारत के खिलाफ आपका उच्चतम स्कोर 74 है, उसको जरूर पार कर लीजिएगा। इस ओवर की अगली गेंद उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन पर, इस बार आउट होने का खतरा, और इसी के साथ आउट। लाउमी आखिरकार अपने धैर्य को संभाल कर न रख पाई, धैर्य टूटा, एरियल रूट का इस्तेमाल, और इस बार लॉन्ग ऑन पर शेफाली वर्मा के हाथों में एक आसान कैच, और इसी के साथ ये 7वां विकेट जाता हुआ। कुल 38 गेंदों का सामना किया, यानी कि 6 ओवर और 2 गेंदें खेल करके ये जोड़ी टूटी है। इस बार ये धीमी गति की गेंद का, उंगलियों का इस्तेमाल, ऑलमोस्ट लेग कटर की तरह ये गेंद डाली थी नंदिनी शर्मा ने, और उसमें फंस गई लालच में, मारने की कोशिश हवा में और कैच आउट हो गई। सो विकेट नंबर 7 का पतन हो गया है, ये 15वां ओवर चल रहा है, नंदिनी शर्मा अपने कोटे का अंतिम ओवर डाल रही हैं, और 3.5 ओवर में 18 रन दे करके उन्होंने 2 विकेट हासिल किए हैं। कोटे की अंतिम गेंद करने के लिए अब वो तैयार होंगी, नई बल्लेबाज सुनीता अब मैदान पर आई हैं। 15वां ओवर, अंतिम गेंद, और अभी भी अगर देखें तो 100 रन दूर है थाईलैंड, 100 रन दूर, 60 है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद सुनीता के लिए, और इस बार कॉट बिहाइंड की अपील, अंपायर ने उंगली उठा दी, और इसी के साथ सुनीता आउट। नंदिनी शर्मा को लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, हैट्रिक पर, लेकिन अब उनके पास ओवर ही नहीं है इस मैच में।
1: सो विल दैट हैपन इन द नेक्स्ट मैच? Quick one there, the ball just cutting away, and Sunida had no chance whatsoever. She just poked at it outside edge, and good catch in the end there by Richa. And back-to-back wickets for Nandini. 15 overs, Thailand 60 for the loss of 8 wickets now. This is probably a quick finish here, and India doing pretty well, Iqbal. And Nandini, in fact, got that back-of-the-hand ball in the last penultimate delivery, there was a wicket, and this was a quick leg cutter. So she's really using all her variations, and she has got a couple of quick wickets for India.
0: तो भारत की तरफ से सभी गेंदबाजों को विकेट मिला है, प्रेमा रावत को छोड़ करके। प्रेमा रावत ने कोटा भी हालांकि पूरा कर लिया है अपना, 4 ओवर में 1 मिडन 11 रन, कोई विकेट नहीं। क्रांति गौड़ के पास 1 ओवर है, 1 ओवर श्री चरणी के पास है, और दीप्ति शर्मा के पास 3 ओवर्स बचे हुए हैं। तो साफ तौर पर एक छोर से अब दीप्ति शर्मा ही नजर आएंगी, अगला ओवर लेकर के दीप्ति शर्मा आएंगी। फिलहाल नानापत 36 रन बना करके अभी भी मैदान पर मोर्चा संभाले हुए हैं। नंबर 3 पर आई थी बैटिंग करने के लिए, लेकिन कोई साथी है कि टिकने का नाम नहीं ले रहा।
1: क्रांति गॉड इज बैक इनटू द अटैक एंड नानापत ट्राइज टू गो फॉर दैट बिग हीव, दे गो फॉर द रन डायरेक्ट हिट एंड स्मृति मंदाना गेट्स ए रन आउट देयर। So, but the problem here is that Onicha and Nanapath were there in exactly at the center of the pitch. The umpire will have to figure out who is the one who has to go back, because the throw was at the non-striker's end. Did Onicha, who was at the non-striker's end, took off and crossed over, is what both the umpires will have to look at for. In fact, Nanapath tried to go for a big shot. The ball went towards mid-on at Smriti Mandana's position, and she had a direct hit. There was a bit of a confusion between both the batters, and a direct hit has does the needful. Now the third umpire, of course, need not give the decision whether it's out or not. Yes, it's a definite out, but who has to walk back is going to be the big question. Cricket is a funny game, a lot of rules, regulations, everything has to be taken into consideration, and I guess Nanapath crossed over a bit, that's what looks prima facie, and the umpire now looking at the technicalities, discussing amongst themselves, and the third umpire, as the replay will make it much more clearer. And Onicha didn't want the run, Nanapath started off and then decided not to take the run, and both the batters were stranded in between. Smriti Mandana had a very simple throw at the non-striker's end, and there is a wicket which has fallen, there's no doubt about it, but who has to walk back is now what is being discussed. So India in fact doing really very well. In fact, their bowling performance has been much more sharper than their batting, there's no doubt about it, but the fact remains that a top team like India with the contenders will have to really improve their batting very, very quickly. So, Smriti Mandana gets the ball. We are watching the replay and trying to kind of figure out. Looks like Onicha didn't cross over. But if Onicha is not ahead of Nanapath, who walked, who ran from the other end, that's what the umpire has to figure out. It looks like Onicha, who started from the non-striker's end, did not cross her partner Nanapath at the center. But we'll have to figure out who's going to walk back. So it's going to be interesting. And these kind of runouts are always very difficult, Iqbal, to figure out.
0: जी हाँ, और ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि शायद Onicha ही हैं जिनको आज जिनका विकेट गिरेगा, क्योंकि जैसा आपने बताया पंकज की बल्लेबाज जो उधर से आ रही थी स्ट्राइकर एंड से, उनको क्रॉस नहीं किया था Onicha ने, और ऐसे में साफ तौर पर यही लग रहा है कि विकेट जो है Onicha का जाएगा। नानापत अभी भी बच जाएंगी, नंबर 3 पर आई थी बैटिंग करने के लिए, और अंतिम जोड़ी के रूप में भी उनके साथ साझेदारी बनाई जाएगी।
1: Let's see, the umpire is trying to figure out there, watching the yes, Onicha has to walk back. So what we were trying to figure out was more or less correct, and Thailand lose their 9th wicket. Onicha is out without opening an account, and that means India are just one step closer to registering a very important and a big victory in their first match at the Asian Women's Championship at Dubai International Stadium. So Harmanpreet Kaur will be happy with the bowling performance, there's no doubt about it. Fielding, definitely scope for improvement, but middle order batting is what needs improvement. That's what the doctor has ordered for India. But the fact remains that T20 format is also very frugal. You know, it becomes very difficult on occasions to adjust. But Nanapath on strike, Kranti Gaurd bowls it outside the off stump, trying to kind of drive it away from a body, doesn't connect. And Thipatcha is the last player who has come out for Thailand. The 16th over is in progress. Good to see that India probably will not allow Thailand to play all the 20 overs. Very important, as the last player out was Onicha, was run out by Smriti Mandana. Big shot there by Nanapath. She goes over mid-on. She gets a boundary, and she continues her good run. She definitely deserves a half century, Iqbal. She is on 40 right now. and she really has played her heart out today. And she's the lone warrior as far as Thailand is concerned.
0: जी हाँ, टीम का स्कोर 64 रन है और उसमें से

0: अकेले ननपत के 40 रन हैं, सभी खिलाड़ियों ने मिलकर के 14 रन, उसमें एक्स्ट्रा के भी रन हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडिया वर्सेस थाईलैंड नहीं, ये ननपत वर्सेस इंडिया का मैच हो रहा है। एक लौती खिलाड़ी हैं जो खड़ी हो पाई हैं, वरना सभी खिलाड़ी ने हथियार डाले हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, इस गेंद को पॉइंट पर सिंगल मिल गया और इस सिंगल के साथ ननपत अब पहुंच गई हैं 41 पर 65 थाईलैंड 9 विकेट के नुकसान पर। दो गेंदें इस ओवर में बची हुई हैं, क्रांति गौड़ के पास मौका है थिपाचा का विकेट लेने का।
1: यस, एंड इफ क्रांति कैन फिनिश इट ऑफ इन दिस पर्टिकुलर ओवर दैट विल बी वेरी वेरी गुड, विल बी सॉर्ट ऑफ एन आइसिंग ऑन द केक एंड इंडिया विल बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट इफ दे आर एबल टू फिनिश इट ऑफ इन दिस पर्टिकुलर ओवर विच इज द 16th ओवर ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिंग्स। ननपत एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड ऑन 41, थिपाचा द लास्ट प्लेयर हैज कम आउट एंड थिपाचा पुथावांग is the player 65 for 9. Thailand Kranti Gawd bowls trying to just glide it towards third man area, doesn't connect, this will be great learning for the Thailand girls, there's no doubt about it, because they've been playing a lot of T20 format matches, but mostly with the associate nations and the lesser known teams. They don't get too much of a chance apart from these kind of tournaments to play against a team like India, Pakistan and other ones, which is very very important. Quick ball zipping past the bat of Thipacha, who had no clue whatsoever, beating the outside edge. End of over number 16. 65 for 9 is what Thailand have made. So, it's a brave attempt from Thailand, Iqbal. But the fact remains that India sharpening the bowling. And I guess if you look at all the teams, I guess India has the best bowling attack, if I may say so, in this particular Asian championship. And they are really working hard on that. So, can India continue? Is this a good start for them? Because if they win, this will be a big, big victory for India.
0: निश्चित तौर पर। अब गेंदबाजी करने के लिए दीप्ति शर्मा को बुलाया जा रहा है पारी का 17वां ओवर लेकर के। इस पूरी इनिंग्स में ननपत को छोड़ करके कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंच पाई हैं थाईलैंड की तरफ से। 9 विकेटें गिर जाने के बावजूद भी हम ये कह पा रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंची हैं, सिर्फ ननपत ही ने दहाई का आंकड़ा छुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कमजोर थाईलैंड की बैटिंग रही है। दीप्ति शर्मा इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आ रही हैं। 17वां ओवर है पारी का, क्या ये पारी का अंतिम ओवर हो सकता है? नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद रूम बनाकर कट करने की कोशिश, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का डाइविंग कैच और इसी के साथ भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है 94 रनों से, थाईलैंड को पराजित कर दिया है। एशिया कप, विमेन्स एशिया कप के भारत ने अपने पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की। इस मुकाबले में भारतीय टीम 94 रनों से जीत हासिल कर रही है और एशिया कप के इतिहास में भी दीप्ति शर्मा अब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। 29 विकेटें इसी विकेट के साथ एशिया कप में अब दीप्ति शर्मा के विकेट्स की संख्या हो गई है और निश्चित तौर पर एक बहुत ही बढ़िया दिन रहा है दीप्ति के लिए। 150वां मुकाबला बहुत यादगार रहा है। तो जाते जाते आपको बता दें कि आज के मुकाबले में टॉस जीता थाईलैंड की कप्तान ने, टॉस जीत करके उन्होंने भारत को पहले बैटिंग करने के लिए कहा। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 159 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर और जवाब में थाईलैंड की टीम 16.1 ओवर में 65 रन बना करके ऑल आउट हो गई और इस तरह से भारत ने विमेन्स एशिया कप 2026 में 94 रनों की जीत के साथ एक धमाकेदार आगाज किए हैं। तो इसी सूचना के साथ मैं मोहम्मद इकबाल, अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले, स्कोरर रजित सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा के साथ आप सभी को स्टूडियोज वापस लिए चलता हूं, जहां से आप सुनेंगे पोस्ट मैच कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच। आइए
2: Player of the match.

0: Thumping 94 run win. Hello and welcome to Player of the Match. I am Megha and join me in studio as my co-host is Gautam. We've got former Indian cricketer Latika Kumari and senior sports journalist Rakesh Thapliyal.
1: और ये मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी था बिकॉज आगाज कहीं ना कहीं एक जीत के साथ किया है टीम इंडिया ने और वो कंपैरिजन 66-74 और अब फाइनली ये जो डिस्टेंस हमें देखने को मिला है इसने एक अलग कीर्तिमान सेटल कर दिया है बिकॉज हाँ शुरुआत में कहा जाता है कि शुरुआत अगर भली होती है तो सब भला होता है लेकिन जिस तरीके से परिणाम हमारे सामने है बहुत ही बढ़िया एक्साइटेड हम सब हैं कुछ कहेंगे मैम आप
2: बहुत ज़रूरी होता है जब कोई टूर्नामेंट हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से पहला मैच हमारा जाता है कौन कौन से बॉक्स हम टिक करते हैं तो आज मैं ये कहूँगी कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक अच्छा क्रिकेट खेला है एग्जीक्यूशन अच्छे हुए हैं बट फिर भी यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि आपका मिडिल ऑर्डर कैसा खेल रहा है कि लास्ट में आके जो रन्स आने चाहिए वो आज के मैच में उतने आए नहीं है तो मुझे लगता है कि बैटिंग में अभी भी काम करना बाकी है
0: बिल्कुल और राकेश अगर हम यहाँ पर फील्डिंग की बात करें तो जब दीप्ति शर्मा ने स्लिप्स में वो कैच छोड़ा डेजा वूसा लग रहा था लेकिन उसके बाद से काफी इम्प्रूव फील्डिंग शो देखने को मिला मंदाना का डायरेक्ट हिट शिफाली वर्मा का वो डाइव इस तरह के कई एफर्ट्स देखने को मिले
3: देखिए अच्छी चीज है ये लग रहा है कि भाई कैंप के अंदर जो काम हुआ है फील्डिंग के ऊपर वो दिखाई दे रहा है बॉलिंग पे काम दिखाई दे रहा है हालांकि जो आपके बैटर्स हैं वो ऐसे इतने बड़े लेवल के नहीं थे कि जिसमें हमारी बॉलिंग की परीक्षा हो लेकिन जो लाइन और लेंथ की बात है वो उसमें अच्छे हमारे बॉलर्स रहे हैं और आपने देखे 9 ओवर में 44 रन पे 6 विकेट उनके गिर गए थे तो मैच तो वहीं खत्म हो गया था पहले 10 ओवर में हम अच्छा खेले और वो पहले 10 ओवर में अपनी बैटिंग में खराब खेल के उन्होंने मैच हाथ से निकाल गया देखो क्या होता है कि ये एक 40 ओवर का मैच है 2020 का मैच है तो कोई भी आपकी तैयारी जो होती है वो 40 ओवर के लिए होनी चाहिए है ना पहले 20 ओवर में आप अच्छा खेले थाईलैंड लेकिन उसके बाद वो एक कंप्लेसेंसी उनके अंदर दिखाई दी बैटिंग में वो डेप्थ नजर नहीं आई एक उनकी एक बैटर को छोड़ के और कोई भी जो है डबल फिगर में नहीं आ पाया और हिंदुस्तान की तरफ से ये अच्छी बात है कि हमारे एक्स्ट्रा भी कोई डबल फिगर में नहीं हो गया एक एक्स्ट्रा रन गया तो एक अच्छी बात है वो भी वाइड का तो मुझे लगता है कि बॉलर्स ने हमारा अच्छा किया थाईलैंड की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हमें शुरुआती झटका दे दिया और ये झटका हमें आगे के मैचों में काम आएगा
1: डबल नहीं वेल ट्रिपल की हम बात करेंगे जिन्होंने किया है अपना कर्मा दीप्ति शर्मा 3 विकेट लिए एक मेडन ओवर भी एक मेडन ओवर कहीं ना कहीं प्रेमा रावत ने भी डाला कामयाबी नहीं मिली लेकिन 3 विकेट नंदिनी शर्मा को भी मिले यानी कि ये दिखाता है कि आपके गेंदबाज आने वाले जो परिश्रम है उसके लिए कहीं ना कहीं तैयार है खासकर दुबई जैसे पिच के लिए
3: देखिए विकेट लेना
4: भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है दोनों देशों ने आज खनन आयुर्वेद पर्यटन आर्थिक और वित्तीय संवाद व्यापक और रणनीतिक साझेदारी उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं
5: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे हमारा मानना है कि टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री

0: का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding (MOUs) aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia. Later, at a joint press conference with Uzbekistan President, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
3: Dono deshon ke beech karibi raksha aur suraksha sahyog hamare gehre aapasi vishwas ko darshata hai. Aane wale samay mein hum dono deshon ki defense industries ke beech direct linkage, co-production aur co-development ko बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
2: On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliye Darjali Dostalik, by President

0: Very well done today. All the best for you as well next game.
1: Thank you so much.
0: Thank you, Harmanpreet. Thanks for talking to us. That's it from the post-match presentation.
2: Well, जीत लो हर लम्हा, बीच जाने से पहले लौट कर फिर यादें आती हैं, वक्त नहीं और वक्त हमारा है। ये कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी हमने देखा कि किस तरीके से कमाल किया है शेफाली वर्मा ने, 64 रनों की पारी खेली। और शुरुआती दौर में जब आपको पता है कि एक खिलाड़ी जो आपके साथ ओपनर आया रन आउट होकर चला गया, तो ऐसे में दबाव कितना होता है, कितना प्रेशर होता है?
3: देखिए, दबाव कहते हैं इस मैटर ऑफ एंजॉयमेंट है। क्रिकेट आप खेल रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, दबाव के लिए कोई नहीं खेलता। और जब एक बड़ी प्लेयर आउट होती है तो दूसरी प्लेयर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे आती है, और शेफाली वर्मा ने वो दिखाया राइट फ्रॉम द 50 ओवर वर्ल्ड कप। हम देख रहे हैं कैसे उनको सेमीफाइनल में लाया गया था, सेमीफाइनल फाइनल में उन्होंने अच्छे ही प्रदर्शन किया, इसी वजह से आज वो इस टीम का हिस्सा है। और इतना बड़ा उनका नाम है, जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले तो बड़े इंटरेस्टिंग शॉट्स खेले उन्होंने, बहुत जबरदस्त, अच्छा लग रहा था कि अच्छे निक में लग रही थी शुरू से ही। और लेकिन वो आउट जो हुई है, आउट बहुत खराब हुई है। आज उनके पास मौका था, जब एक टीम में आप सेट हो जाते हैं उसके बाद आपको बड़े स्कोर खेलने की आदत डालनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि 50-60 रन बना के आपके अंदर एक कंप्लेसेंसी आ जाती है, या उस बॉलर को बहुत लाइटली आप लेने लगते हैं। तो जिस तरीके से वो आउट हुई, वो आउट होना उनका बहुत खराब था, लेकिन इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी खेली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेली। पारी को जो संवारना उन्हें आता है वो एक आर्ट है। देखिए, वो आर्ट थाईलैंड के बल्लेबाजों में कहीं नजर नहीं आई, उनके एक बल्लेबाज को छोड़कर बाकी किसी के अंदर वो चीज नजर नहीं आई। और शेफाली वर्मा तो देखिए, अच्छी फील्डिंग में भी वो अच्छा प्रदर्शन करती हैं, बल्लेबाजी में जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ शॉट खेलती है ना, उनके शॉट्स गेंदबाजों के हौसले पस्त करने वाले होते हैं। वो एक बड़ी चीज है कि किस तरीके से आपको फायदा उठाना है पावर प्ले का, कैसे जो है आप पिच ड्राइव खेलने हैं, वो सारी चीजें उन्होंने दिखाई दी। और उनके शॉट्स में अच्छी एंटरटेनमेंट भी होती है, क्योंकि लोग तो स्टेडियम में ज्यादा नहीं थे, लेकिन क्रिकेट जो है वो एंटरटेनमेंट भी है, आपको एंटरटेन भी करना है। तो ऐसे आपने इनिंग खेली कि जिसमें लोग एंटरटेन भी हुए, आपकी टीम को भी फायदा मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आप खेले, अच्छी एक पार्टनरशिप आपने लगाई प्रतीका रावल के साथ, तो वो एक टीम के लिए बड़ा योगदान देके गई। वरना बड़ा लॉस हो सकता था, 10 ओवर में हम 100 रन पे कुछ ज्यादा रन बना पाए थे, उसके बाद अगले 10 ओवर में हम बिल्कुल ढह गए।
4: जी बिल्कुल। और 19-30-20 आई अर्धशतक उन्होंने जड़ा, एक बात कही वहां पर दोनों कप्तान हरमन और उसके अलावा शेफाली वर्मा ने भी कि देयर वाज होल्ड इन द विकेट। लतिका, उसके बाद लगा ऐसे जो बल्लेबाज आए हैं, कंडीशन का क्या सही उन्होंने आकलन किया था, क्योंकि दे वर गोइंग फॉर देयर शॉट्स?
5: बिल्कुल। और देखिए, हम भी ये बात कर रहे थे कि मैच देख रहे थे जब कि थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है बॉल वहां पर, और जो हमारे बल्लेबाज हैं या तो वो बॉल को जज नहीं कर पा रहे थे और बॉल थोड़ा डिप करके जा रहा था। तो डिप जब बॉल करता है ना, तो थोड़ा कदमों की चहलकर्मी दिखानी पड़ती है, तो वहां मुझे लगता है कि जजमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा था बल्लेबाजों का, जिसकी वजह से डॉट बॉल्स का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉल को सही तरीके से आप जज करते हैं, डिसीजन सही तरीके से लेते हैं किसी भी शॉट को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो आपको आगे आने वाले इनिंग्स में भी हेल्प करेगा। तो स्पिनर्स जब बॉल डाल रहे हैं, बॉल होल्ड कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको अटैक करेंगे स्पिनर पे, तो ज्यादा आसानी होती है खेलने में, रादर देन आप विकेट में रहकर, क्रीज में रहकर गेंदबाजों को खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रिप कर रही है सतह, जो ग्रिप करती है गेंद को, तो वो कहीं ना कहीं हलचल करती है, और वो हलचल बल्लेबाजों को काफी परेशान करती है।
2: देखिए, हलचल काफी अच्छी है, लेकिन आने वाले मुकाबलों की अगर बात करें तो वहां पर भी मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और क्लिक करना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में भी होंगे, उनके जवाब शायद राकेश जी बेटर तरीके से दे सकें कि आज शेफाली वर्मा चली बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने भी हमारे श्रोता थे या जितने भी मैच लोग देख रहे होंगे, कि हाँ किसी और का क्लिक होना भी बहुत ज़रूरी था?
3: देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ हमेशा से कि आप वक्त की नज़ाकत के हिसाब से खेलें, आप वक्त की टीम को ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से आपको खेलना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्रिकेट में कहते हैं कि दो विकेट जल्दी जल्दी मत जाने दो। हमारे साथ दो बार ऐसा वाकया हुआ कि एक एक ओवर में हमारे दो दो विकेट गिरे, और वो खराब शॉट सिलेक्शन था। हरमनप्रीत जो हमारी कप्तान है, उन्होंने भी बोला कि खराब शॉट्स हमने खेले जिसकी वजह से विकेट गंवाए। तो आपको इंटरटेनिंग खेलनी है प्लस टीम की जरूरत के हिसाब से। तो जो ये नए खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के अंदर, देखिए टैलेंटर एक बहुत पुरानी चीज है, आज वो चीज मुझे तो खत्म होती दिखती है। हम किसी को टैलेंटर नहीं मानते, टैलेंटर कहना पहले एक थोड़ा सा खिलाड़ी का एक अपमान सा माना जाता था, लेकिन आज हर खिलाड़ी को योग

0: रन देना है। जो निचले क्रम का गेंदबाज भी है तो उसको भी तैयारी कराई जाती है कि आपको 10-15 रन का योगदान कैसे आप दे सकते हैं, जरूरत के हिसाब से खेलना है। दूसरा बल्लेबाज अच्छा कर रहा है तो आप उसको चांस दीजिए, सिंगल लेके उसको मौका दीजिए। ये सारी चीजें जो पारी को संवारने में काम आती हैं वो हर खिलाड़ी को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर टीम के लिए खेलना है प्लस अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी को भी दिखाना है। अगर आप अच्छी एबिलिटी के साथ प्रदर्शन करेंगे तो उसका टीम को भी फायदा मिलेगा, लेकिन आप अच्छी एबिलिटी पिच पे जाके नहीं दिखाएंगे तो वहां आपको कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा, टीम को भी नुकसान होगा।
1: और लतिका, जितनी बल्लेबाजी डीप हो, मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं, उनके पास भी कॉन्फिडेंस होता है अपनी रणनीति बनाने का कि कुछ अगर जरूरत पड़े तो नीचे से कंट्रीब्यूशन आ सकता है।
2: देखिए बिल्कुल, आपके पास प्लेटफॉर्म एकदम सज गया था, ऊपर जो आपके ओपनर्स थे उन्होंने अच्छी खासी वहां पे बल्लेबाजी की, आपको ये दिखाया कि इस विकेट पे किस तरह की शॉर्ट सिलेक्शन जो है आप करके इनिंग को आगे लेके जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब ऐसे बॉल थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप स्ट्राइक रोटेट इनिंग के बीच में कर सकते हैं, तो डॉट बॉल्स का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा और आप बड़े शॉट्स की तरफ नहीं देखेंगे उस टाइम पे। क्योंकि जितने भी हमारे, अगर फुलमल्ली की बात कर ले हम, दीप्ति शर्मा हो गई, ऋचा घोष हो गई, ये सब एक बड़े हिट को लगाने के वजह से जो है अपना विकेट गवाया इन्होंने। तो मुझे लगता है जब आपके पास ऋचा घोष 13वां ओवर में आ गई थी अंदर, उनके पास 7 ओवर थे वहां से, अराउंड 40-40 बॉल्स उनके पास थी खेलने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको वहां इनिंग बिल्ड करना आना चाहिए अपने पार्टनर के साथ बात करके। क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी हो रही थी, कहीं ना कहीं आपको एक या दो गेंदें ऐसी मिल रही थी जो आप बड़े शॉट में उन गेंदों को कन्वर्ट कर सकते थे। तो एक टेम्परामेंट आपका कैसा है उस टाइम पर बल्लेबाजी करते हुए, और किस तरीके से, जैसा कि हरमन ने भी कहा कि आपके शॉट सिलेक्शन क्या है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं एक गेम को एक अच्छे नोट पे फिनिश करने के लिए, जहां 20-25 रन थोड़ा पीछे रह गए।
3: और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मौके जरूर मिले थे थाईलैंड को कैचेस के, लेकिन वहां पर वो कैचेस ड्रॉप हुए थे और वो सीधे सीधे कैचेस थे। राकेश जी कुछ कहेंगे इस बारे में?
0: वो उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर उस तरीके का होता कि क्या होता है कि आउटफील्ड में जब आप खड़े हैं, इनर सर्कल में खड़े हैं, थोड़ा स्टार्ट आपको लेना पड़ता है, थोड़ा झुक के चलना पड़ता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ उन तक वैसी उनको कोचिंग उस तरह की नहीं दे पाया, या उनको बताया गया तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए। क्योंकि एक प्रैक्टिस में चीजें करना अलग बात होती है, और मैच के अंदर जब बड़ी खिलाड़ी जिनका नाम हो, जिनके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है, तो उनके खिलाफ जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उस चीज का दबाव रहता है। तो वैसे ही मतलब फुर्ती इतनी उनमें नजर नहीं है, लेकिन आप देखिए जब सेकेंड हाफ में वो कैच पकड़ने लगे तो उन्होंने कैच पकड़े, बाद में उन्होंने दिखाया, हालांकि वो थोड़े आसान कैच थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर डिफिकल्ट कैचेस भी आपको पकड़ने पड़ते हैं।
1: लतिका, अब हम शो के समापन की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो वापस से भारतीय गेंदबाजी पर जिक्र करते हुए चलते हैं, खास करके पेस अटैक जिसपे बहुत सवाल उठ रहे थे। आज जो जवाब मिले हैं शायद कंक्लूसिव जवाब नहीं है, लेकिन जिस तरह से नंदिनी ने शुरुआती स्पेल में मूवमेंट का इस्तेमाल किया और उसके बाद समझदारी से स्लो ओवर्स का इस्तेमाल किया,
2: देखिए बिल्कुल, और काफी काम करना पड़ेगा अभी भी। अगर आप इससे बेहतर किसी टीम के सामने गेंदबाजी करने आते हैं, क्रांति गौड़ जिस तरह की गेंदबाजी करती है, नंदिनी जिस तरह की गेंदबाजी करती है, मुझे लगता है कि नंदिनी के पास जो है स्विंग करने की जो कला है उसकी वजह से वो विकेट लेने में कामयाब होती रही है। सही लाइन और लेंथ पे अगर गेंदबाजी करते रहेंगे, वहां मेहनत करते रहेंगे, तो आपको और सफलताएं मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि आज विकेट उनके खाते में आए, और बहुत टाइम के बाद ये विकेट देखा है हमने एक पेस बॉलर्स के, चाहे वो क्रांति गौड़ हो चाहे वो नंदिनी हो, तो अच्छा लगता है कि जब आपके अपफ्रंट आकर जो गेंदबाज हैं जो इनिंग की शुरुआत करते हैं वो गेंद विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले मैचेस में और अच्छे इनके जो स्टैट्स हैं वो हम देखने को मिलेंगे।
3: बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें आग हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। शंखनाथ कमाल का हो गया, शुरुआत काफी भली हो गई है, लेकिन आने वाले सफर में और भी सारे हर्डल आने वाले हैं। लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन पल पल की अपडेट्स के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी समय हो गया है कि हमें जाना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
1: जी बिल्कुल, और अगली चुनौती भारत को मिलनी है 3 तारीख को हांगकांग के रूप में, हमारे विशेषज्ञों का आपका गौतम बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी प्रोडक्शन टीम का भी, माधवी, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर हमारे प्रोड्यूसर हैं, शाहनवाज खान, टेक्निकल टीम

0: में हमारी अजय राणा, जयराम, सुशील कुमार और सचिन वत्स की, और इसके साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं और वापस आने के वादे के साथ यहां से साइन ऑफ करते हैं।
1: प्लेयर ऑफ द मैच।
2: अभी आप विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
3: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड ऑफ द विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
4: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। यहीं संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।